ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पर उससे पहले आइए आपको दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक छोटा सा विवरण। छह बजकर पांच मिनट पर लेकर आएंगे कार्यक्रम सुप्रभात। सात बजे हिंदी में समाचार। सात बजकर पांच मिनट से लेकर नौ बजे तक सुनिएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। सुबह नौ बजे प्रस्तुत करेंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने। दस बजे हिंदी में समाचार। दस बजकर पांच मिनट पर वेस्टर्न म्यूजिक का लुफ्त उठाते हुए सुनिएगा कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आर। 11 बजे हिंदी में समाचार और 11 बजकर 5 मिनट पर बॉलीवुड की अपडेट्स देते हुए पेश करेंगे कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स। बारह बजे हिंदी में समाचार और 12 बजकर 5 मिनट पर सुनना ना भूलिएगा वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम प्ले इट कूल।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर एक बजे से दो बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्वयुद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC U17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: सुबह के 6:05 पूरे हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल 102.6 पर। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सुप्रभात में। मेरे साथ, मेरा नाम है नेहा। आज है शनिवार और 9 तारीख है, मई का महीना चल रहा है। एक बेहतरीन से सुबह बाहें फैलाकर हम सभी का स्वागत कर रही है। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आप भी बाहें फैलाएं और इस दिन को गले लगा लें। और आज के सुविचार में आपसे कहना चाहूँ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप भी अपनी लंबी उड़ान के लिए निकल पड़िए हौसलों के साथ और दूर तक जरूर जरूर उड़कर आइएगा।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सुबह के 6:17 और 41 सेकेंड आप सुप्रभात सुन रहे हैं। मेरे साथ मेरा नाम है नेहा। साथियों, लोभ हमारे जीवन में कितना नुकसानदायक हो सकता है, ये बात आप स्पष्ट रूप से समझेंगे स्वामी विवेकानंद द्वारा कही गई इस बात से। लोभ से बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि नष्ट होने से लज्जा, लज्जा नष्ट होने से धर्म तथा धर्म नष्ट होने से धन और सुख नष्ट हो जाते हैं।

सुबह सुबह अगर मधुर संगीत सुनने को मिल जाए तो दिन की शुरुआत अपने आप ही बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। और मैं आशा करती हूँ कि आज के कार्यक्रम सुप्रभात में जो गाने आपने सुने वो आपको बेहद पसंद आए होंगे। और जब मुझे अच्छे लगते हैं तो इस बात का यकीन मुझे हो ही जाता है कि मेरे साथियों को भी अच्छे लग रहे होंगे, मेरे प्यारे श्रोताओं को भी वो गीत वो बातें पसंद आ रहे होंगे। साथियों, आपको समय बता दूँ, सुबह के 6:28:34 पूरे हो चुके हैं और अब आपका और हमारा साथ इस कार्यक्रम में यहीं तक। कुछ ही देर बाद 6:30 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम समर्पण आप सुनिएगा। और आपको बता दें कि सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का पहला घंटा। और सुबह 7 होंगे हिंदी में समाचार, आपको अवगत करवाएंगे हम कि देश दुनिया में क्या कुछ खास और नया हो रहा है। और उसके बाद सुबह 8 से 9 के बीच में गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का दूसरा घंटा जारी रहेगा, जिस कार्यक्रम में मैं नेहा रहूंगी आपके साथ और आपके साथ बातचीत करेंगे कि हमारे दिल्ली एनसीआर में क्या कुछ खास और नया हो रहा है। तो ये बातें जानना भी हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि देखिए आज है शनिवार और शनिवार के दिन अगर कहीं बाहर घूमने जाने का मन है तो क्या जानकारी हमारे पास है वो आप तक ज़रूर हम पहुँचाएंगे। और आशा करती हूँ कि कार्यक्रम के साथ साथ आपने जो बातें यहाँ पर सुनी वो भी आपके दिल तक पहुँची होंगी क्योंकि हमारा प्रयास रहता है दिल की बात दूसरे दिल तक जरूर जानी चाहिए। और अब वक्त आ गया है कि हम आपको लिए चलें समर्पण, जो हमारा प्रायोजित कार्यक्रम है, वहां तक आपको ले चलें। और इस कार्यक्रम के उस पार एक बार फिर से आप सभी से होगी मुलाकात गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर कार्यक्रमों के माध्यम से। तब तक आप सभी यूं ही जुड़े रहें आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद यानी दूसरे स्कंद का तीसरा अध्याय, जहां पर महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया था कि जिसकी जैसी भी इच्छा हो उसे उसी प्रकार की देवता का भजन करना चाहिए, जो इंद्रियों की शक्ति की कामना करता है उसे इंद्र की उपासना करनी चाहिए, जिसे लक्ष्मी चाहिए उसे माया देवी की। इस तरह अनेक देवी देवताओं के बारे में बता करके अंततः सुखदेव जी ने कहा कि जो उदार धी है यानी जिनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, तीव्र बुद्धि वाले लोग, वो क्या करते हैं? वो अकामा सर्व कामो व मोक्ष काम उदार धी ही तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। यानी चाहे कोई बहुत कामी हो उसे बहुत कुछ चाहिए, या निष्काम हो उसे कुछ भी नहीं चाहिए, या उसे सारी ही कामनाएं पूर्ण करनी है, जो भी क्यों ना हो वो भगवान का भजन करें, है ना? क्योंकि तीन प्रकार के लोग पाए जाते हैं, ऐसे जिन्हें कहते हैं सुबुद्धिमान, दूसरे हैं बुद्धिमान, तीसरे हैं निर्बोध। जो सुबुद्धिमान व्यक्तिगण हैं, जिनकी बहुत अच्छी बुद्धि है, वो भगवान का भजन करते हैं और कुछ नहीं करते। भगवान का भजन ही उनका मुख्य पथ है। भगवान को तुष्ट करना, प्रसन्न करना, भगवान की सेवा की अभिलाषा रखना, यही वो चाहते हैं। और जो बुद्धिमान है यानी थोड़े कम बुद्धिमान है, वो मोक्ष का साधन अपनाना चाहते हैं कि किसी भी तरह से जीवन मरण से छुटकारा मिल जाए, दोबारा जन्म ना लेना पड़े। और जो निर्बोध है यानी जिनमें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, वो भोग लालसा में अपने समय को बिताते रहते हैं। तो जो लोग भोग लालसा करना चाहते हैं, जिनकी भोग की अनंत लालसाएं हैं, वो सोचते हैं कि हम क्यों ना देवी देवताओं की पूजा कर लें। तो ये सही है, देवी देवताओं की पूजा करने से उनकी भोग्य वस्तु उन्हें प्राप्त भी हो जाती है, लेकिन चूंकि वो अनित्य भोग लालसामय साधन परिश्रम स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो वस्तुएं उन्हें मिलती हैं भोग की, वो अनित्य हैं, समाप्त हो जाती हैं, शरीर समाप्त हो जाता है, सुविधाएं समाप्त हो जाती हैं, और फिर कीड़े मकोड़ों का जीवन जीना पड़ता है, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तो ये अनित्य विषय भोग करने का जो साधन है, उसमें जो इतना परिश्रम किया पूरे जीवन भर, इसलिए शास्त्र ऐसे लोगों को मूर्ख कहते हैं। तो अगर इतना परिश्रम वो श्री गोविंद चरण का भजन करने में लगाते तो वो हमेशा के लिए कृतार्थ हो जाते। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो हैं जिनके मन में कोई भी कामना क्यों ना आए, वो बस एकमात्र अखिल फलदाता श्री गोविंद चरण के भजन में ही रत हो जाते हैं। यूं भी तो भगवान ने कहा है, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं हूं और प्रभु भी मैं हूं। ये भगवद वाणी उनके हृदय में सदा ही जागृत रहती है। देखिए, तीन प्रकार की कामनाओं की बात हमने कही थी कि पहली कामना होती है स्वर्ग आदि अनित्य सुख कामना, कि हम स्वर्ग में जाएं, वहां भोग करें। तो ये सुख क्या है? अनित्य है, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि क्षीणे पुण्यम मर्त्य लोकम विशन्ति, यानी ये जो स्वर्ग की कामना है, अगर ये पूर्ण हो भी गई तो पुण्य जब समाप्त हो जाएंगे तो मृत्यु लोक में गिरना ही पड़ेगा, कोई हमेशा के लिए

दूसरे लोग होते हैं जो कैवल्य सुख की कामना करते हैं, यानी भगवान की निर्विशेष ज्योति में मिलना चाहते हैं, परमेश्वर में मिलना चाहते हैं, ये बुद्धिमान कहलाते हैं। और पहले वाले जो थे वो निर्बोध कहलाते हैं। और तीसरे हैं जो गोविंद चरणारविंद की सेवा रूपी सुख की कामना करते हैं कि हम प्रभु आपकी सेवा करें बस और कुछ नहीं, है ना। तो जो पहले दो प्रकार के लोग हैं उनमें कामनाएं हैं, एक में अनित्य सुख की कामना है तो दूसरे में कैवल्य सुख की कामना है कि हम भगवान में या हम परमेश्वर में या हम उनकी निर्विशेष ज्योति में मिल जाएं, घुल जाएं और हमें सुख मिले, दुखों से छुट्टी मिले। तो ये दोनों ही सकाम हैं और इनमें से भी खतरनाक रूप से सकाम दूसरे वाले ही हैं, क्योंकि जो अनित्य सुख पाता है किसी दिन वो अपने अनित्य सुखों से घबरा कर हो सकता है भगवान की शरण में आ जाए, पर जिसे कैवल्य मोक्ष मिल जाए, जो भगवान की ज्योति में ही लीन हो जाए, तब फिर वो कभी भी दोबारा इस स्वर्णिम अवसर को नहीं पा सकेगा जहां वो भगवान की उपासना करके, उन्हें सेव्य मान करके उनका सेवक हो सके, भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर सके, भगवान की रूप उनकी लीलाओं का आनंद ले सके, है ना। तो इसलिए जो दूसरे तरह के लोग हैं वो बहुत अधिक कामी कहे गए हैं शास्त्रों में, हालांकि वो उनसे अच्छे ही हैं जो अंधाधुंध भोग कर रहे हैं। तो भी चूंकि वो गोविंद चरणारविंद की सेवा से सदा के लिए विमुख हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, इसलिए उनको सुबुद्धिमान नहीं कहा गया, मात्र बुद्धिमान कहा गया। लेकिन जो गोविंद चरणारविंद की सेवा सुख की कामनाओं से भरे हैं वो ही हैं सुबुद्धि बुद्धिमान। तो इन दोनों में जो तो सकाम है, यानी जिनमें दो कामनाएं हैं वो सकाम हैं, और जो गोविंद चरण सेवा चाहते हैं वो निष्काम है। और कहा गया है कि कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। जो कृष्ण भक्त हैं वो निष्काम होते हैं, इसीलिए वो शांत होते हैं। लेकिन जो भोग चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं, सब अशांत रहते हैं, अशांत। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत में भी अकाम, सर्वकाम और मोक्ष काम तीन तरह के लोगों को बताया गया है। ज्यादातर लोग तो हमें यहाँ जो देखने में मिलते हैं वो हैं विषय भोगी लोग। तो अगर कोई किसी कामना को लेकर किसी देवता की आराधना ही क्यों ना करे, उससे अगर उसे भगवान के भक्त का संग मिल जाए तो क्या बात है, तब तो उसे भगवान की अचला भक्ति प्राप्त होकर ही रहती है, है ना। और यही अगले श्लोक में कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, कह रहे हैं 11वें श्लोक में, एतावानेव यजता मेह निःश्रेय सोदयः भगवत्यचलो भावो यद भागवत संगतः। बहुत ही सुंदर श्लोक है, कह रहे हैं कि देखिए जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके श्री भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। आहा, कितना सुंदर उपदेश दिया है सुखदेव जी ने। पहले तो यही बता दिया कि सुबुद्धिमान वो हैं जो भगवान की आराधना करते हैं तीव्र भक्ति योग के साथ, और बुद्धिमान वो हैं जो मुक्ति चाहते हैं, और कम बुद्धि के वो हैं, यानी मंद बुद्धि के वो हैं जो इस शरीर से विषय भोग भोगना चाहते हैं, जबकि ये शरीर सिर्फ भजन का यंत्र है। ये शरीर अन्य किसी भी कार्य के लिए नहीं दिया गया, मात्र और मात्र भगवत प्राप्ति के लिए दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर 11वें श्लोक में सुखदेव जी ने कहा, देखिए जितने भी उपासक हैं ना उनका सबसे बड़ा हित जो है वो सिर्फ इसी बात में है कि वो जल्दी से जल्दी भगवान के प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त कर ले और भगवान में अविचल भक्ति, यानी ऐसी भक्ति जो कभी भी समाप्त ना हो, ऐसी भक्ति प्राप्त कर ले। ये बहुत सुंदर श्लोक, बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो देखिए

नाना देवता गणों के जो उपासक हैं वो बहुत सारी कामनाएं अगर पूर्ण भी कर लें तो भी उनकी क्या गति होगी? तो उत्तर यह है, कोई गति नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, क्या गति होगी? वो तो 84 लाख योनियों में जाएंगे ही। क्यों जाएंगे? क्योंकि उन्होंने भगवान का भजन नहीं किया, तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर देवी देवताओं की पूजा करते करते भी कभी भगवान की कृपा से उन्हें किसी महत का संग प्राप्त हो जाए, महत की कृपा प्राप्त हो जाए, तो ये जो मंद बुद्धि के लोग हैं इन्हें भक्ति प्राप्त हो सकती है। इसीलिए यहाँ कहा एतावानेव, अर्थात अन्य अन्य देवता गणों के उपासक भी अगर भगवान के भक्त का संग प्राप्त कर लें तो उनका परम मंगल हो सकता है, परम मंगल का उदय उनके जीवन में हो जाएगा। तो वो परम मंगल क्या है? तो उत्तर ये है कि जो भागवत गण हैं, जो भक्त हैं, उनके संग के कारण इन लोगों में श्री भगवान के प्रति सेव्यत्व की भावना रूपी भाव का उदय होता है। यानी ऐसे भक्त का संग प्राप्त हो जिस भक्त का संग करके भगवान ही सेव्य हैं, उन्हीं की सेवा हमें करनी है, वही हमारे सर्वस्व हैं, ये भाव पैदा हो जाए। अभी तो हम अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, ये खा, ये पका, ये सुन, यहाँ जा, वहाँ जा, ये देख, वो देख, ये तो हम अपनी जड़ इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा की तरफ तो आए ही नहीं। देवी देवताओं की पूजा भी इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें इंद्रियों का सुख मिलता रहे। लेकिन हमारे आचार्य कह रहे हैं, यहाँ हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी बता रहे हैं, बड़े ही सुंदर रसिक आचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि देखो, भगवान की जो भक्त हैं अगर उनका संग प्राप्त हो जाए और उसमें ये भाव प्राप्त हो जाए कि भगवान ही सेव्य हैं, तब तो मंगल होगा। लेकिन अगर भक्त का संग तो प्राप्त हो जाए पर उस संग से भगवान में सेव्यत्व बुद्धि प्राप्त ना हो कि भगवान ही सेव्य हैं, हमारी इंद्रियां सेव्य नहीं हैं, संसार में कोई अन्य व्यक्ति सेव्य नहीं है, सेव्य तो सिर्फ और सिर्फ भगवान है, अगर ये भाव पैदा नहीं होता तो फिर कोई मंगल नहीं होता। क्योंकि जिस देवता की वो पूजा कर रहे हैं, जब वो अपना ही मंगल नहीं कर सकते, मंगल का अर्थ आत्यंतिक मंगल, यानी जब उनके भी पुण्य क्षीण हो जाएंगे, जब उनकी भी उम्र पूरी हो जाएगी तो उनको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा, उनकी भी कोई ऐसी गति नहीं है कि वो भगवत प्राप्ति कर लें, तब फिर जो उनके भक्त हैं यानी देवताओं के भक्त हैं वो उनका भला आत्यंतिक हमेशा का मंगल कैसे कर सकते हैं? इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है, भगवान ने क्या कहा, अर्जुन जी से कहा था, उन्होंने कहा था कि ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम् अहम् हि सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ना तु माम अभिजानन्ति तत्वे नातश्च्यवन्ति ते। तो यहाँ गीता में भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप में बता दिया है, उन्होंने कहा कि हे कुंती पुत्र, अन्य देवताओं के भक्त, अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं ना श्रद्धा से युक्त होकर के, वो जो श्रद्धा चाहते हैं वो श्रद्धा भी मैं उन्हें देता हूँ, लेकिन उस श्रद्धा से वो देखा जाए तो मेरी ही पूजा करते हैं क्योंकि सारे देवी देवता तो मुझी से प्रकट हुए, लेकिन चूंकि वो मुझे पाने के लिए मेरी पूजा नहीं करते हैं, वो ये नहीं जान पाते हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, चाहे वो किसी भी देवी देवता के निमित्त यज्ञ करें लेकिन सबसे पहले उसका भोग मुझे ही मिलता है, और ये देवी देवता फल नहीं देते हैं, फल का प्रदाता भी मैं हूँ, ये क्या फल दे पाएंगे, मैं ही फल देता हूँ, और चूंकि देवी देवताओं के उपासक मुझे तत्व रूप में नहीं जान पाते हैं, यथार्थ रूप में नहीं जान पाते हैं, अतः च्यवन्ति ते, यानी इसलिए वो गिर जाते हैं, अर्थात वो पुनरावर्तन करते हैं, बार बार उनका जन्म मृत्यु

0: के दुष्चक्र में आना जाना ये तो होता ही रहता है, बीमार पड़ते हैं, ना जाने क्या क्या होता है ना। लेकिन जो ये सोचें कि भगवान नारायण ही सूर्य आदि के रूप में पूजित हो रहे हैं, इस भावना से अगर कोई उपासना करे मेरी, तो वो मुक्त हो जाते हैं, है ना। परंतु अन्य देवी देवता की जो पूजा करते हैं, वो कभी भी शिव भगवान के भाव को प्राप्त नहीं कर सकते, या भगवान के प्रति उनके हृदय में भाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। भक्तों के संग से ही, भक्तों की अहेतु की करुणा से ही भगवान के प्रति भाव की प्राप्ति होती है, यही बता रहे हैं सुखदेव जी, जिस पर चर्चा जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन फोन नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेमधारा, और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जहाँ पर सुखदेव जी कह रहे हैं एतावानेव यजतामिह निःश्रेय सोदयः भगवत्य चलो भावो यद भागवत संगतः। आहा, भागवत संग यानी भक्तों के संग के कारण अगर किसी के हृदय में भगवान के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति अचला भक्ति पैदा हो जाती है, उदित हो जाती है, तो फिर उसका जीवन धन्य है, है ना। यानी तब उनका कल्याण हो जाता है। तो इंद्र आदि जितने भी देव उपासक गण हैं, वो अगर इसी पृथ्वी पर भगवान के भक्तों का संग प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो सकता है, और तभी उनका असली कल्याण है, यही बता रहे हैं सुखदेव जी। देखिए भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। आरती अर्थार्थी दुई सकाम भीतरे गणी जिज्ञासु ज्ञानी दुई मोक्ष कामी मानी। यानी गीता में भगवान ने बोला मुझे चार तरह के लोग भजते हैं, और वही लोग भजते हैं जिनकी सुकृतियां एकत्र हो गई हैं। एक हैं आरती, दूसरे हैं जिज्ञासु, तीसरे हैं जो धन चाहते हैं, चौथे हैं ज्ञानी। तो श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया आर्त अर्थार्थी दुई सकाम भीतरे गणी जिज्ञासु ज्ञानी दुई मोक्ष कामी मानी। एही चारी सुकृति होय महाभाग्यमान तत्त कामादि छाड़ी होय शुद्ध भक्तिमान। साधु संग कृपा किंबा कृष्णेर कृपाए कामादि दुसंग छाड़ी शुद्ध भक्ति पाए। आहा, तो जो सकाम है वो कौन है? वो जो बहुत आर्त हैं, बहुत दुखी हैं, क्योंकि वो अपने दुख से छुटकारा चाहते हैं। और दूसरे हैं जो कि रुपया पैसा चाहते हैं, और जो जिज्ञासु हैं कि भाई जानना चाहते हैं कि क्या है यहाँ पर, या जो ज्ञानी हैं जो कैवल्य मुक्ति चाहते हैं, मोक्षकामी। ये दोनों मोक्षकामी हैं, किंतु चारों ही महाभाग्यवान हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण का भजन करते हैं। अगर वो श्री कृष्ण का भजन करते हैं तो ही वो महाभाग्यवान हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि उन्हें भगवत कृपा से एक अच्छे भक्त का संग प्राप्त हो जाता है, सत्संग प्राप्त हो जाता है, जहाँ वो श्री हरि की कथा सुनते सुनते भगवान से प्रेम कर बैठते हैं।

और कामनाएं आदि जो दुसंग हैं वो छोड़ देते हैं और उनको शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। शुद्ध भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है? अपने आप नहीं होती, भगवान के भक्त के संग के कारण होती है, उनकी कृपा से होती है, बिना कृपा के नहीं होती है। तो कामनाएं छूट जाती हैं, बहुत पीछे रह जाती हैं और शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है जहां हम भगवान को सुख देना चाहें, है ना। तो इंद्र आदि देवताओं की जो पूजा करते हैं उनको उन देवताओं की पूजा के फल स्वरूप भगवान का भजन मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता, या उन्हें भक्त संग प्राप्त हो जाए नहीं हो सकता। भगवान की कृपा से ही भक्तों का संग प्राप्त होता है और उनकी कृपा से ही भगवान में निश्चला भक्ति उत्पन्न होती है। और जिस समय भगवान में निश्चला भक्ति उत्पन्न हो जाए, यानी हे राधा गोविंद आप ही मेरे सर्वस्व हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरणे आर गति नहीं मोर, जब ये भाव एकदम अकाट्य हो जाए तब समझ लीजिए परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो गई, यानी भगवान से प्रेम हो गया। अगर कोई भगवान की भक्ति ही नहीं करता और अन्य किसी साधन की अपेक्षा रखता है, अन्य किसी साधन को अपनाता है, तो उसको उन साधनों से बहुत ही तुच्छ फल मिलता है, है ना। तो अगर कोई इंद्रिय कामी अपनी इंद्रियों को बहुत अच्छा, बहुत बलशाली बनाना चाहता है, वो इंद्र की पूजा करता है, तो उससे क्या होगा? शरीर समाप्त, सब समाप्त, है ना। तो देवी देवताओं की पूजा से जो फल मिलेगा वो है अंतवान, समाप्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान के भजन से जो फल मिलेगा वो है भगवत प्रेम, और ये जीवन का सर्वोच्च पुरुषार्थ है जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है, ये मनुष्य शरीर मिला है। तो वैष्णव के संग से ही, भगवान के संग से ही भक्ति रूपी फल की प्राप्ति होती है, यही सत्य है, है ना। तो अगर कोई ये कहे कि ठीक है, हम अगर अनेक प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेक प्रकार की देवी देवताओं का भजन करें तो क्या कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई ये पूछे क्या गति होगी, तो उसका उत्तर यही बताया गया कि उन्हें बारंबार कर्म मार्ग में ही आना जाना पड़ेगा, कर्म मार्ग ही उनके हाथ लगेगा, क्योंकि देवताओं का भजन भगवत भक्ति के उदय का कारण कभी नहीं हो सकता है, परंतु भाग्य क्रम से, अतिशय भाग्य से किसी भक्त का संग प्राप्त हो जाए और तब उस संग से उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाए, तो ही समझ लीजिए कि मनुष्य जीवन या मनुष्य शरीर धारण करना सफल हुआ। कारण यही बताया गया कि देवताओं का तो अपना कभी कल्याण हो नहीं पाता है बिना भजन के, तो वो भला किसी और का कल्याण क्या कर पाएंगे। तो देखिए सही बात है, हमारे हृदय में कितनी कामनाएं वासनाएं पलती रहती हैं, और हमारे आचार्य कहते भी हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरता सह जीवेर जीवन पथे बोशी, असत चेष्टा रज्जु फांसे पथिकेर धर्म नाशे, प्राण लये करे कशाकुशी, मन तुमी धरो वाक्य मोर, एई सब बाट पाड़ अतिशय दुर्निवार, जखुन घेरिया करे जोर, आर किचु ना कोरिया, वैष्णवेर नाम लोइया, फुकारिया डाको उच्चराए, बक शत्रु सेना गणे, कृपा कोरी निज जने, जाते करे उद्धार तुमाए, बाट पाड़ छय जन असत चेष्टा रज्जुगण, दिया गले करिलो बंधन, प्राण वायुगत प्राय रूप रघुनाथ हाय, करो भक्ति विनोदी रखण। सही बात है, किसी को इंसान का शरीर, मनुष्य शरीर मिलता भी है तो उसके अंदर कितनी कामनाएं, क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब भर जाते हैं, ये हैं छह दुश्मन हमारे जो हमारे साथ ही आते हैं, और ये असत चेष्टाओं में हमें प्रवृत्त कर देते हैं, हमारा धर्म नाश हो जाता है। धर्म क्या

0: भगवत प्रेम धर्म है और प्राण को लेकर के खींचते रहते हैं। ये सब डाकू हैं, डाकू ये जीवात्मा को घेर लेते हैं, तो बचें कैसे? वैसे ही बचना होगा जो उपाय हमारे प्यारे आचार्य बता रहे हैं सुखदेव जी, कि भक्तों का संग मिल जाए, भक्तों का नाम लेकर के रो करके पुकारना होगा, भक्तों का नाम लेके रोकर पुकारना होगा, जैसे हमारे आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर रो के पुकार रहे हैं, कह रहे हैं कि प्राण वायु गत प्राय रूप रघुनाथ हाय हाय, कि हे रूप रघुनाथ, हे रूप गोस्वामी जी, हे रघुनाथ गोस्वामी जी, आपसे बड़ा कल्याणप्रद कौन है? ये देखिए मैं कितनी असत चेष्टा रूपी रस्सियों को अपने गले में बांधे फिरता हूं, मैं नहीं बांधना चाहता, लेकिन ये जो छह जन है ना, जो महाडाकू हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन छह महान डाकुओं ने ये असत चेष्टा रूपी रस्सियां मेरे गले में कस के बांध दी हैं, मेरी प्राण वायु जाने जाने को है, इसलिए हे रूप रघुनाथ जी आप मेरी सहायता करो, सहायता करो, मुझे भक्ति दान दो, मुझे सदमार्ग पर चलाओ, मुझे राधा गोविंद के चरणों की अहेतु की भक्ति प्रदान करो, मेरी रक्षा करो। इसीलिए आचार्यों का नाम लेकर रोना चाहिए, भक्तों का नाम लेकर रोना चाहिए, क्योंकि भक्त कभी भी संसार से जाते नहीं हैं, भक्त किसी ना किसी सूक्ष्म रूप से साधकों की रक्षा के लिए रह आते हैं, साधकों की रक्षा करते हैं, और यही उपाय हमें बता भी रहे हैं सुखदेव जी एक तरह से, और आगे भी बहुत सुंदर श्लोक हैं जिसके बारे में सुखदेव जी हमें बताएंगे, और इन्हीं के ऊपर चर्चा जारी रखेंगे। हम सुनते रहिए समर्पण, और इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए प्रेम धारा को, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।
1: तीर्थ यात्रा करने से पुण्य होता है और उससे मनोरथ सिद्ध होते हैं, किंतु तीर्थ यात्रा मात्र परिश्रम ही है, ये केवल मन का भ्रम है कि तीर्थ यात्रा से पुण्य होता है। वास्तव में श्री गोविंद के चरणों की भक्ति ही सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाली है, इसलिए दृढ़ विश्वास पूर्वक श्री गोविंद का अनन्य भजन कर अज्ञानमय अहंकार और दूसरों के उत्कर्ष को सहन ना करने की प्रवृत्ति का त्याग कर देना चाहिए।

0: का दर्शन करना, उनका ही सदा संग करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक श्री कृष्ण नाम लीला और गुणों को सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। श्री कृष्ण की पूजा, उनका किसी भी प्रकार से स्मरण और ध्यान करना ही वैष्णवों के लिए आचरणीय है। यही नवविधा भक्ति का महत्व स्वरूप है। इसी नवविधा भक्ति का आचरण ही प्रेम भक्ति का प्रधान कारण है।
1: ये थी कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट की प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह,

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं तमिलनाडु में तमिल वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा है कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में संबंधित था। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। उधर अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को स्थिर करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

किसी को ये मूवी कैसी भी लगी हो भाई, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। और इस मूवी का जो वो डायलॉग था ना भाई, मुद्दा तुझे हराने का नहीं उसे बचाने का था, ये भूल गया था। अगर हम लोग ये चीज़ याद रखें ना भाई, सामने वाले को हराना हमारा मकसद नहीं है, हमें अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को ही हराना है, तो हम अपने जीवन में ना हमेशा कामयाब रहेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स ऑफ रेनबो स्टेशन प्रोग्राम।

शुरू हो गया है. गुड मॉर्निंग दिल्ली विद योर आरजे खुशी ओनली ऑन 102.6. देखो भाई, वक्त जो है ना वो किसी के लिए नहीं रुकता. हम रहे या ना रहे, ये वक्त और दुनिया भर के तमाम काम सब चलते ही रहते हैं, कुछ भी नहीं रुकता. और इसी काम को ख़त्म करने के लिए, जो एक्चुअली में कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, हम जीना भूल जाते हैं. बहुत डीप बात बोली है मैंने. क्रक्स यही है कि लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, क्योंकि वक्त भाग रहा है. और आज हो गई है 9th of May, सैटरडे का दिन है और बेहद खास है. क्यों है ये सुनने के लिए स्टे ट्यून्ड द प्रोग्राम, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से ये ट्रैक आप सभी लिसनर्स के लिए.

0: अभी आपको लेके चलते हैं आकाशवाणी एट द रेट 90 का एपिसोड नंबर 7 ले. सुनिए.
1: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है. इसी अवसर पर हम इस यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला

आकाशवाणी एच 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। श्रोताओं, 1930 के दशक में भारत में रेडियो का विस्तार नए रूप लेने लगा था। इसी दौर में 10 सितंबर 1935 को मैसूर में एक अनोखी पहल हुई, जब आकाशवाणी नाम से एक निजी रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई, जो भारत का पहला निजी प्रसारण केंद्र बना। मनोविज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर एम वी गोपाल स्वामी ने अपने घर से मात्र 30 वॉट के ट्रांसमीटर के साथ इस प्रसारण की शुरुआत की। बाद में इसे और अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर से सुसज्जित किया गया। ये पहल किसी सरकारी योजना का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक व्यक्ति के जुनून और समाज के सहयोग का परिणाम था, जिसने रेडियो को लोगों के और करीब ला दिया। आकाशवाणी यानी आकाश से आने वाली आवाज, ये नाम भी यहीं से लोकप्रिय हुआ, जिसने आगे चलकर पूरे देश में रेडियो की पहचान बनाई। समय के साथ इस सेवा को मैसूर राज्य ने अपने अधीन ले लिया और बाद में ये आकाशवाणी का हिस्सा बन गई। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एट 90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

टाइम पर स्टूडियो क्लॉक 7:20 और आज यानी कि 9 मई को मनाया जा रहा है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। हर साल दो बार मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और जिसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। 2026 में ये दिन 9 मई यानी कि आज वसंत और 10 अक्टूबर शरद ऋतु को होंगे जिनमें संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा। संरक्षण अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और जो सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट होने, हानि या दुरुपयोग से बचाने के लिए यानी उनकी देखभाल करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इसका उद्देश्य बेसिकली यही है कि प्रवासी पक्षियों के सामने जो आने वाले खतरे हैं उनके पारिस्थितिक महत्व और उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। इनके आयोजक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये संयुक्त राष्ट्र की दो संधियों CMS और AEWA और एनवायरमेंट फॉर अमेरिकास EFTA द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। वहीं 2026 की थीम है कि हर पक्षी मायने रखता है, आपके अवलोकन महत्वपूर्ण है। इसका महत्व है कि इस दिन पक्षी अवलोकन यानी कि आपका ओवरव्यू, शैक्षिक कार्यक्रम और उत्सव आयोजित किए जाते हैं।

0: निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4-5 रेनबो पर।

दिस ट्रैक वॉज फ्रॉम द मूवी रंग दे बसंती, और धुआं छट रहा है और सब जाग गए हैं, सब जाग रहे हैं। टाइम बस स्टूडियो क्लॉक 32 मिनट्स पास्ट 7, और आज है 9 मई, और आज के दिन जिन महान महान हस्तियों की जयंती है उनमें है 1540 में जन्मे महाराणा प्रताप, उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा, बहुत बहुत ही प्रतापी भाई। मैंने तो इनके काफ़ी सारे सीरियल्स देखे हैं महाराणा प्रताप के, अगर आपने नहीं देखे हुए ना तो आप ये प्रतापी राजा के जो उपलब्धियाँ थी उनको मिस कर रहे हैं, आप जरूर महाराणा प्रताप के बारे में जरूर पढ़िएगा। 1866 में जन्मे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक एवं सुधारक थे। और साथ ही आज के दिन जयंती है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की, और ये कोलकाता के जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी में पैदा हुए थे। ये एक महान कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और नोबल पुरस्कार विजेता थे। टैगोर पहले भारतीय और पहले गैर यूरोपीय थे जिन्होंने 1913 में साहित्य के लिए नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1913 में, और उन्होंने जैसा कि हम सब जानते हैं लिखा है हमारा राष्ट्रगान। और अब जब ये पेट्रियोटिक सी जब फीलिंग आ जाती है ना, तो मुझे स्वदेश मूवी का ये गाना बहुत अच्छा लगता है। ए आर रहमान का म्यूजिक, उनकी आवाज़ में ये ट्रैक फ्रॉम द मूवी स्वदेश, ओनली ऑन रेनबो स्टेशन 102.6। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली, आपके आरजे खुशी के साथ।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली, आपकी आरजे खुशी के साथ। आज है 9 मई और आज के दिन की ऐतिहासिक घटना के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भारत की वंदना शिवा को विकासशील देशों में महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए 2010 के सिडनी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया था और उन्हें 4 नवंबर को सिडनी ओपरा हाउस में ये पुरस्कार प्रदान भी किया गया था। लेती हूँ छोटा सा ब्रेक और मिलती हूँ आप सभी लिसनर से छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: पौराणिक प्रसंग सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: गया है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

श्रेया घोषाल और तोची रैना की आवाज में ये गाना था फ्रॉम द मूवी शोर इन द सिटी। समय हो रहा है 7:45, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली आपके आरजे खुशी के साथ। और अब स्पोर्ट्स अपडेट की अगर मैं आपको बात करूं तो फिर आईपीएल का जोर शोर तो आजकल चल ही रहा है, घर घर में आईपीएल मैचेस लोग देख ही रहे हैं। और वैसे आपको जनरली बता दूं कि आज 9 मई सैटरडे के दिन जिन दो टीम्स का मैच होने वाला है वो है राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस। ये तो आईपीएल की बात थी, लेकिन अगर मैं बात करूं विमेंस प्रीमियर लीग की तो विमेंस प्रीमियर लीग 2026 की चैंपियन टीम कौन होगी इसका फैसला आज रात को ही हो जाएगा। वडोदरा में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना होगा दिल्ली कैपिटल्स के साथ। और आरसीबी की टीम एक बार वैसे खिताबी जीत हासिल ऑलरेडी कर चुकी है, वहीं दिल्ली की टीम लगातार चौथी बार फाइनल मुकाबला खेलेगी। हालांकि अभी तक दिल्ली की टीम एक बार भी ट्रॉफी नहीं उठा सकी है। स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली आरसीबी ने तो पॉइंटस्ट टेबल में ही टॉप रहते हुए सीधे फाइनल्स में जगह बना ली है। वहीं अगर जमीमा रेड्रिक्स की कप्तानी वाली दिल्ली की टीम की बात करूं तो उन्होंने एलिमिनेटर मैच में गुजरात को हरा दिया है और वो फाइनल्स में पहुंच गई है। और आज है फाइनल्स। भाई आईपीएल के मैचेस होते रहते हैं लेकिन जो फाइनल का मजा है ना वो फाइनल में ही होता है कि भाई आज तो ट्रॉफी किसको मिलेगी, ये मैच देखना इंटरेस्टिंग है। तो ठीक है, अगर आप राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस देखना चाहते हैं तो आप साथ साथ वो भी देख सकते हैं 7:30 बजे, वहीं 7:30 बजे आप ये फाइनल मैच भी देख सकते हैं क्योंकि 7:30 पर ये गेम स्टार्ट हो जाएगा और टॉस होगा 7 बजे। और देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। भाई दिल्ली की टीम जीत जाए तो ज़्यादा अच्छा है, एक बार तो ट्रॉफी हमें भी मिलनी चाहिए। और सब बाहुबली बने हुए हैं तो मैंने सोचा ये ट्रैक आप सभी लिसनर्स के लिए बाहुबली मूवी से। नीति मोहन और काला भैरवा की आवाज़ में

बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक। अगर आपने इसकी वीडियो देखी है ना, तो इस गाने की वीडियो में ही इतनी मोटिवेशन लगती है कि भाई नामुमकिन कुछ भी नहीं है, आप चाहें तो आसमान तक पहुंच सकते हैं पेड़ों को रास्ता बनाकर क्योंकि इस मूवी में, इस गाने में यही दिखाया है। अगर आज आपका जन्मदिन है, यानी कि 9 मई को आपका जन्मदिन अगर आप मना रहे हैं, तो आज आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं साउथ इंडियन एक्ट्रेस साई पल्लवी के साथ, जो कि बहुत ही क्यूट और बहुत ही स्वीट है। इन्होंने एक बार बोला था कि जब मेरे फ्रेंड्स को पता चला कि मैं एक्ट्रेस बन गई हूँ, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें लगता था मैं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हूँ। लेकिन खूबसूरती सिर्फ बाहर से नहीं होती है, अंदर से भी होती है, और एक्टिंग एक टैलेंट होता है। नो डाउट शी इज ब्यूटिफुल फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड एज वेल। और आने वाली अपकमिंग मूवी जो रामायण की बन रही है, उनमें ये सीता माता का रोल भी कर रही हैं। साथ ही इनके साथ आज जिनका जन्मदिन है, वो भी साउथ इंडियन एक एक्टर हैं, और उनका नाम है विजय देवरकोंडा। इन बहुत ही पॉपुलर हो गए, स्पेशली अपनी शादी के बाद, क्योंकि इनकी शादी हुई है रश्मिका मंदाना से, और अब वो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में पैर अपना रख चुकी हैं। और इन दोनों की शादी बहुत बहुत ही अच्छी हुई थी, और इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स ली थी, तो इनको इनकी शादी की मुबारकबाद, और विजय देवरकोंडा और साई पल्लवी को उनको उनके जन्मदिन की मुबारकबाद। और अगर आज आपका जन्मदिन है, तो आपको भी आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

नेहा आ गई है स्टूडियो में गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर को कंटिन्यू करने के लिए। मैं आपसे मिलूंगी 9 से 10 प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए पुराने में। स्टे ट्यून्ड।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: सुबह के 8 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल 102.6 पर दिल्ली NCR में। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR और इसका सेकंड आवर लेकर मैं नेहा आपकी खिदमत में बिल्कुल हाजिर हो चुकी हूं। और बताइए आपकी सैटरडे मॉर्निंग कैसी कैसी चल रही है। भाई देखिए, हमने तो आकाशवाणी पर पूरा इंतजाम ऐसा करके रखा ही है कि आपकी मॉर्निंग बहुत ही अमेजिंग तरीके से शुरू हो जाए। बेहतरीन गानों का साथ, जानकारियों का पिटारा, सब कुछ तो यहाँ पर है और आपको किसी भी चीज के लिए कहीं और जाने की कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए। और अब इस घंटे में हम जानेंगे कि दिल्ली NCR में क्या कुछ खास और नया हो रहा है, कुछ ऐसी बातें जो हमें जानना चाहिए और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मैं आपको यह भी बताऊंगी कि अगर आप घूमने फिरने जाना चाहते

रहे हैं, तो कौन सी स्पेशल जगह हो सकती है जो आप इस वीकेंड या फिर आने वाले वीक में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं? और अब तो बच्चों की छुट्टियां भी मुझे लगता है कि शुरू हो चुकी हैं दिल्ली में, और समर वेकेशंस में आपका क्या प्लान है? आई एम होपिंग कि आपने कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर ज़रूर प्लान किया होगा। और दोस्तों पता है, एक बात मैं पढ़ रही थी जो किसी महान व्यक्ति ने कही है कि नफरत करना आसान है जबकि प्यार करना मुश्किल है। दुनिया की सारी चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं, सारी अच्छी चीज़ों को पाना मुश्किल होता है और बुरी चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। अब अगर ऐसा है तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें हमें ज़िंदगी में आसानी से मिली हैं, क्या वो अच्छी हैं हमारे लिए या नहीं है। तो फैसला कीजिए और इस गाने के साथ कीजिए कार्यक्रम के साथ साथ अपने दिन की भी शुरुआत। गुड मॉर्निंग मेरी जान।

अब इनका दिल तो कुछ और सुनने को बेकरार है, लेकिन मेरा दिल जानते हैं क्या सुनने को बेकरार है? यही सुनने को कि नेहा देखो बाहर बारिश हो रही है। क्या करें भाई, गर्मी इतनी हो रही, तो ऐसे में बारिश तो समझ लीजिए एक किसी वरदान से कम चीज नहीं है। और आज लेकिन बारिश के दर्शन होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर मौसम विभाग है वो कह रहा है कि आज पूरे दिन धूप खिली रहेगी, ऐसा अनुमान है। और हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा एंड मिनिमम टेम्परेचर विल रिमेन एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि गर्मी बनी रहेगी और पूरे वीकेंड पे देखें तो गर्मी रहने के अनुमान है। और नेक्स्ट वीक में मिड ऑफ द वीक ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी अराउंड वेंसडे, लेकिन तब तक इंतजार हम जरूर करेंगे, क्योंकि इंतजार करने में जो मजा है ना, वो क्या बताएं आपको, उसका तो किसी और से हम तुलना नहीं कर सकते हैं। आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो तबीयत खराब होना लाजमी सी बात है, जो कि मेरे साथ भी हुआ। दो दिन ऐसा लग रहा था कि पेट में जाने क्या खलबली मच रही है, तो ये जो खलबली थी इसको मैंने कल रात खिचड़ी खाकर ठीक करने की कोशिश की, एंड आई एम टेलिंग यू इट्स सो इफेक्टिव कि बहुत फर्क पड़ गया है जो भी तकलीफ हो रही थी गर्मी की वजह से और बाहर खाने की वजह से। तो आप सभी अपना ख्याल जरूर रखिएगा, और हाँ, आपका मनोरंजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलता रहे उसका इंतजाम देखिए यहाँ पर हो गया है आशा भोंसले और अभिजीत की आवाजों में DDLJ से ये गाना सिर्फ आपके लिए।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

इस गाने में मोहित चौहान भैया जी बार बार एक ही बात कह रहे हैं, मैंने न जाना तू ही बताना। तो हाँ, मैं बताऊंगी ना आपको हमारे रहते जो खास बातें हैं वो आप न जाने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए आपको बता देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित करने शुरू कर दिए हैं। ये पुरस्कार किसी की जान बचाने के लिए असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा दिखाने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इसमें नामांकन की अंतिम तिथि रहेगी 30 सितंबर 2026। और अगर एलिजिबिलिटी की बात करें मेरे दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि समाज के सभी वर्गों के नागरिक, सरकारी कर्मचारी, पुलिस, अग्निशमन सेवा के कर्मचारी इसके पात्र हैं। साथ ही अगर पुरस्कार की श्रेणियां जानना चाह रहे हैं आप, तो सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक इसमें शामिल है, साथ ही उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक, ये तीन तरह के पदक इस पुरस्कार की श्रेणी में शामिल हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास ऑनलाइन ही अप्लाई करने का मौका है फिलहाल, तो आपको हम बता दें कि सभी सिफारिशें केवल नेशनल अवार्ड्स पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही भेजी जा सकती हैं। और ऑनलाइन फॉर्म में बचाव कार्य का विवरण आपको देना होगा, जो कि 250 शब्दों तक होना चाहिए, जिसमें जोखिम और घटना का विवरण शामिल होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और डिटेल्स आपको चाहिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया awards.gov.in पर आप जाकर ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अब अगली जानकारी आप प्राप्त कर रहे हैं अगले गाने के बारे में। सुखविंदर पाजी गा रहे हैं, हाय हाय मिर्चे, ओह ओह मिर्चे। अगर आपको मिर्चे खाना पसंद है ना, तो एंजॉय कीजिए ये गाना मेरे साथ। मेरा नाम है नेहा।

0: क्या बात है, आपको पता है मिर्ची मिर्ची की इतनी बात हो रही थी ना, मुझे मिर्ची से यानी कि लाल मिर्ची से बनने वाली वो जो चटनी होती है ना, जिसमें लहसुन डालते हैं, लाल मिर्ची डालते हैं और उसको पीस के क्या मज़ेदार रेड रेड सी चटनी बनती है, मज़ा ही आ जाता है। लेकिन उसको खाने के लिए ना टमी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कमज़ोर पेट वाले लोगों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। हालांकि विंटर्स में मैं उसे बहुत मज़े से खाती हूँ, रोटी पे घी डालो, चटनी डालो, वाह जी वाह क्या मज़ा आ जाता है यार सच में। लेकिन गर्मियों में हम मिर्ची की बातें नहीं करेंगे क्योंकि तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन गर्मियों में बातें किस बारे में करनी चाहिए वो मैं आपको ज़रूर बता दूँ। जैसे कि मैंने अभी कहा था भाई, समर वेकेशन हमारे बच्चों की शुरू हो चुकी हैं, तो ऐसे में अगर पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि हम इन वेकेशन के दौरान अपने बच्चों को कहाँ किसी कंस्ट्रक्टिव लर्निंग चीज़ में डालें जहाँ बच्चे बहुत कुछ सीख के आ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि हमारी जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है वो रोड सेफ्टी अवेयरनेस समर कैंप चला रही हैं स्कूली बच्चों के लिए दिल्ली NCR में, दिल्ली शहर में खासकर, और इसकी शुरुआत हो रही है 18 मई से और ये 5 जून तक पूरा कैंप चलेगा। इसका उद्देश्य है कि हम अपने बच्चों को, अपने यूथ को ये बताएं कि रिस्पॉन्सिबल रोड बिहेवियर क्या है, ट्रैफिक रूल्स क्या हैं और कैसे रोड पर हम सेफ्टी अपनी भी और बाकी लोगों की सेफ्टी भी इंश्योर कर सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप खुद समझते हैं कि रोड पर सेफली आपको ट्रैवल करना, कम्यूट करना, मूव करना कितना इंपॉर्टेंट है, और हमारे यूथ को अगर ये बातें पता चलेंगी तो डेफिनेटली एक बड़ा बदलाव इन अ पॉजिटिव वे हम अपने आसपास देखेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कहां पर ये ट्रेनिंग हो रही है, तो कुछ डेजिग्नेटेड ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क्स बनाए गए हैं जहां पर ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी। अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर इंफॉर्मेशन वहां से एक्सेस कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही नॉवल आइडिया है, बहुत ही बेहतरीन चीज हो रही है, जिसमें आई एम श्योर आप अपने बच्चों को जरूर भेजेंगे ताकि उन्हें ट्रैफिक के बारे में प्रॉपर सेंसिटाइजेशन मिल सके। और इसी के साथ अब अगला गाना हम जरूर सुनेंगे, लेकिन एक छोटा सा एड ब्रेक ले लिया जाए, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही छोटू सा एड ब्रेक है, ज्यादा बड़ा एड ब्रेक नहीं है, और उसके बाद गानों का सिलसिला हमेशा की तरह जारी रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर।
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102

सुबह के 8:41 हो चुके हैं और एक रात तो नहीं लेकिन एक बेहतरीन सुबह, एक बेहतरीन दिन आप जरूर बिता सकते हैं राष्ट्रपति भवन फोर कोर्ट में। आपको बताना चाहूंगी कि राष्ट्रपति भवन का चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी आप देख सकते हैं हर शनिवार को सुबह 7:30 पर। आज का शनिवार तो गया लेकिन अगले शनिवार के लिए, क्योंकि छुट्टी का दिन होने वाला है मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए, तो ये आप जरूर एंजॉय कर सकते हैं। परंपरा, अनुशासन और शौर्य का अद्भुत संगम, चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी, जिसके लिए अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप राष्ट्रपतिभवन.gov.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और यहां पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, परंपरा और पराक्रम का अनूठा संगम है चेंज

ऑफ गार्ड सेरेमनी, जिसमें हॉर्स शो आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति अंगरक्षक की घुड़सवार टुकड़ी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आप देख पाएंगे, साथ ही 1/5 गोरखा राइफल्स द्वारा ड्रिल प्रदर्शनी भी आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ सैन्य परंपरा की संगीत में प्रस्तुति सैन्य बैंड के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो साथ ही आप अपने बच्चों को लेकर जाएं, उन्हें बताएं हमारे देश की धरोहर क्या कहती है और किस तरीके से चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी के जरिए राष्ट्रपति भवन की एक अनूठी कला आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। तो अगले शनिवार को सुबह 7:30 बजे आप यहाँ जरूर जाइएगा। और अब एक बहुत ही बेहतरीन गीत आपके लिए आ रहा है, गोविंदा। क्या थिरक रहे हैं, क्या नाच रहे हैं विनोद राठौड़ की आवाज में और साथियों की आवाजों में। रेशमी रुमाल वाला है तेरा दिल वाला।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस।

0: के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

सुबह के 8:52 और 12 सेकंड। जानते हैं, समय की अच्छी बात यह है कि वो आगे बढ़ता रहता है, और समय की यही बात बुरी भी है कि वो आगे बढ़ता रहता है। जब हमें अच्छा वक्त लग रहा होता है तो लगता है कि हाय, समय कहीं यहीं रुक जाए, ये समय आगे ना बढ़े, और जब मुश्किल घड़ी होती है तो लगता है ये समय कब बीतेगा। और जैसे कि मुझे अब लग रहा है ये समय इतनी जल्दी क्यों बीत गया आपके साथ, तो मुझे अभी और बातें करनी थी और बहुत से गाने आपके साथ मुझे साझा करने थे, साथ सुनने थे बैठकर। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जब जाने का वक्त होता है ना दोस्तों, तो एक वादा हम आपसे ज़रूर करते हैं कि अगले किसी शो में आपसे ज़रूर मुखातिब होंगे और आपके साथ बैठकर बहुत सारी बातचीत करेंगे। फिलहाल नेहा का वक्त हो गया है यहाँ से जाने का। और आप सभी को आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमारे बिंदास बोल कार्यक्रम में, आप अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको बता दूँ कि अगला कार्यक्रम आप कौन सा सुनने वाले हैं। अगला कार्यक्रम रहेगा दिल के तरह, ने गाने नए पुराने, खुशबू इस कार्यक्रम में, खुशी इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी, उनके साथ आप ये कार्यक्रम ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। और मैं नहीं आपसे मिलूंगी, बस अगले किसी शो में कब मिलूंगी ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि आने वाले वीक में हम एक बार फिर से मिलने वाले हैं, और एक नहीं दो दो बार मिलेंगे, तो क्या बात है। और चलते चलते आज के शो का आखिरी गाना सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में, क्या मज़ेदार गाना है, नाचने थिरकने पर आपको मजबूर करेगा। ऐसे ही खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई ज़रूर बना के रखिए, और जितने भी नियम कानून हमारे देश में हैं हम उन्हें ज़रूर फॉलो करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: और अब आकाशवाणी पर ये अगला एक घंटा वाणी बहुत कम चलेगी और गाने बहुत ज्यादा चलेंगे, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो गया है दिल के तराने, गाने नए पुराने जहां आप सुनने वाले हैं बॉलीवुड के बैक टू बैक ट्रैक्स। और हर 15 मिनट पर 9:15, 9:30 और 9:45 रेनबो की ओल्ड डायरी से मैं लेकर आऊंगी गोल्डन सॉन्ग्स। तो बने रहिए रेनबो स्टेशन के साथ और सुनते रहिए बैक टू बैक म्यूजिक।

0: प्यार होता।
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
2: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
3: पता का चाय गजब का स्वाद।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: यस, 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है दिल के तराने, गाने नए पुराने, आपकी आरजे खुशी के साथ। और इस वक्त दिल्ली का तापमान है 32 डिग्री सेल्सियस, जो कि मैक्सिमम जाएगा 36 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 36 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम रहेगा। और पूरे हफ्ते की बात बताऊं तो पूरे हफ्ते मैक्सिमम जाएगा 41 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम जाएगा 27 विद एक्सेसिव हीट। तो अपना ध्यान रखिएगा, सनस्क्रीन लगाइएगा एंड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। एक पानी की बॉटल अपने साथ हमेशा रखिएगा और उस पानी की बॉटल में थोड़ी सी बर्फ, थोड़ी सी खांड और एक नींबू और थोड़ा सा काला नमक भी हो जाए ना, तो बस ये शिकंजी आपके साथ रहेगी। एक दो लीटर की बॉटल लो, सारा दिन घूमो फिरो, थोड़ा पसीना बहाओ, लेकिन ये जो पानी है ना, ये आपको तंदुरुस्त और मस्त रखेगा। लेती हूँ छोटा सा ब्रेक और मिलती हूँ आप सभी लिसनर से छोरे से ब्रेक के बाद।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी पर अगले आने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी आपको दे देती हूँ। 10:05 से 11 तक आप सुनेंगे मैचलेस म्यूजिक आवर्स, विच इज अ वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम, और ये आपके साथ करेंगे आकांक्षा मिश्रा, आपके साथ रहेंगी 11:05 तक। 11:05 से 12 तक आप सुनेंगे प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स आरती मल्होत्रा के साथ। 12:05 से 1 तक प्ले, 2 से 3 तक प्रोग्राम आशियाना प्रियंका वर्मा के साथ, और रेनबो पर प्रोग्राम्स का सिलसिला यूं ही कंटिन्यू रहेगा।

मुझे खुशी यानी कि मेरे जाने का वक्त आ गया। और जाने से पहले इतना ही कहना चाहूंगी कि रिश्ता बचाने की कोशिश मत करो, जो जाने को बेताब है ना उन्हें रास्ता दे दिया करो। और मेरा भी अब रास्ता सामने दिख रहा है क्योंकि आकांक्षा आ गई है स्टूडियो में विद द प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक आर्ट्स, जो आप सुनेंगे 10:05 से 11 बजे तक आकांक्षा के साथ। आज खुशी को दीजिए इजाजत, खुश रहिए, खुश रखिए और सुनते रहिए रेनबो स्टेशन। मैं आपसे मिलूंगी कल दोबारा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ देर बाद कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में

पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में बृहस्पतिवार तक लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Welcome back. That was John Denver just letting us enjoy the Saturday morning. And right now, it's time for us to take a short break and we will be right back. Please stay tuned.
1: Ek zamane se kahani hai suna rahi Akashwani. Phir aaya entertainment ka revolution. Jab kone kone pahuncha doordarshan. Kahani nahi badli, style gaya hai badal. जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
3: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा
4: स्वस्थ रहने का फंडा रोज खाएं अंडा एनईसीसी द्वारा जनहित में जारी
0: Yes, as promised, we are back after the break and it's time for us to play the next track for you. This is Pretty Woman by Roy Orbison. Please enjoy.

0: Welcome back, and it's time for us to take a short break, and we'll be right back. Stay tuned in.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेल बिल्कुल वापस है आप सभी के साथ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर अपनी दोस्त आरती मल्होत्रा के साथ। सवाल पूछ चुके हूँ मैं आपसे, बलवाने के लिए आपको बॉलीवुड सरताज और

सारे जवाब भी आ रहे हैं 9868107070 नंबर है हमारा। और सवाल बड़ा आसान था कि शिवाजी छत्रपति के जो बड़े बेटे हैं वो कौन है, और उनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने। एनीवेज चलिए कुछ और बात कर लेते हैं भाई। टॉप बॉलीवुड ग्रॉसर्स जरूर आपको बताएंगे कि कौन कौन सी मूवीज है जिन्होंने बहुत बहुत बढ़िया ब्लॉकबस्टर कमाई की है। तो धुरंधर द रिवेंज तो है ही, बॉर्डर 2 भी पीछे नहीं रही, और भूत बंगला की 234 करोड़ की अब तक कमाई हो चुकी है। रोमियो भी 118 करोड़ कमा चुकी है, और राजा शिवाजी 50 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, और अंदाजा है कि इससे कहीं ऊपर चली जाएगी। वेल, आजकल टॉक ऑफ द टाउन कौन है? रणवीर सिंह। जी हाँ, रणवीर सिंह बन चुके हैं न्यू बॉक्स ऑफिस किंग, और प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि उनको बड़ी बड़ी मूवीज में लेने के लिए। मिड बजट रोमांटिक फिल्म्स स्ट्रगल कर रही हैं थिएटर्स पर, और इसी के साथ ही ओटीटी सक्सेस बहुत हेल्प कर रहा है जो लोग हैं, जो एक्टर्स हैं, उन सभी के लिए। और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में बहुत बड़ा ह्यूज क्राउड देखने को मिल रहा है। एंड द ट्रेंडिंग स्टार्स आर रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी एंड रितेश देशमुख। वेल, बॉलीवुड की और बहुत सारी गॉसिप्स के साथ और बॉलीवुड सरताज के साथ बिल्कुल वापस आऊंगी मैं आप सभी के लिए। अभी नेहा कक्कड़ की वॉइस में वन ऑफ माई वेरी फेवरेट नच दी।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: वेल जी, समय हो चला है आप सभी को बताने का कि कौन है आज का बॉलीवुड सरताज। तो आज के बॉलीवुड सरताज बनते हैं आप सभी, क्योंकि भाई आज थोड़े टाइम के पाबंदी की वजह से किसी से बात नहीं हो पाएगी, लेकिन बॉलीवुड सरताज आप सभी हैं। बसंत तोमर जी, आपसे बात हुई थी एंड आप बनते हैं बॉलीवुड सरताज। साथ ही पंकज है अमरावती से, जिन्होंने सही जवाब देकर बन जाते हैं हमारे बॉलीवुड सरताज। और सलीम मलिक मेरठ से, साथ ही प्रवीण चौहान, इन्होंने सही जवाब दिया है। और सांभाजी राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से, ये सभी हमारे बनते हैं बॉलीवुड सरताज। और सही मायने में आप जब हमसे जुड़ते हैं दिल से दिल का रिश्ता बना के, तो डेफिनेटली हमें भी बहुत अच्छा लगता है। एफएम रेनबो सांभाजी, ये शाजी भोसले उमेश कुमार खयाला से इन्होंने हमें मैसेज किया है। मोहम्मद इम्तियाज साहब, आप भी बनते हैं हमारे बॉलीवुड सरताज। और साथ ही ऋषु कटारिया, पवन कटारिया पंजाब से, और इन्होंने सही जवाब दिया है कि सांभाजी महाराज ये शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र थे और जिनका जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। वेल एनीवेज, एंड अब समय हो चला है कि हम आगे बढ़े अपने बॉलीवुड के गॉसिप्स को लेकर। और बॉलीवुड गॉसिप्स में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी। देखिए, बहुत सारी उठा पटक है और बहुत सारी न्यू रिलीजेस है जो अभी आने वाली है। कह रहे हैं कि भाई सलमान खान भी दस्तक देने वाले हैं बहुत जल्द अपनी फिल्म को लेकर, और उनकी फिल्म के बहुत सारे कयास लगा जा रहे हैं। मातृभूमि शायद इसको लेकर वो बहुत जल्द ओटीटी पर आने वाले हैं। एंड इसी के साथ ही रणवीर सिंह, जैसे कि हमने आपको बताया कि सभी प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि उनके साथ काम करें, और बड़े दुख की बात है कि बड़ी सारी रूमर्स भी फैल रही है भाई हमारे शक्ति कपूर साहब, परमात्मा उनकी उम्र को लंबा करे। और कैसे एक न्यूज़ फैल गई उनके ना रहने की, जो कि बहुत बुरी बात है। जब तक आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लियर ना हो, प्लीज़ किसी के लिए इस तरह के बातें मत कहिए। और सुखद सोचिए, आप वो भी इंसान है, उनकी फैमिलीज है, उनको कैसा लगता होगा जब इस तरह की चीजें आती है। वेल एनीवेज, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़, आकाशवाणी दिल से दिल तक। इसके बाद लाइन अप प्रोग्राम्स है आप सभी के लिए, जिसको आप एंजॉय करेंगे। फिलहाल मुझे यानी आरती को दीजिए इजाजत। नमस्कार, मस्ती की पाठशाला आप सभी के लिए रहेगी चक द इंडिया से नरेश कुमार की वॉइस में। एंजॉय कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करीब। भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
0: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 वैशाख गुरुदिन रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल एसएन राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों

0: विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: Good afternoon. This is 102.6 megahertz Akashwani FM Rainbow India and the program you're tuning in is called Play It Cool. Yes, the program comes to you every day from 12:05 to 1 p.m. bringing you the coolest of music in the town. And this is me, Akansha Mishra. Yes, on today's edition of Play It Cool. And today we will discuss about the ultimate weekend strategy. You know, all days in the week, we have 10 different tabs open in our mind. About work, about to-do lists, about health checkup, about paying the bills. So how does one really play the refresh button or click the refresh button so that the tabs in the brain can really take a pause and we can be a little fresh for the weekend? Yes, so we would like to know what is your ultimate weekend strategy. Let us know on the studio's WhatsApp number, which is 9868107070. Yes, and that's 9868107070. I repeat the number. And let's start the show till we wait for your messages with the first track by Selena Gomez. The track's name is called Love On. Enjoy.

0: वाणी आकाशवाणी।
1: वेलकम बैक एंड टुडे ऑन प्ले इट कूल वी आर डिस्कसिंग योर अल्टीमेट वीकेंड स्ट्रेटजी। यू नो समटाइम्स द बेस्ट वीकेंड स्ट्रेटजी इज जस्ट अ चेंज ऑफ हराइजन एंड द प्लेस और योर सराउंडिंग्स। वी वुड लाइक टू कॉल इट द 5 आवर रूल। सो इट मीन्स इफ यू कैन गेट योर सेल्फ टू अ हायर ऑल्टीट्यूड अप इन द माउंटेन्स टू ब्यूटिफुल प्लेसेज लाइक लैंसडाउन और मसूरी इन उत्तराखंड और इवन इफ इट्स जस्ट अ लॉन्ग ड्राइव वे the air feels a little cooler and thinner, we recommend that you take that drive. And because you know there is something really about sitting behind a steering wheel in a car and driving on a highway which helps you process the week better than an Excel spreadsheet ever could do that, right? And for those of you who are currently hitting the road, coming up next is a beautiful vibrant track by Shakira. This is Zoo by Shakira. Enjoy. Come on, get on.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एनएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
0: मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवी के ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्यवाही धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल

क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नॉटी बिल्लो। जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे ये सॉन्ग दिलजीत दोसांझ और नक्श अजीज की वॉइस पे, फिल्लौरी फिल्म से। और मैं बता दूं आपको, प्रोग्राम शुरू हो चुका है आप सभी का पसंदीदा मेरा वाला सॉन्ग एफएम रेनबो आकाशवाणी दिल्ली 102.6 मेगाहर्ट्ज़, आपकी दोस्त आरती मल्होत्रा के साथ। एंड वेल, जैसे कि है मेरा वाला सॉन्ग, तो डेफिनेटली आपकी सारी सभी फरमाइशों को हम लोग पूरा करने वाले हैं। आप अपनी फरमाइश हमें अपने नाम अपने मैसेज के साथ लिखकर भेजेंगे दोस्त, और उन सभी फरमाइशों को पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी हमारे कहाँ भेजने वाले हैं हमें फरमाइश, आप भेजेंगे 9868107070। SMS कीजिए हमें और कहते हैं दोस्त कि कुछ इस तरह, कुछ इस तरह फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी, मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी।

जी बिल्कुल, दिल का रिश्ता ही तो है जो हमें और आपको बांधे हुए है। कहते हैं दोस्त की जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए, जो भी आया है वो जाएगा एक दिन।

फिर ये अहंकार किसके लिए? अजी अगर यही समझ में आ जाए जिंदगी का फलसफा, तो जिंदगी आसान ना हो जाए हम सबके लिए? वेल, आसान और किए देते हैं, चलिए आपके मैसेजेस लेना शुरू करते हैं। ये हमारे पास मैसेज आया है, सबसे पहला मैसेज हम लोग लेने वाले हैं पहले, और उसके बाद हम लेंगे दूसरा मैसेज। सबसे पहले आया है राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से। गुड आफ्टरनून जी, इन्होंने गीत संगीत कार्यक्रम बहुत अच्छा है, और कोई भी गीत FM रेनबो पर हमारा नाम शामिल कर दीजिए। तो लीजिए जी, कर दिया हमने। और ये राहत और गजल कह रहे हैं नेहतपुर बिजनौर से, इश्क मूवी का कोई भी सॉन्ग सुनवा दीजिए। ओके, एंड नेम नौशाद चौधरी, माय सन मोहम्मद अकरम चौधरी, मूवी नेम प्यार किया तो डरना क्या, सॉन्ग नेम ओ ओ जाने जाना, ओ वन ऑफ माई वेरी फेवरेट। डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूंगी, हर हर गंगे बत्ती गुल मीटर चालू, जय जय महाकाल, गुड बॉय प्रवीण चौहान खरगोना मध्य प्रदेश से कह रहे हैं। ओके जी, एंड आप सबको मदर्स डे की एडवांस में बधाई। अच्छा जी, एडवांस में ले लीजिए आप भी। लुका छुपी मूवी का सॉन्ग आजा शाम है मुझे तेरी फिक्र है, ये वाला गाना हमारे सभी रेनबो के लिसनर्स को डेडिकेट करना चाहता हूँ। और मनोज सिंह लाजवंती गार्डन न्यू दिल्ली से ये बोल रहे हैं। ठीक है सर, और मदर्स डे के एडवांस की जो बधाई है वो भी हम स्वीकार करते हैं। गुड आफ्टरनून आरती जी, कैसे हैं आज? प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, पैडमैन मूवी का सॉन्ग सुना दीजिए। आज से मेरी सारी गलियां मेरी, आज से तेरी सारी गलियां मेरी होगी। कंचन यमुना प्रसाद दिल्ली से कह रही हैं, सोनिया विहार से। और ये कौन है हमारे दोस्त, जम्मू डिस्ट्रिक्ट डोडा से तहसील से कह रहे हैं, माई नेम इज़ नरजीत ठाकुर, वाइफ रत्ना देवी, ये दुआ है मेरी रब से, ये सॉन्ग सुनवा दीजिए। वल वल वल, हमारी भी दुआ है कि आप सभी के साथ हम यूं ही बने रहे। आई लव यू मूवी का सॉन्ग हमारे किसी लिसनर्स ने सुनने की, सॉरी आई लव यू मूवी नहीं है, बॉडीगार्ड फिल्म का आई लव यू सॉन्ग है आश किंग की वॉइस में। हमारे किसी लिसनर्स ने इसकी भी फरमाइश की थी, तो फिलहाल तो ये उनके लिए।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

भाई जिंदगी में आप भी हमारे चले आइए और जिंदगी को खुशनुमा बनाइए और आप हमारे साथ रहते हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी एंड मेरा वाला सॉन्ग। और ये हमारे पास मैसेज है लक्ष्मी अरविंद निशा प्रमोद एंड मम्मी पापा का, जो कह रहे हैं ग्राम टुंडा से, लकी नो टाइम फॉर लव, जान मेरी जान रही है सनम। ओके, बिल्कुल कोशिश करेंगे एंड थैंक यू मम्मी पापा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गाओ शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ कह रहे हैं फिल्म प्रेम रोग एक दूजे के लिए, ये इस गीत की फरमाइश की है। सुनीता शर्मा शालीमार बाग मूवी माचिस का छोड़ आए हम वो गलिया। अरे सुनीता जी कहाँ थी आप, आपको तो ढूंढ रहे थे हम। चलिए गुड आफ्टरनून दोस्त, वेलकम बैक सौरभ बनीजा। दोस्त मेरी कोई सॉन्ग चॉइस नहीं होती, मैं तो बस शो इंजॉय करता हूँ। ओके सौरभ, ये बहुत अच्छी बात है आपकी, आप हमेशा इंजॉय करते हैं सॉन्ग और लिख के भी भेजते हैं। एनीवेज गुड आफ्टरनून जी, फिल्म का नाम दीवाना, गाने के बोल सोचेंगे तुम्हें प्यार करें या नहीं, सलीम अख्तर और रेशमा बेगम अलीगढ़ से ये कह रहे हैं हमें मेरा वाला सॉन्ग। सबसे पहले आपको शुभ दोपहर, हमारी एक फरमाइश जरूर पूरी करिएगा। गाने के बोल है तुझे ना देखूं तो चैन मुझे नहीं आता, फिल्म रंग से कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज में इन लोगों ने ये सुनना चाहा है और बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। और फिलहाल रेखा भारद्वाज की वॉइस में बर्फी फिल्म से फिर ले आया दिल, ये रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी एंड इसको मैं प्ले कर रही हूँ डेफिनेटली, और उसके बाद फिर देखते हैं हम किसकी फरमाइश पूरी करते हैं।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

कहते हैं दोस्त की जिंदगी के भी अलग ही चैप्टर हैं। एक को समझो तो दूसरे के लिए तैयार रहना पड़ता है। यही तो है जिंदगी, अगर इतनी जल्दी समझ आ जाती तो फिर बात ही क्या थी। कभी धूप, कभी छांव, कभी खुशी, कभी गम। और देखिए कितनी सारी खुशियां हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही हैं। इतने प्यार से आप हमें मैसेजेस कर रहे हैं। शुभ दोपहर ही रेडियो सखी आरती जी, सब प्रेम नमस्कार। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है और किसी भी गाने में शामिल कर लीजिए। ओके जी, रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता। देखिए मैंने बहुत सारे जितने सारे गाने अभी तक प्ले किए ना, सब में आपको शामिल कर लिया है सर। मैडम जी, आपको धर्मेंद्र कुमार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं अभी आपको इसराइल से सुन रहा हूँ। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से इशलागंज का रहने वाला हूँ। मुझे एक गाना सुनवा दीजिए, हम हैं इस पल यहाँ, जाने कल हो कहाँ। ओके धर्मेंद्र जी, एंड फिर ले आया दिल बर्फी से, ये हम सुनवा चुके हैं। दोस्त राजीव रावत जीरकपुर पंजाब से आपने ये फरमाइश की थी, आपका नाम भी ले लिया है। एंड राजेश शर्मा ख्याला से कह रहे हैं आप लौट चले मूवी का टाइटल सॉन्ग सुनवा दीजिए। ओके, एंड भगवती हमें कह रही हैं कि आपको नमस्कार, फिल्म साथिया का सॉन्ग सुनना है, चुपके से लग जा गले। और या फिर उन्होंने दो तीन चॉइस दे रखी, चेन्नई एक्सप्रेस, स्प्रेड मैन, रोग। ओके, इन सभी में से कोई भी आप सुनवा सके तो। नमस्कार मैम, मैं भी प्रोग्राम आपकी डेली सुनता हूँ। मैं मनोज कुमार रघुवीर नगर दिल्ली से, हमारे कल साथी सिलाई का काम करते हैं और प्रोग्राम के मज़े भी लेते हैं। ओके, सिलाई का काम करते हैं हम, जैसे रामू राठौर, मनमोहन राठौर, सुमित राठौर, रामजी शुक्ला, दीपू, विमल माथुर, अंकित राठौर, रामकिशोर ठेकेदार, अर्जुन राठौर, इन सभी की पसंद का एक गाना अच्छा सा सुनवा दीजिए। सो स्वीट। देखिए जो सारे गाने मैंने सुनवाए ना, डेफिनेटली आपकी पसंद के होंगे और आपने इसे इंजॉय किया होगा। बढ़िया सी सिलाई कीजिएगा। हाय, मेरा नाम प्रांशु पटेल है, शकरपुर दिल्ली से, अगर हो सके तो पिंड पोषमाल फ्रॉम मिशन कश्मीर। ओके, एंड सैयारा मूवी का सॉन्ग सुनने की फरमाइश की है खुशी कर्नाटका से।

बोल रही हैं पंकज अमरावती महाराष्ट्र से। अजी मैंने आपका मैसेज शामिल भी कर लिया था और शायद फरमाइश भी सुनवाई है। गुड आफ्टरनून आरती मैडम जी, आज के कार्यक्रम में किसी भी गीत में शामिल कर लो, नाम भी शामिल हो गया जी आपका। एंड एंड एंड एंड एंड और कौन कौन से, ये देखिए कंप्यूटर स्क्रीन भी ना ऊपर नीचे भागने शुरू कर देती है आपके, इतने सारे मैसेजेस की बाढ़ आती है। आरती जी नमस्कार, फिलोसॉफिकल प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। ओके, मीठी आवाज़ के साथ तेरे नाम फिल्म तुझसे मिलकर गाने को अलका एंड उदित नारायण ने गाया है, सुनवा दीजिए। थैंक्स, हैव अ ग्रेट वीकेंड। रवि जोशी मेरठ से बोल रहे हैं। चलिए फिलहाल अब देखते हैं किसकी फरमाइश पूरी हो रही है। लकी नो टाइम फॉर लव, जहाँ मेरी जा रही है सनम, इस गाने को सुनना चाहा था। और पता है क्या, चीटिंग नहीं करनी है, जिसका भी फरमाइश पूरा होता है ना फिर मुझे थैंक यू मैसेज ज़रूर करो। ओके, मैं नाम भूल जाती हूँ। चलिए सुनिए इसको।

0: बेहद खूबसूरत गीत, फिल्म का चाहे जो भी हाल रहा हो दोस्तों, लेकिन गीत बड़े मज़ेदार थे इस फिल्म के। एंड भाई वक्त हो चला है, देखिए ना चलता चला जा रहा है टाइम, और मैं फटाफट आपकी और फरमाइशें ले देती हूँ। कोमल चंद साहू फिंगेश्वर छत्तीसगढ़ से कह रहे हैं मेरे जीवन साथी सॉन्ग सुनवा दीजिए। ओके एंड एंड एंड एंड आज रेल दिवस है, ये कौन कह रहे हैं हमें गीत, दोस्त गाड़ी बुला रही है, और हिरन मगरी सेक्टर 4 उदयपुर राजस्थान से कह रहे हैं सुशील यादव, रेणु यादव, मोहित यादव, नमिता एंड कार्तिक यादव, आज रेल दिवस है। ओके जी आपको मुबारक हो। आदाब, गीत कब तक चुप बैठे, कुछ तो है बोलना। कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान और फरिया ताहिर, इन सभी ने ये फरमाइश भेजी है। और सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन शांति नगर सोनीपत से अभी भी कुछ टाइप कर रहे हैं। एंड प्रेजेंटर जी, वेरी हैप्पी एंड हेल्दी सैटरडे, गुड आफ्टरनून, ऑन आर रिक्वेस्ट काइंडली प्ले द सॉन्ग, कहते हैं हम कसम आतिश फिल्म से, मिस्टर आशिक। दो तीन इन्होंने फरमाइश भेजी है मेरे को और अभी भी ये टाइप कर रहे हैं। आपका नाम ले चुकी हूँ मैं। ओके आरती जी, मेरा मैसेज आ नहीं पहुंचा क्या? ओ ओ ओके, मोहम्मद इम्तियाज एंड सलमा बेगम, जवाहर कैंप, कीर्ति नगर, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी, गुड आफ्टरनून आरती जी, मोहम्मद इम्तियाज, फिल्म DDLG, दिल तो पागल है, कयामत का, दिल का रिश्ता से कोई भी सॉन्ग सुनवा दीजिए। मोहम्मद साहब मैं पूरी कोशिश करूंगी, अगर इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली। जैद और हुडा गाजियाबाद से विश्व आत्मा मूवी का सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं। फिर हमारी दोस्त हैं राहत और गज़ल नेहतपुर बिजनौर से, देखिए बार बार आप फरमाइश करते हैं ना, मैंने आपका सुनवा चुकी हूँ। हाय हाउ आर यू मूवी हिना एनी सॉन्ग, रजनीत मस्ताना रायबरेली से ये हमें कह रहे हैं हमारे दोस्त। एंड हाय गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप, तेरे नाम का सॉन्ग सुनवा दीजिए। ओके एंड यमुना प्रसाद दिल्ली से, सोनिया विहार से ये कह रही हैं हमें। साथ ही गुड आफ्टरनून आरती जी, फिल्म कुछ कुछ होता है का टाइटल सॉन्ग सुनने की फरमाइश की है किशन वंजानी, नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। साथ ही हमारे दोस्त हमें क्या भेज रहे हैं, ये गुड आफ्टरनून टीम, खुद्दार मूवी का सॉन्ग सुनने की फरमाइश की है। मोहम्मद रागिब रेजा, दानिश खान, तौसीफ आलम, इन सभी ने We hadn't expected that you would play today our request, but you did. So thanks a lot. Oh, that's so sweet. देखा अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं किसी के रिक्वेस्ट प्ले करती हूँ ना, तो प्लीज़ मुझे थैंक यू एक बोल दिया करो ना, क्या जाता है पता है, अच्छी अच्छी बातें बोलने से फिर काम करने का बढ़िया बढ़िया मन करता है। थैंक यू लक्ष्मी जी, आपने मुझे थैंक यू बोला और आपकी फरमाइश भी नहीं की, एंड कसम से कह रही हूँ दिल से, हमारा बिल्कुल दिल करता है कि सबकी फरमाइशें हम पूरी करें, लेकिन क्या करें पाबंदी है समय की, और अब जैसे समय हो चला है और स्टूडियो में प्रकट हो चुकी है प्रियंका वर्मा अपना सामान लेकर, अपनी खूबसूरत सा प्रोग्राम आशियाना लेकर, और बिल्कुल अब ये चाहेंगे कि मैं सीट छोड़ दूं, और बिल्कुल छोड़ेंगे अब उनके लिए। प्रियंका कैसी हैं आप?
1: बस बढ़िया आरती।
0: ओके एंड थैंक यू सो मच, शुक्रिया ओखला, ये रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता एंड ऑलमोस्ट मैंने सभी के

ले दिए हैं, एंड आई होप अगर कुछ एक आध रह गया हो तो मुझे माफ कीजिएगा। तो चलिए, जैसे कि मैंने बताया कि प्रियंका आ चुकी हैं एफएम रेनबो पर, आप सुनते रहेंगे कंटिन्यूस प्रोग्राम अपनी पसंद के, और लगाए रखिएगा दिल हमारे साथ, क्योंकि हमसे दिल लगाएंगे तो दिल से दिल का रिश्ता बना रहेगा। फिलहाल मुझे यानी आरती को दीजिए इजाजत, नमस्कार, बहुत जल्द होगी आपसे दोबारा मुलाकात ऐसी प्रोग्राम में एक और खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए।

एकला चलो रे सोलफुल थॉट वर्किंग एंड इमोशनल ट्रैक अभी आपने सुना प्रोग्राम आशियाना में। वेल ये जो ट्रैक है ना कहीं ना कहीं इनर स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करता है और ये गाना शोर मचा कर नहीं बल्कि खामोशी से अपना इम्पैक्ट छोड़ता है और ये कहीं ना कहीं जो पूरी मूवी है कहानी का उसकी इमोशनल हार्ट बीट भी बन जाता है। हेलो एंड नमस्ते इंडिया। इस खुले आसमां तले जमी के आगोश में, इस खुले आसमां तले जमी के आगोश में है एक छोटा सा जहां मेरा, मैं कहती हूं जिसको अपना आशियाना, किया इकट्ठा इसे

चुन चुन कर तिनके, है तमन्ना की हर शाख पे इसके फूल महके, और आए कभी ना इस पे खिजा, मैं कहती हूँ जिसको अपना आशियाना। आकाशवाणी रेनबो पर ये प्रोग्राम आशियाना शुरू हो चुका है, जहाँ मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। गुड आफ्टरनून।

सीरियसली ये जो गाना है ना, ये कहीं ना कहीं एक शहर की बात नहीं करता बल्कि इंसान के अंदर के तन्हा सफर को भी रिफ्लेक्ट करता है। इसमें एक अजीब सी उदासी है, एक ठहराव है, जैसे वक्त रुककर कुछ कहना चाहता हो। इंट्रोस्पेक्टिव मूड है इस गाने का। और इसी गाने पे मैंने एक शायरी लिखी, पता मन में इतना क्लिक किया ये गाना और मैंने लिख डाली, बस थोड़ा सा तुकबंदी में कमी होगी लेकिन आपको सुनाना तो बनता है दोस्तों। इस दिल में बस कर देखो तो, इस दिल में बस कर देखो, ये शहर बड़ा पुराना है, हर सांस में छुपी यादों का एक खामोश अफसाना है, यहाँ वक्त भी धीरे से तन्हा राहों पे चलता है और हर धड़कन को किसी अधूरे एहसास का ठिकाना है। तो चलिए अपने प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। खामोशियों में भी घर की कहानियाँ चलती हैं, जरा गौर फरमाइएगा। खामोशियों में भी घर की तन्हाइयाँ चलती हैं, पर बिन बोले फीलिंग्स थोड़ी सी अधूरी रहती है। बोल दो ना कभी कि तुम इम्पोर्टेंट हो दिल से, वरना अपनापन होते हुए भी दिलों में कश्मकश रह जाती है। दोस्तों घर सिर्फ एक जगह नहीं होता बल्कि इमोशंस का एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ रिश्ता बिना कहे भी समझा जाता है, पर शायद इसीलिए उन्हें एक्सप्रेस करना भी हम कभी ज़रूरी नहीं समझते हैं। रोज़ की भाग दौड़ में हम ये मान लेते हैं कि अपने लोग बिना कहे समझ जाएंगे, पर शायद इसी कम्फर्ट में हम कभी कभी अपने ही घर वालों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। उनके प्रेजेंस इतना नेचुरल हो जाता है, उनकी वैल्यू महसूस करना धीरे धीरे कम हो जाती है। पर सच तो ये है कि हर दिल को कभी ना कभी लफ्जों की जरूरत होती है, यानी हर रिश्ता चाहे कितना भी अपना हो लफ्जों की गर्माहट तो मांगता है। खामोशियां घर में अक्सर सुकून का एहसास देती हैं, लेकिन कभी कभी ये खामोशियां अनसेड बातों की बोझ भी बन जाती है। छोटी सी तारीफ, एक सिंपल सा थैंक यू और तुम मैटर करते हो, ये सब कह देना रिश्तों को और गहरा बना देता है। जब ये बातें रह जाती हैं तो प्यार होते हुए भी उसकी आवाज़ कम पड़ जाती है। साथ ही घर के रिश्ते में अनसेड एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम चाहते हैं कि कोई बिना कहे हमें समझे, हमारी फीलिंग्स का केयर करे, लेकिन जब ये एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती ना, तो बिना किसी शोर के एक इमोशनल गैप क्रिएट हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने घर वालों को अपने फीलिंग्स, अपना अफेक्शन टाइमली एक्सप्रेस करें। तो दोस्तों घर की असली कहानियां शोर में नहीं बल्कि इन्हीं खामोश लम्हों में लिखी जाती है। शायद ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हम अपनी खामोशियों को थोड़ा सा अल्फाज दे सकें ताकि जो महसूस होता है वो कभी अधूरा ना रह जाए। फिलहाल ये बहुत ही सोलफुल ट्रैक है रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में। क्या मखमली आवाज़ है।

0: वेल दोस्तों, इसी के साथ हमें मैसेज आए हैं। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं, गुड आफ्टरनून प्रियंका वर्मा। मैडम जी, कार्यक्रम आशियाना इस खुले आसमान में जमी के आगोश में बहुत ही बढ़िया पंक्तियाँ हैं, और गीत भी आपने बताया कि कौन कौन से गीत हैं, आपको बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच पंकज जी। और इसी के साथ हमें रवि जोशी मेरठ से लिखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर शुभकामनाएं। उनका कहना है कि प्रेम कभी कब्जा नहीं करता बल्कि स्वतंत्र देता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है। और ज़िंदगी का आशियाना ही तो है, प्यार से गुजर हो, यादों को समेट को, हर पल को संवार लो। एक दोस्त रवि जोशी जी मेरठ, बिल्कुल आपकी जो शब्द है उसने सब कुछ कहा है। फिलहाल अभी ये एड ब्रेक है, वो आपसे कुछ कहेगा, तो चलिए स्टे ट्यून्ड।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।

जी हाँ दोस्तों, ये जो ट्रैक है ना, इंस्पायरिंग पेट्रियोटिक ट्रैक जो देशभक्ति के जज्बे को दिल से महसूस करता है ना, एक सेंस ऑफ प्राइड और रिस्पॉन्सिबिलिटी को जगाता है। नेशन कम्स फर्स्ट का एसेंस पूरे गाने में रिफ्लेक्ट होता है। मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना। तो चलिए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। घर में सब कुछ था, बस लव्स कहीं खो गए। हम एहसास समझते रहे पर जज्बात अनकहे रह गए। दो मीठे बोल मिलते तो दिल यूं ही खिल जाता, वरना रिश्ते यूं खामोशियों की सिलवटों में सिमट कर ना रहते। घर में सब कुछ ठीक लगता है दोस्तों, रूटीन सेट है, जिम्मेदारियां बटी हुई है, हर कोई अपना रोल निभा रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं एक हल्की सी खाली जगह महसूस होती है। ये खाली जगह अक्सर किसी चीज़ की कमी से नहीं बल्कि एप्रिसिएशन के ना कहने से, अप्रिशिएट ना करने से बनती है। घर में प्यार होता है पर उस प्यार को लफ्ज़ों में बयां करना हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम अज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाला तो समझ ही रहा होगा। माँ का ख्याल रखना, पापा की मेहनत, बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ, सब कुछ घर का नेचुरल हिस्सा बन जाता है। और जब कोई चीज़ नॉर्मल बन जाती है तो उसकी तारीफ करना हम ज़रूरी नहीं समझते, है ना। हम सोचते हैं कि ये तो उनका फ़र्ज है, उन्हें पता है कि हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन सच ये है कि अनसेड अप्रिसिएशन अप्रिसिएशन नहीं होती है। दिल को वो जो बात होती है वो तभी छूती जब आप सुनते हैं। जी हाँ, घर में घर के जो रिश्ते होते हैं ना, उसमें सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता क्या होती है? अपनापन। लेकिन वही अपनापन कभी कभी एक्सप्रेशन को कम कर देता है। हम सब फील तो करते हैं, मतलब उन्हें अप्रिशिएट तो करते हैं, पर कह नहीं पाते क्योंकि हम अज्यूम कर लेते हैं कि उन्हें तो पता है। ऐसा होता है ना दोस्तों। बस सच ये कि जो कहा नहीं जाता वो अक्सर महसूस भी कम होने लगता है। माँ शायद एक सिंपल आज का खाना बहुत अच्छा लगा है सुनने का इंतज़ार करती है। पापा को भी कभी आपकी वजह से सब पॉसिबल है ना सुनना अच्छा लगता है। और घर के हर मेंबर को यह एहसास चाहिए कि उनकी कोशिशें नज़र आ रही हैं। पर कितनी अजीब बात है ना, हम अपने ऑफिस में या बाहर गुड जॉब बोल देते हैं, फ्रेंड्स को वाओ यू डिड ग्रेट, तुसी कमाल हो कह देते हैं, लेकिन घर पर ये लव्स रोक लेते हैं। शायद इसलिए क्योंकि घर को हम परमानेंट समझते हैं और ये समझते हैं कि ये तो अपने हैं और ये ऐसे ही रहेगा, ये कहाँ जाएगा। पर इमोशंस को भी कभी कभी रिकग्निशन की ज़रूरत होती है, वरना वो धीरे धीरे खामोश हो जाते हैं। वैसे दोस्तों, साइंटिफिक लेवल पर बात की जाए ना, तो जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है, जैसे थैंक यू बोल दे या यू डिड वेल, आपने बहुत अच्छा किया, तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन जो है वो फील गुड केमिकल कहा जाता है, जो मोटिवेशन, हैप्पीनेस और रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है। लेकिन जब एप्रिसिएशन एक्सप्रेस नहीं होता ना, तो ब्रेन को वही रिवॉर्ड सिंगल जो सिग्नल है वो नहीं मिलता और धीरे धीरे मोटिवेशन और इमोशनल कनेक्शन कम होने लगता है। एप्रिसिएशन की कमी से कोई बड़ा झगड़ा नहीं होता, पर एक अनसेट डिस्टेंस जरूर बन जाता है। लोग अपना बेस्ट देते रहते हैं लेकिन अंदर अंदर एक सवाल करते हैं कि क्या मेरी कोशिशें नज़र नहीं आ रही हैं। जब हम किसी के जवाब का इंतज़ार करते हैं ना, यकीन मानिए वो जो एक तड़प होती है वो लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल है। जब किसी का इसका जवाब लफ्ज़ों में नहीं मिलता तो जज्बात धीरे धीरे थकने लगते हैं। इसका सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड तो बिल्कुल नहीं है, आप एक्सप्रेस कीजिए, एज्यूम थोड़ा कम कीजिए। जी हाँ, एक्सप्रेस मोर, एज्यूम लेस, सिंपल। रोज़ के रूटीन में छोटी छोटी लाइन्स ऐड कर लीजिए, थैंक यू, तुम्हारे बिना मुश्किल होता, आज तुमने बहुत अच्छा किया, तुम मेरे साथ थे ना तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी। ये लव छोटे ज़रूर हैं लेकिन इनका असर गहरा होता है। ये सिर्फ अप्रिसिएशन नहीं है बल्कि कनेक्शन को ज़िंदा रखने का तरीका है। बस यही कहूँगी, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करने नहीं, रिकग्निशन का वार्म स्पेस होना चाहिए, क्योंकि जब एप्रिसिएशन ओपनली फ्लो करता है ना, तो घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक सुकून भरा आशियाना बन जाता है, जहाँ खामोशियों में नहीं लफ्ज़ों में भी मोहब्बत नज़र आती है। फिलहाल अभी जो नज़र आ रहा है ना, वो बहुत ही ये जो गाना है ना, ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगी इन्फेक्शियस एनर्जी क्रिएट करेगा। ज़रा सुनिए इस गाने को, फिर बताइएगा ज़रा मुझे।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

धीरे धीरे वेल दोस्तों, ये गाना शोर भरी जिंदगी में सुकून सा महसूस कराता है ना। इसकी मेलोडी इतनी सॉफ्ट है, इतनी सोलफुल है कि पहली बार जब ये गाने को सुना था ना तो इससे प्यार हो गया था। आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना, मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करें घर वाले खामोशियों में धड़कती कहानियाँ। जी हाँ, आज इस प्रोग्राम का टाइटल है अनसेट एक्सपेक्टेशंस का लोड दिल छुपा चुपके से उठा लेता है। अनसेट एक्सपेक्टेशंस का लोड दिल चुपके से उठा लेता है, बिना किसी झगड़े के भी रिश्ता हल्का सा टूट जाता है। पर जब फीलिंग्स को वर्ड्स मिल जाएं और बात खुल के हो जाए तो वही रिश्ता फिर से हील होके और स्ट्रांग बन जाता है। घर आशियाना एक ऐसी जगह जहाँ लफ्ज़ों की ज़रूरत कम पड़ती है और एहसास खुद ब खुद समझ लिए जाते हैं। पर इसी घर के अंदर कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो कभी बोली नहीं जाती हैं, सिर्फ महसूस की जाती हैं। ये होती हैं अनसेट एक्सपेक्टेशंस, वो उम्मीदें जो किसी ने क्लियरली एक्सप्रेस तो नहीं की है लेकिन दिल के किसी कोने में बस कर रहती हैं। जी हाँ, माँ को शायद कभी ये कहना नहीं पड़ता कि थोड़ा वक्त मेरे साथ भी बिता लो, पर जब आप बिज़ी रहते हो तो उनकी आँखों में हल्का सा इंतज़ार ज़रूर दिखता है। पापा शायद कभी डायरेक्टली अप्रिशिएट ना करें पर उन्हें उम्मीद होती है कि आपके उनके सेक्रीफाइसेस को समझोगे बिना उनके बताए। भाई बहन को भी कभी वो कहते नहीं हैं कि तुम मेरी साइड लो, लेकिन उन्हें ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जी हाँ, उनके अंदर छुपी होती है कि मुश्किल वक्त में आप उनके साथ होंगे। ये अनसेट एक्सपेक्टेशंस इतनी सटल होती हैं कि अक्सर हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है जब किसी ने कहा ही नहीं तो शायद ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ, लेकिन सच ये है कि घर के रिश्तों में हर चीज़ बोलकर नहीं होती है, कुछ बातें सिर्फ फील करके होती है। और जब ये एक्सपेक्टेशंस बार बार इग्नोर होती हैं तो धीरे धीरे खामोशी सी घर कर लेती है जो बाद में दूरियों में बदल जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी, अपनी सोच और अपनी परेशानियों में इतना उलझा होता है कि वो हर खामोशी का मतलब समझ ही नहीं पाता। और फिर धीरे धीरे एक हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट, एक अनसेट हर्ट रिश्तों के बीच जगह बना लेता है। साइंटिफिक लेवल पर देखें तो जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं तो ब्रेन का एंटीरियर सिंगुलेट कोर्टेक्स एक्टिवेट है। ये वही एरिया है दोस्तों जो इमोशनल पेन को प्रोसेस करता है ब्रेन में। जी हाँ, एंटीरियर सिंगुलेट कोर्टेक्स। और इसलिए दोस्तों एक छोटी सी अनसेट बात भी हमें रियल हर्ट जैसा फील कराती है। अगर ये एक्सपेक्टेशंस बार बार अधूरी रह जाएं तो बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने लगते हैं। तो धीरे धीरे रिश्तों में डिस्टेंस और एक अजीब सा इरिटेशन आ जाता है। रिसर्च ये भी कहती है कि क्लियर कम्युनिकेशन और इमोशनल वैलिडेशन इस साइकिल को तोड़ देती है, क्योंकि जब हम अपनी बात कहते हैं तो सामने वाले को समझ आती है तो ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो ट्रस्ट और बॉन्डिंग को स्ट्रांग बनाता है। पता है, कभी कभी प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशंस में नहीं होती दोस्तों, बल्कि कम्युनिकेशन में होती है। हम समझाने की जगह एज्यूम कर लेते हैं हर अरे और कहने की जगह चुप हो जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है, दो लोग एक ही घर में रहकर अलग अलग कहानियां जी रहे होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, हर बार वर्ड्स का वेट ना करें,

ये मैं समझती हूँ तुम्हारी तकलीफ़ों को, ये सिर्फ एक सिंपल सा तुम ठीक हो ये बहुत कुछ बदल देता है दोस्तों, यकीन मानिए करके देखिए। घर सिर्फ एक जगह नहीं होती, ये उन कहानियों का संघर्ष होता है जो हम रोज़ लिखते हैं, कभी लफ्ज़ों से कभी खामोशियों से, पर ज़रूरत है उन खामोशियों को सुनने की, और क्योंकि अक्सर सबसे गहरी बातें वहीं छुपी होती है। फिलहाल अभी ये जो गाना है ये काफ़ी इंटेंस ट्रैक है, जी हाँ चलिए इस गाने को सुनते हैं, काफ़ी इंटेंस ट्रैक है। मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ।

दोस्तों, जिंदगी की सबसे गहरी और सच्ची कहानियां अक्सर शोर में नहीं बल्कि खामोशियों में लिखी जाती है, और ये खामोशियां सबसे ज्यादा कहीं बार हमें अपने घर में ही सुनाई देती है। घर जहाँ सब कुछ अपना होता है, जहाँ रिश्तों को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर शायद वही जगह है ये जहाँ हम सबसे ज्यादा अपनों को ही फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। हम रोज नए लोगों से मिलते हैं, उनके लिए अपना बेस्ट वर्जन लेकर आते हैं, पोलाइट, पेशेंट, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जैसे ही बात घर वालों की आती है तो हम अपने रॉ अनफिल्टर्ड वर्जन में आ जाते हैं, अपनी रियल पर्सनालिटी के साथ जीते हैं उनके साथ। ये नेचुरल है, लेकिन कब ये नेचुरल होना केयरलेसनेस में बदल जाता है हमें खुद पता नहीं चलता। बाद में बात करेंगे, वो तो समझ जाएंगे, उनका क्या है, उनको तो सब पता है, उनको क्या बताएंगे, बता देंगे कभी ठीक लगेगा तो, कल बात करेंगे। ये जो छोटी छोटी सोच होती है ना, धीरे धीरे एक इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर देती है। हम समझने लगते हैं कि प्यार को बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर सच ये है कि हर रिश्ता, चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक्सप्रेशन मांगता है। खामोशियों में भी घर वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। माँ का चुप रहना, पापा का ज़्यादा ना बोलना, या किसी अपने का सिर्फ ठीक हूँ कह देना, ये सब उन कहानियों का हिस्सा है जो शायद कभी बोली नहीं जाती हैं। और हम बिजी रहते हैं अपनी ही दुनिया में, उन खामोश सिग्नल्स को इग्नोर करते हुए। शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम प्यार नहीं करते, प्रॉब्लम ये कि हम दिखाना छोड़ देते हैं, एक्सप्रेस करना छोड़ देते हैं। पर हर रिश्ता, चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, कभी ना कभी एक छोटी सी तसल्ली जरूर जाता है, एक लफ्ज़, एक नज़र, एक एहसास। और जब ये सब मिलता है ना, तो घर की वही खामोशियाँ कहानियाँ बन जाती हैं, अधूरी सी, अनसुनी और थोड़ी सी दर्द भरी। जब ये सब नहीं मिलता, याद रखिए दोस्तों, एक दिन आता है जब हम खुद पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, काश थोड़ा और वक्त दिया होता, काश उनकी बातें सुन ली होती, काश एक बार और पूछ लिया होता कि आप ठीक हो। पर हर काश के साथ वक्त थोड़ा और दूर चला जाता है, इसलिए शायद अब भी देर नहीं हुई है। आज भी हम उन खामोशियों को तोड़ सकते हैं, आज भी हम सिंपल सा थैंक यू कह सकते हैं, एक झप्पी मार सकते हैं, हक दे सकते हैं, या बस उनके साथ बैठकर उन्हें ये फील करा सकते हैं कि वो सिर्फ घर वाले नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा हैं। क्योंकि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, ये वो उन रिश्तों से बनता है जहाँ प्यार बोला भी जाता है और महसूस भी करवाया जाता है। घर सिर्फ एक स्पेस नहीं, एक इमोशनल इको सिस्टम है जहाँ हर छोटी बात पर असर होता है, जहाँ हर छोटी बात का असर होता है। और अगर हमने सिर्फ समझ लिया पर महसूस करवाना भूल गए, तो फिर ये खामोशियां सच में कहानियां बन जाएंगी। फिलहाल ये बहुत ही ये एक रॉ गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुई धागा एक बहुत ही मेटाफर में इसे यूज किया गया है। जी हाँ, तो चलिए इस गाने को यूज करते हैं दिव्या कुमार की आवाज़।

चलिए आ गई हूँ मैं प्रियंका आपसे बातें करने के लिए। सेंटेंस ट्रैक के बाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। खामोशियों ने भी अक्सर रिश्तों को तोड़ दिया, खामोशियों ने भी अक्सर रिश्तों को तोड़ दिया। जो कहना था दिल से वो लफ्ज़ों ने रोक लिया। वो समझ तो गए थे बिना कहे सब कुछ, वो समझ तो गए थे बिना कहे सब कुछ, पर हमने महसूस करवाना ही छोड़ दिया। मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ।

इस मीनिंगफुल ट्रैक के बाद चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि समय जो है वो टिक टिक टिक खत्म होने वाला, मेरा वक्त जो है वो बस अब 3 बजे तक है। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। दिल में जो बात थी वो लफ्ज़ों तक ना आ सकी, दिल में जो बात थी वो लफ्ज़ों तक ना आ सकी, खामोशियों ने फिर अपनी कहानी सुना दी, जो कह देते दिल की बात उस वक्त थी तो आज काश के लूप में हम उलझे ना होते। घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ हम सबसे ज़्यादा अपने होते हैं, और शायद इसलिए यही हम सबसे ज़्यादा अज्यूम कर लेते हैं, बिना कहे ही सब समझ आ जाएगा। पर सच ये है कि जो बातें हम कह देते हैं उनकी अहमियत होती है, और जो रह जाती हैं वो कभी कभी बोझ बन जाती हैं। रोज़ की भाग दौड़ में हम छोटी छोटी चीज़ें टाल देते हैं, बाद में बोलेंगे, अभी टाइम नहीं है, वो समझ जाएंगे, क्या मैं बताऊँगी या बताऊँगा तो मेरी फैमिली समझेगी, क्या जो मैं सोच रही हूँ वो बताऊँ या ना बताऊँ। लेकिन ये बाद में कभी नहीं आता, और फिर एक दिन दिल में सिर्फ ये एहसास रह जाता कि काश कह दिया होता। माँ पापा भाई बहन हस्बैंड वाइफ सब रिश्तों को एहसास करवाना अपने लफ्ज़ों के जरिए ज़रूरी होता है, ये इमोशनल सपोर्ट होता है, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं होते, ये रिश्तों की सांसें होते हैं। जी हाँ, न्यूरो साइंस ये भी कहते हैं कि जब हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं तो ब्रेन ऑक्सीटोसिन और डोपामिन रिलीज करता है, ये हार्मोन्स बॉन्डिंग और इमोशनल रिलीफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि जो हम कह देते हैं वो सिर्फ रिश्तों को नहीं हमारे माइंड को भी हील करती है। लेकिन घर के रिश्तों में एक साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है, अजम्पशन बायस, हम मान लेते हैं कि वो समझ जाएंगे, और इसी अजम्पशन की वजह से कम्युनिकेशन धीरे धीरे कम हो जाती है। रिजल्ट इमोशनल डिस्टेंस, जो दिखता नहीं पर फील होता है। टाइम के साथ ये सांस ये अनसेट बातें कॉग्निटिव लोड बन जाती है, यानी दिमाग पर एक इनविजिबल प्रेशर, और जब ये लोड ज़्यादा बढ़ जाता है तो इरिटेशन होती है, थकान होती है, इमोशनल डिस्कनेक्ट फील होता है। इसलिए साइंटिफिकली भी ज़रूरी है कि हम अपने घर वालों से बात करें। खामोशियाँ कभी कभी सुकून देती हैं, लेकिन जब वही खामोशियाँ बातों की जगह लेती है ना दोस्तों, तो रिश्तों में एक अनकही दूरी आ जाती है, जिसे ना कोई देख पाता है और ना ही कोई समझ पाता है। इसलिए शायद ज़िंदगी का सबसे सिंपल पर सबसे गहरा रूल ये है कि जो दिल में है उसे कहने से मत रुकिए, अपनों को ये महसूस करवाइए कि वो सिर्फ साथ नहीं बल्कि समझे भी जा रहे हैं, क्योंकि वक्त निकल जाता है, पर कुछ बातें अगर वक्त पर ना कही जाएं तो वक्त सिर्फ यादें नहीं अधूरी कहानी बन जाता है।

0: बिल्कुल है, अभी अपने चेहरे पे ना स्माइल ले आइए, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों के चेहरे पे एक स्माइल है, प्लीज ले आइए स्माइल।
1: थोड़ा थोड़ा प्यार।
0: और इसी के साथ हमें मैसेजेस आए हैं, प्रियंका जी जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर को ये राष्ट्रीय प्रेम का गीत सुनवाकर आपने उनके जन्म जयंती पर एक सच्ची भावना व्यक्त की है। आपने जो अपनी लिखी लाइन सुनाई है वो कमाल की कविता है। ऐसे में हमेशा ही कहता हूँ कि आपके पोएटिक टैलेंट के बारे में हमेशा ही मैं बात करता हूँ। रवि जोशी मेरठ से लिखते हैं हमें। वेल दोस्तों, मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी आपसे। शब्दों से जिसने दुनिया को एहसास दिया, शब्दों को जिन्होंने दुनिया को नया एहसास दिया, गीतों में प्रेम और मानवता का विश्वास दिया, रविंद्रनाथ टैगोर की कलम आज की रोशनी बनती है, हर पीढ़ी को सोचने का एक नया आकाश दिया है उन्होंने। और इसी के साथ मेरा जाने का बिल्कुल टाइम आ गया है, और क्योंकि इस समय हमारे सामने है हमारी नेक्स्ट प्रेजेंटर दीपांशी है, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ और भी आएगा। जी हाँ, आपके लिए रेडियो डॉक्टर आएगा, तो देखिएगा उनमें कौन है आपके साथ। बस इसी के साथ मैं जाते जाते कहती हूँ कि अपने घर की फ्रिक्वेंसी को फिर से ट्यून इन करें, थोड़ा सा बोलकर, थोड़ा सा समझकर, और फिर महसूस करें अपने आशियाने का सुकून और अपने पन का रिदम। स्टे ट्यून टू योर होम्स फ्रिक्वेंसी गाइस, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।

0: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के आज एक नए अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल, स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी श्रोताओं का जो रेडियो डॉक्टर से जुड़ते हैं, अपनी समस्याएं यहां हमारे रेडियो डॉक्टर के सामने रखते हैं और पूरी तरह से संतुष्ट होकर आप हमें फीडबैक देते हैं कि आपको ये कार्यक्रम कितना पसंद आता है। तो आज एक नया अंक है, एक ऐसी समस्या है जिससे हम थोड़ा बहुत डरते हैं, स्पाइन की प्रॉब्लम है। और स्पाइन की प्रॉब्लम से या मेरा ये कहना है कि किसी भी समस्या से नहीं डरना है, क्योंकि रेडियो डॉक्टर आपके साथ है और जब तक रेडियो डॉक्टर आपके साथ है आपका एक स्पेशलिस्ट यहां पर डेली रहेगा, ओपीडी खुलेगी और आपकी समस्याएं यहां सुनी जाएंगी और सिर्फ सुनी नहीं जाएंगी, उसका एक जवाब, सही जवाब आप तक पहुंचेगा। तो आज भी हम यही चाहते हैं कि आपका साथ हमें मिले इस कार्यक्रम में, जैसे आप रोज हमारी हौसला अफजाई करते हैं आज भी करें, क्योंकि आज के हमारे स्पेशलिस्ट बहुत खास हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर HS छाबड़ा, आप एक बहुत ही सीनियर जाने माने स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं। आप डायरेक्टर हैं स्पाइन एंड रिहैबिलिटेशन में श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में, साथ ही साथ आप प्रेसिडेंट हैं स्पाइनल कॉर्ड सोसाइटी में, चेयरमैन हैं स्पाइन वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन में। तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर छाबड़ा, आप स्टूडियो में आए हैं समय निकालकर, नमस्कार।
1: धन्यवाद शालिनी जी, नमस्कार और सारे श्रोताओं को प्यार भरी नमस्कार।
0: बहुत समय बाद डॉक्टर साहब यहाँ आप आए हैं, काफी बार मैं डॉक्टर साहब को इनवाइट कर चुकी थी लेकिन हमें पता है सर आप सर्विस पर हैं और पूरी तरह से आप डिवोटेड हैं अपने पेशेंट्स के लिए, और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हमारे उन तमाम श्रोताओं को जो इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं उनको भी थोड़ा सा लाभ पहुंच पाए। तो आज आप आए हैं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम चाहेंगे कि एडवांस स्पाइन केयर एंड रिहैबिलिटेशन पर आप जानकारी दें हमारे श्रोताओं को, और चैनल भी वही है आपका पसंदीदा FM रेनबो, और ऐप भी वही है प्रसार भारती का ऐप न्यूज ऑन AIR। तो आप भी वही, मैं भी वही, बस हमारा रेडियो डॉक्टर जो है वो आज खास है। तो डॉक्टर साहब, ये जो स्पाइन है हमारी, पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह की डिफॉर्मिटीज या प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें या आ सकती हैं?
1: पहले तो बता दूं कि स्पाइन एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए, ना खाली शरीर का एक ढांचा बनाती है बट इसमें स्पाइनल कॉर्ड एक सुरक्षित रूप में सुरंग में नीचे आती है ब्रेन से, और इसी से जैसे हमारे हिलाने की शक्ति, एहसास की शक्ति, मलमूत्र नियंत्रण और कई ऑटोनॉमिक फंक्शंस इससे हमारे होते हैं, और इसको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, चाहे स्पाइन की कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बट ये भी इम्पोर्टेंट है ये कि जानना कि इनसे आसानी से बचा जा सकता है। हाँ, कुछ स्पाइन की प्रॉब्लम्स के काफी दुष्परिणाम हो सकते हैं पर बचना बहुत आसान है, और बाय चांस अगर स्पाइन की प्रॉब्लम हो जाए तो उसके अच्छे इलाज से एक साधारण जिंदगी में वापस जरूर आया जा सकता है। तो अब जान ले कारण क्या होते हैं, जो अगर हम देखें तो स्पाइन में हर कुछ है, स्पाइन में हड्डी है, डिस्क है, लिगामेंट्स हैं, नर्व्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, और हर तरह से इस पे असर हो सकता है। तो सबसे आम कारण स्पाइन की प्रॉब्लम्स के मैकेनिकल कारण होते हैं, जो इंसान पहले चार पैरों पे चलता था, जब दो पैरों पे खड़ा हुआ तो मजबूत मांसपेशियों के बलबूते पे। तो अगर हमारी जिंदगी आसीन जैसे हो गई है आजकल, अगर हम आसीन रखें और अगर हम अपने बैठने, लेटने, खड़े होने, काम करने के पोस्चर्स ठीक ना रखें, अपनी जीवन शैली अच्छी ना रखें, तो स्पाइन पे सबसे पहले असर होता है क्योंकि मांसपेशियां कमजोर हो जाते हैं। और मैकेनिकल प्रॉब्लम सबसे आम प्रॉब्लम्स हैं। बता दूं शालिनी जी की स्पाइन की प्रॉब्लम्स WHO के मुताबिक सबसे आम कारण है डिसेबिलिटी का विश्व भर में। जुकाम के बाद स्पाइन की प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा। तो ये इतनी आम बीमारी है, और इसको बचाने के लिए अगर हम अच्छी जीवन शैली रखें जिसमें कई जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज हो, प्रॉपर पोस्चर हो, तो इनसे बचा जा सकता है
0: जी।
1: तो ये मैकेनिकल प्रॉब्लम स्ट्रेन हो सकता है बट कई बार डिस्क की डिजनरेशन हो सकती है, और कई बार इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, कभी कभी हमारी

0: इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे गठिया होता है ना छोटे जोड़ों का,
1: जी, जी.
0: वैसे रीढ़ की हड्डी में भी एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है कंडीशन में. मैकेनिकल प्रॉब्लम्स में मेहनत से दर्द बढ़ेगी, आराम से ठीक होंगे, बट अगर आराम करने के बाद दिक्कत बढ़ती है तो हमारा बिल्कुल एक तरह से ये रेड फ्लैग है, हमारा सीधा सस्पिशन जाना चाहिए कि कहीं इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम तो नहीं है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम तो नहीं है. तो वो हमें रूल आउट करना होता है. हड्डियां कमजोर भी हो सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, विटामिन डी की कमी से भी हड्डी में फर्क पड़ सकता है, ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं. तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण स्पाइन पे असर हो सकता है.
1: जी, बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारी बीमारियां भी हैं. और हड्डी, जैसा आपने कहा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है और स्पाइन उसका बिल्कुल बैकबोन है हमारी. तो बहुत सारी समस्याएं इससे जुड़ी हो सकती हैं, कॉजेज भी आपने बताए बहुत सारे हो सकते हैं. एक हमारे इस बीच में कॉलर जुड़ गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं पहले. हेलो.
2: हेलो
1: जी,
2: गुड आफ्टरनून मैम.
1: जी गुड आफ्टरनून, अपना नाम बताइए.
2: मैम मेरा नाम कुंवर सिंह है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ.
1: जी बताइए, क्या पूछना है डॉक्टर साहब से?
2: मैम दो तीन क्वेश्चन है, जैसे आज स्पाइन का इशू है, स्पाइनल कॉर्ड का है, तो क्या ये स्लिप डिस्क और सियाटिका का भी प्रॉब्लम इसी से रिलेट होता है स्पाइन से? दूसरा मैम, ये जो क्या जो हमारी स्पाइन पर हमारे वेट का भी कुछ इफेक्ट पड़ता है, अगर वेट कम है या ज्यादा है?
1: जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं और डॉक्टर साहब बताएं इनकी जो समस्या.
0: तो हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा. सियाटिका, जब भी सियाटिक नर्व के जहाँ फैलती है उसमें दर्द हो तो हम उसे सियाटिका कहते हैं. और एक आम कारण है डिस्क प्रोलैप्स, जो कि अगर रीढ़ की हड्डी में नस पे दबाव हो तो उसके कारण सियाटिका होती है. जैसे हमने बताया, इससे भी बचा जा सकता है बट इसका उपचार भी है. अक्सर दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से एक मलम से आराम आ जाता है. ना आराम आए तो इंजेक्शन भी लगते हैं और 100 में 5 लोगों में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है जो दबाव है उसको हटाने के लिए, जो डिस्क प्रोलैप्स से होता है. दूसरा आपका
1: वेट का
0: देखिए, कई चीजें हैं जो प्रीडिस्पोज करती हैं कमर के दर्द को. हमने बात की एक आसीन जिंदगी, बट हमने बात की गलत पोस्चर. बट अगर वेट भी ज्यादा हो तो उससे क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शरीर का आगे को शिफ्ट हो जाता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे शिफ्ट होने से रीढ़ की हड्डी पे ज्यादा जोर आने लगता है और इससे कमर की कई प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं. तो ठीक वेट रखना उतना ही जरूरी है जितना कि अच्छी जीवन शैली रखना. इसी से रिलेटेड मिलता जुलता, जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो मांसपेशी ना खाली फूल जाते हैं बट वो आगे की तरफ पेट बढ़ जाता है, उसी तरह रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है. बिल्कुल, तो वो रीढ़ की हड्डी पे ज्यादा तनाव आता है. उतना ही जरूरी होता है कि एक बार जब डिलीवरी हो जाती है, प्रेगनेंसी खत्म होती है, तो इन मांसपेशियों को दोबारा टोन अप करना एक्सरसाइजेस से. और आमतौर पे भारतवर्ष में ये नहीं किया जाता तो ये एक जड़ बन जाती है कि आगे चल के कमर की प्रॉब्लम्स का.
1: जी बिल्कुल, बहुत जरूरी बात है ये. महिलाएं हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं तो वो भी ध्यान रखें इस बात को. और इसका मतलब जो है डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज बेसिकली बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको बोन्स को हेल्दी रखना है तो.
0: बिल्कुल, बोन्स को सपोर्ट करने वाले मसल्स को और बोन्स को हेल्दी रखना है तो कहते हैं जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज, जैसे टहलने की आदत, ट्रेडमिल, स्पोर्ट्स, एरोबिक, स्विमिंग, डांस, जॉग, रन, इनसे मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं और बोन्स भी स्ट्रांग होती हैं. तो इस पे उनके स्ट्रांग होने से रीढ़ की हड्डी पे कम फोर्स जाता है और उससे डिजनरेशन कम होती है.
1: जी डॉक्टर साहब, एक गीत है जिसका अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत पॉजिटिव उसमें एक संदेश है, तो हम चाहेंगे पहले इस गीत को हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा दें, क्योंकि कुछ कुछ संदेश जो आप दे रहे थे हाँ मुझे वो ऐसे ही कुछ है. और स्पाइन के जो परेशानियों से जो जूझते हैं पेशेंट्स, उनको ये गीत काफी मोटिवेट करता है ना.
0: बिल्कुल,
1: तो पहले सुन लेते हैं एक गीत.

0: जी हाँ, कर हर मैदान फतेह, और फतेह तो हमें मिलेगी ही जब हम मैदान में उतरेंगे और सही से खेलेंगे और सही तरह से अपना जो डायग्नोसिस है वो कराएंगे कि डॉक्टर साहब।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और ये गीत आपने बिल्कुल सही चलाया, बिल्कुल उपयुक्त है इसके लिए, क्योंकि उम्मीद, संघर्ष और आत्मविश्वास के साथ ही हम स्पाइन की प्रॉब्लम से भी निकल सकते हैं। स्पाइन की प्रॉब्लम जितनी भी जटिल हो, अगर हम प्रेरणा
0: हौसला
1: लेके
0: जी,
1: आगे चलें, हौसला रखें, तो इससे जरूर हम कामयाब होंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब। जब ये गीत सुन रही थी तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया जो मैं चाह रही थी आपसे पूछूं। वैसे मेरे एक कॉलर वेट कर रहे हैं कि बहुत जब हम स्पाइन की बात करते हैं थोड़ा डर भी जाते हैं, क्योंकि इससे बहुत हमारे शरीर के सारे भाग जुड़े हुए हैं और हमारा मोशन, हमारी मूवमेंट, सब कुछ इससे कंट्रोल होती है। तो क्या ऐसा भी होता है, बहुत केसेस डिफिकल्ट भी आ जाते हैं क्या इसमें?
1: हाँ, मतलब पूरा स्पेक्ट्रम होता है जी। मतलब दर्द हल्का भी हो सकता, बट अगर स्पाइन की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़े और अगर उससे जो स्पाइनल कॉर्ड है जो पीछे रीढ़ की हड्डी में सुरक्षित आ रही है, या उससे जो नसें निकल रही हैं उस पे असर हो, तो इसके काफी दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। मतलब इतना कि इंसान जहां पे रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है उससे नीचे पूरा पैरालाइज हो सकता है। हिलाने का ऐसा हिलाने की शक्ति, एहसास की शक्ति, मलमूत्र नियंत्रण सारा खत्म हो सकता है। और अगर ऊपर की चोट हो जैसे गर्दन में, तो सांस भी रुक सकता है। तो ये इसके काफी दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो पर हाँ, सही उपचार से इनमें से उभरा भी जा
0: जी,
1: सकता है।
0: और इसीलिए डॉक्टर साहब यहाँ हैं कि अगर कोई ऐसा आप में से जो हमारे श्रोता हैं इस तरह की किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो बिल्कुल निराश नहीं हुई, अगर आप सही जगह पर सही इलाज लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। हमारे कॉलर से बात करते हैं। हेलो
2: हेलो।
0: जी जी नमस्कार
2: हाँ, राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ।
0: जी राजेंद्र जी, बताइए क्या पूछना है।
2: 48 वर्ष मेरी उम्र है और 70-75 kg के आसपास जो है मेरा वजन है, और 48 वर्ष मेरी उम्र है, ओ पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है। तो पहले तो शालिनी मैम को, शालिनी सही नमस्कार,
0: जी
2: और
0: नमस्कार।
2: डॉक्टर साहब को भी तहे दिल से नमस्कार और आभार।
1: नमस्कार जी।
2: डॉक्टर साहब, मैं 2005-06 से ना इस प्रॉब्लम से जो है वो जूझ रहा हूँ। क्या है कि मेरे को हिप्स ज्वाइंट्स हैं, इनमें जो है वो पेन है और स्टिफनेस रहती है, और सर्दियों में बीमारी बढ़ जाती है। अगर मैं एक्सरसाइज करूं तो इससे रिलीफ मिलता है, और इन दिनों में जो है विटामिन डी दवा होते हैं पेन रिलीफ की, और लोशन ऑइंटमेंट और ये टैबलेट ये भी खा रहा हूँ। तो इससे होता है कि मुझे टेम्पररी आराम तो मिल जाता है, परमानेंट आराम जो है नहीं मिल पा रहा। अगर मैं आगे की ओर बैंड हो रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम बढ़ जाती है।

0: ठीक है, पीछे एक और बैंड फोल्ड होता हूँ, इससे मुझे रिलीफ मिलता है। तो अब मैं ये मुझे कुछ ऐसे महसूस होता है कि जैसे एक पेड़ की डाली होती है ना, वो झुकी होती है नीचे की ओर, पर वो टूट जाए मान लो, पर वो मतलब पेड़ जुड़ी रहती है, तो मुझे कुछ इस किस्म का महसूस होता है। तो प्लीज मार्गदर्शन करें, बड़ी
1: थैंक यू। मैं वही सोच रही थी आपका क्वेश्चन जरा समझ लें। तो जी, तो काफी सारी चीजें हैं डॉक्टर साहब।
2: जैसे आपने कहा आप 48 वर्ष के हैं, बट आपको कूल्हे में दर्द होता है, कूल्हे की हड्डी में, या पीछे बटक्स में पेन होता है, तो आपने बताया कि एक्सरसाइज से भी ये ठीक होता है। तो ये काफी देर से आपकी समस्या चल रही है, तो हमारा आपको ये सलाह होगी हमारी कि आप किसी एक एक्सपर्ट से जरूर मिलें और मुआयना करवा लें, ताकि वो देख के जड़ पता कर सकें और इस हिसाब से इलाज कर सकें। पर जैसे आपने कहा एक्सरसाइज से आपको आराम मिलता है, तो आप एक्सरसाइज जरूर करें, कूल्हे की एक्सरसाइज। कई बार ये प्रॉब्लम स्पाइन की भी होती है, जो बटक्स में पेन होता है लगता है कूल्हे में, पर होते स्पाइन से, तो उसको पता करना है कि कहां से आ रही है, उसका उस हिसाब से इलाज करना है। खाली दवाइयां इसका उपचार नहीं है, तो हमें कारण पता करना है, हाँ पेन मैनेजमेंट करनी है, बट आगे जो फैक्टर्स हैं जो प्रीडिस्पोज कर रहे हैं आपकी दिक्कत को, उसको भी हमें सही तरह से पकड़ना है। तो जरूर एक सलाह मशवरा लें एक डॉक्टर से, ताकि आपकी बीमारी को पकड़ा जा सके और उसका ठीक उपचार किया जा सके।
1: तो डॉक्टर साहब आपने ये कहा कि कई बार बीमारी कहीं और होती है पर सिम्टम कहीं और उसका पता लगता है, तो डायग्नोस्टिक्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डायग्नोस्टिक्स एक तो रोल प्ले करते ही है, ये आप बताएं, और फिर कैसे आप करते हैं, हाउ डू डिसाइड?
2: तो आपने बिल्कुल ठीक बताया। वैसे मैं बता दूं कि तकरीबन 80% लोगों में हिस्ट्री से उनको क्या दिक्कत है उनको सुन के ही हम डायग्नोसिस बना सकते हैं, 10% में एग्जामिनेशन से, है ना, तो उनको उनका मुआयना करके हमें पता चल जाता है कि कहाँ दिक्कत है। और इसको सब्सटैंशिएट, इसको पक्का करने के लिए हमें टेस्ट करने पड़ते हैं, बट उल्टा नहीं होना चाहिए। कई बार लोग आते हैं हमारे पास एमआरआई लेके, हमारे रिश्तेदार को ये तकलीफ है जी एमआरआई में देख लीजिए और बताइए, नहीं एमआरआई का इलाज नहीं करना हमें, हमें क्या दिक्कत है उसका डायग्नोसिस बना के उसको कोरिलेट करना है हमें डायग्नोस्टिक से, और उसका इलाज करना है। अब बहुत सारे जगह हमें जब क्लियर पिक्चर ना हो, जैसे कि हमारे पिछले श्रोतागण थे उनकी दिक्कत थी, तो हमें उनमें इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती है देखने के लिए कि दिक्कत कहाँ से आ रही है। तो उसके लिए अब बहुत एडवांस डायग्नोस्टिक्स हो गई हैं, आप लोग मतलब जैसे एमआरआई है, एमआरआई भी अब पुराना हो गया, उसमें कई तरह की नई एमआरआई टेक्निक्स आ गई हैं, डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग, कई नए तरह के एमआरआई जिससे हम एक्सपर्ट्स उनमें से ठीक तरह से बीमारी का पता कर सकते हैं। उसी तरह डायनेमिक एमआरआई भी है, आपको दिक्कत लेट के नहीं है, एमआरआई लेट के हो रहा है, तो कई लोगों में खड़े होके एमआरआई करने में अच्छा। उसका अच्छा पता चलता है तकलीफ का। उसी तरह हमारे एडवांस्ड सीटी स्कैन्स हैं, जिसमें जैसे कि हमारा ब्लड फ्लो देखना है हमें, तो एंजियोग्राफी कर सकते हैं जब हम ऑपरेशन करते हैं अगर गर्दन का, तो वहां पे बहुत एक सुरक्षा बहुत छोटे से पैसेज से हमें स्क्रू डालना पड़ता है, एक तरफ स्पाइनल कॉर्ड है, एक तरफ वो नस है जो दिमाग को जा रही है ब्लड सप्लाई करती है, तो उसका पैसेज ठीक है कि नहीं वो भी देखना पड़ता है, तो हमें ऐसे एडवांस सीटी एंजियोग्राम्स होते हैं। उसी तरह ईओएस एक एडवांस रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, जिससे हम पूरे बॉडी का एक 3D इमेज ले सकते हैं, तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी भी कर सकते हैं, नसों की जांच कर सकते हैं, उसके बारे पता कर सकते हैं, तो कई एडवांस टेक्नोलॉजीज है। बोन डेंसिटी देखने के लिए हम डेक्सा स्कैन से उनके बारे जांच कर सकते हैं। तो हमें पहले हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से शॉर्टलिस्ट करना है कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और अगर पूरा डायग्नोसिस नहीं बन रहा तो ये इन एडवांस डायग्नोस्टिक से हमें वो डायग्नोसिस को पक्का करना है। और बहुत सारे, अभी तो मैं टाइम की कमी के कारण बता नहीं पाया, बट बहुत सारी ऐसी और चीजें हैं जैसे पेट स्कैन है और बोन स्कैन है, जो ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे हम कहाँ मर्ज है उसको हम पक्का कर सकते हैं।
1: जी, और डॉक्टर साहब जैसे आपने शुरुआत में कहा कि ये बहुत आम हम सुनते हैं कि लोग सबसे पहले एमआरआई कराने पहुंचते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं इसी से पता लगेगा, वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है कि अगर आपको कोई पेन है आप सीधे पहुंच जाए कि एमआरआई कर लो पहले?
2: ना, ये एक तरह से कह सकते हैं

0: है कि आप एमआरआई करा लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एमआरआई का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए हमें। और ठीक है, एमआरआई एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन है, बट ये समझना चाहिए कि उम्र के बदलाव हर किसी में होते हैं। एक अगर 70 साल के इंसान का एमआरआई कराएं तो उसमें बदलाव होंगे ही होंगे। तो हमें देखना है कि उसमें पहले देख के कि क्या बीमारी हो सकती है और उसको क्लिनिकली कोरिलेट करना होता है। तो जनरली एमआरआई हम सजेस्ट करते हैं इंडिया जैसे देश में जहां हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता इसको, कि अगर कोई रेड फ्लैग्स हो तो फिर तो एमआरआई जरूरी करना है। रेड फ्लैग्स मतलब खतरे के लक्षण। तो अगर उसके साथ बुखार आ रहा है, या जैसे हमने बोला कि रेस्ट करने के बाद दिक्कत हो रही है, लेटे लेटे दिक्कत हो रही है, नाइट पेन हो रहा है, कमजोरी पैरों में बढ़ती जा रही है, मलमूत्र नियंत्रण पे असर हो रहा है, या हिस्ट्री है कैंसर की, वेट लॉस बहुत ज्यादा हो गया है, तो ऐसे कुछ रेड फ्लैग्स कहते हैं जिसमें एमआरआई जरूरी हो जाता है। उसके बाद अगर आप ठीक से आपने उपचार किया और आराम नहीं आ रहा, जनरली कहते हैं 6 हफ्ते के लिए, या दिक्कत बहुत ज्यादा है और उसमें आराम ना आ रहा हो, तो फिर एमआरआई पे जाना चाहिए। नहीं तो हर किसी को एमआरआई में जाने की जरूरत नहीं होती।
1: तो सबसे पहले कोई तकलीफ है तो पहले डॉक्टर के पास जाएं
0: बिल्कुल
1: ना,
0: बिल्कुल,
1: खुद डायग्नोस्टिक्स पे या उस पे ना चले जाएं, है
0: हाँ बिल्कुल।
1: ना?
0: मतलब हाँ, अगर हल्की है दिक्कत तो आप खुद भी इलाज शुरू कर सकते हैं, बट अगर आराम ना आ रहा हो तो जरूर डॉक्टर डॉक्टर से उसका मुआयना जरूर करा
1: तो
0: लें,
1: खुद
0: ताकि
1: क्या
0: वो देखें।
1: करेंगे इलाज?
0: अब जैसे बताया कि जैसे जुकाम है उतना ही कॉमन कमर का दर्द है ऑलमोस्ट, है
1: हाँ,
0: ना।
1: बहुत
0: हाँ, तो
1: कॉमन
0: हर जुकाम के लिए तो हम डॉक्टर के
1: नहीं
0: पास जाते नहीं।
1: जी।
0: तो कमर का अगर दर्द है और उसमें कोई रेड फ्लैग्स नहीं है जैसे हमने बात की, तो आप सेक कर सकते हैं, मलम लगा सकते हैं। कुछ जो ऑफ द काउंटर ड्रग्स हैं जो मतलब मिल जाती हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के दर्द के लिए, उनको भी ले सकते हैं। कई बार फिजियोथेरेपिस्ट के बाद जाके फिजियोथेरेपी भी करा सकते हैं। अगर आराम ना आ रहा हो या दिक्कत बढ़ रही हो या रेड फ्लैग्स हैं तो जरूर डॉक्टर के पास
1: तो
0: जाइए।
1: डॉक्टर साहब, कितने दिन ऐसे घरेलू इलाज करके वेट कर सकते हैं? कुछ ऐसा होता है क्या कि 2-4 दिन देखो, हफ्ता देखो, महीना देखो?
0: अक्सर देखा गया है कि ये 2 से 3 हफ्तों में ये सिम्टम्स अपने आप
1: सबसाइड हो जाएंगे?
0: सबसाइड हो जाते हैं। अगर बार बार दोबारा नहीं होते तो आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं है।
1: ठीक है। और मैसेजेस भी हमारे पास बहुत आ गए हैं। हेलो आरजी ऑफ आकाशवाणी रेनबो, वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम, और इसको मोबाइल एप्लीकेशन पे हम सुन रहे हैं, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं। कुंडली नरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट श्री भूमि आसाम से हमारे श्रोता हैं, हितेंद्र दास, मानस दास, वर्षा दास, शेफाली दास और माधव दास। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मोबाइल ऐप पे आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वो श्रोता जो अभी तक नहीं इसे डाउनलोड कर पाए हैं, आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, न्यूज ऑन AIR हमारा ऐप है। इसके अलावा जो मैसेज आया है डॉक्टर साहब, कपिल हमें पूछ रहे हैं दुबई से कि क्या B12 का कोई रोल होता है स्पाइन में?
0: हाँ जी, देखिए, अगर जैसे पहले श्रोतागण ने पूछा था कि अगर शियाटिका होती है या जैसे हाथ में भी दर्द जाते हैं, तो विटामिन B12 का रोल होता है नर्व ट्रांसमिशन में। और अगर विटामिन B12 की कमी हो तो जो नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में दर्द हो सकता है। तो आपके डॉक्टर साहब एवेल्युएट करेंगे, और अगर आप में उन्हें लगे कि विटामिन B12 की कमी के कारण लक्षण है तो विटामिन B12 जरूर देंगे। और आमतौर से जब भी दर्द जैसे पैरों में या हाथ में फैलता है नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में, तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में विटामिन B12 जरूर होता है, क्योंकि इसका रोल है नर्व ट्रांसमिशन में।
1: अच्छा, तो वो ब्लड टेस्ट से हो जाता है?
0: ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है।
1: जी, हमारे श्रोता पुनः एक बार जुड़ना चाह रहे हैं, शायद हमारे पुराने श्रोता ही हो जिन्होंने ट्राई किया हो, बात करते हैं। हेलो,
2: हेलो
1: जी, बताइए कौन बोल रहे हैं?
2: हेलो मैम, नमस्ते।
1: जी नमस्कार
2: मैम, मैं प्रशांत शर्मा बोल रहा हूँ मेरठ से।
1: जी बताएं प्रशांत जी।
2: मैडम, शुगर की वजह से क्या मेरे स्पाइन में दर्द रहता है? मैडम, स्पाइन में दर्द रहता है मेरे।
0: आपकी उम्र कितनी है?
2: सर 44 साल।
0: 44 साल शुगर के कारण 44 साल
2: शुगर पेशेंट हूँ मैं सर।
0: हाँ, बट कब से है आपको डायबिटीज?
2: सर सन 2019 से है सर।
0: 2019 से, तो अभी 7 साल हुए. जब डायबिटीज लंबी रहती है तो उससे हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं, पर आपकी उम्र में 7 साल में हड्डियां इतनी कमजोर हो जाएं कि उससे दर्द हो, चांस थोड़ा कम है. बट ब्लड शुगर से कई बार मसल्स भी थोड़ा वीक होती हैं, बट आप में ज्यादा चांस है कि जो आपका कमर का दर्द है वो मैकेनिकल कारण से है. अगर आपको

0: सुबह उठने में कमर अकड़ी लगती है और चलने फिरने से आराम आता है, तो आपको हड्डियां कमजोर या इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स की तरफ देखना है, नहीं तो मैकेनिकल पेन का ही ज्यादा चांस है आप में होने का।
1: जी
2: धन्यवाद कॉल करने के लिए। हमें ये चंद्रपुर नेशनल पार्क तालुका तिमूर डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर से लिखने वाले हैं, उनका नाम है कुमार गौरव इंदुरकर। ये लिख रहे हैं, सर फाइन हेयर फ्रैक्चर ये क्या होता है?
0: हेयरलाइन फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं ये? हाँ, बहुत सारे लोगों में जो फ्रैक्चर रीढ़ की हड्डी में होता है वो बिल्कुल जैसे आप फ्रैक्चर का सोचते हैं कि हड्डी आपस में सरक गई है, वैसा नहीं होता, बट उसमें हेयरलाइन फ्रैक्चर की तरफ होता है और बहुत सारों में वो दब जाती है हड्डी, दो फ्रैक्चर के टुकड़े अलग नहीं होते। तो ये मतलब डिपेंड करता है, कई यंग लोगों में भी, जवान लोगों में भी हेयरलाइन फ्रैक्चर हो सकते हैं चोट के कारण, बट ज्यादातर देखा जाता है जैसे उम्र बढ़ती है तो हड्डियां जब कमजोर होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो या ऑस्टियोमलेशिया हो, तो उनमें ये हेयरलाइन फ्रैक्चर्स बहुत आम होते हैं। मतलब ज्यादा जोर से चोट भी लगे, चलते चलते झटका लगा या चलते चलते थोड़ा गिर गए या स्पीड से कार या बस स्पीड ब्रेकर के ऊपर से चली गई और उसी झटके में हड्डी दब जाती है। तो इसमें जरूरी होता है देखना कि हाँ वो जो फ्रैक्चर है वो स्थायी है या अस्थायी है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, क्योंकि हमने बात की कि पीछे ही सुरंग में नसें आ रही हैं, स्पाइन कॉर्ड आ रही है, तो कहीं उस पर दबाव का चांस तो नहीं है। तो एक एक्सरे करते हैं, डायनेमिक एक्सरे, सामने झुक के और पीछे झुक के, अगर उसमें वो आगे पीछे हड्डी नहीं होती तो वो स्थायी फ्रैक्चर है, स्टेबल फ्रैक्चर है और उसमें चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं जितना दर्द अलाउ करे। बट अगर वो अस्थायी है तो उस समय या तो उसको फिक्स कराना चाहिए या बेड रेस्ट करना जब तक वो स्थायी ना हो जाए। और उतना ही जरूरी है कि जो हड्डियां कमजोर हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, उसका भी पता चले कि क्यों हड्डियां कमजोर हैं, उसका ठीक से उपचार किया जाए, नहीं तो और हड्डियां ऐसे उनमें फ्रैक्चर हो सकते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस जो रीढ़ की हड्डी में, उससे कई ऐसे दुष्परिणाम होते हैं जो अल्टीमेटली जिसमें काफी मॉर्बिडिटी होती है।
2: जी हमारे कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो
3: नमस्कार मैडम
2: जी। नमस्कार
3: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्कार जी
3: सर, मेरा नाम संजीव कुमार है, मेरी एज 44 इयर्स है सर, और वजन 102 किलो था अभी पिछले दिन पहले, हाइट है जो 5'10" या 11" इंच है। तो सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इसकी तब बैठता हूँ ना कुछ देर के लिए तो दुखना लगती है कमर सर, पेट बहुत आगे निकले है सर, अब तो घुटने में प्रॉब्लम है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए सर ताकि बैठने उठने वाली दिक्कत ना हो? अब मैं लेटो है आपसे बात कर रहा है, अब मेरी कमर दुख रही है सर नीचे से।
0: 44 साल के लिए भी, मतलब अगर आपका, हमने पहले बात की थी, अगर मोटापा हो तो उससे हमारे रीढ़ की हड्डी पे ज्यादा प्रेशर आता है, तो सब कुछ देखना होगा आप को, आपकी जीवन शैली कैसी है, आपको टहलने की या कोई ऐसे स्पोर्ट्स या कोई ऐसी आदत है कि नहीं, ठीक से बैठते हैं कि नहीं, पोस्चर ठीक रखते हैं कि नहीं, तो आपको मोटापा कम करना पड़ेगा और आपको जीवन शैली में टहलने की या ऐसे कोई जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज की आदत रखनी होगी और बैठने लेटने खड़े होने काम करने का ढंग ठीक रखना होगा। आप 4 से 5 महीने इस पे फोकस कीजिए और ना आराम आए तो जरूर आप किसी डॉक्टर से सलाह मशवरा लीजिए, मतलब ज्यादातर चांस है कि आपको ये सब करने से ही आराम आ जाना चाहिए।
2: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आते हैं। हमारे साथ हमारे आज के रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर HS छाबड़ा, डायरेक्टर हैं स्पाइन एंड रिहैबिलिटेशन में श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में, और बात कर रहे हैं हम आज एडवांस स्पाइन केयर एंड रिहैबिलिटेशन पर। आप हैं रेडियो डॉक्टर में।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप हैं रेडियो डॉक्टर में और आपके साथ हैं आपकी दोस्त शालिनी मित्तल और साथ में हमारे रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर एच एस छाबरा। बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं डॉक्टर साहब, फोन लाइन भी कंटिन्यूस बिजी है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मुझे बहुत जरूरी आपको पूछने हैं विषय संबंधित। पहले एक कॉलर को ले लेते हैं, वो लाइन पर वेट कर रहे हैं। हेलो
2: जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार,
2: सिटी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी जी गौतम साहब, बहुत बहुत स्वागत
2: है। कि जब हम ऑपरेशन कराते हैं तो हमारे जो एनेस्थेटिक जी हैं वो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाते हैं, तो मैंने बहुत देखा है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी में साइड पेन है और बहुत से लोग तो 10-10 साल से कहते हैं कि हमारी कमर में दर्द है, इंजेक्शन लगाया था। तो मेरा पूछना है कि क्या हमारी रीढ़ की हड्डी कमजोर थी या हमारे एनेस्थेटिक जी की कुछ कमी रही, कृपया विस्तार से बताएं।
1: बहुत कॉमन प्रश्न है ये।
3: हाँ जी हाँ जी, ये आम पूछा जाता है इसके बारे। देखिए ऐसा कि हमने बताया ना कि कमर का दर्द जुकाम के बाद सबसे आम बीमारी है, तो वैसे भी हर किसी में 10 में से 8 लोगों में कमर का दर्द कभी ना कभी तंग करेगा। तो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा तो जरूरी नहीं है कि उसी के कारण कमर का दर्द हुआ, और कई बार उसके बाद दर्द इसलिए शुरू होता है क्योंकि ऑपरेशन के बाद हम अपनी थोड़ी देर के लिए जीवन शैली आसीन कर लेते हैं, हम रेस्ट पे रहते हैं और चलते फिरते नहीं है, जिससे मांसपेशियां कमजोर हो जाते हैं। तो अगर रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन के कारण दर्द हो तो उसके लक्षण अलग होते हैं, तो ज्यादा चांस है कि ये मैकेनिकल कारण है और इसको अगर आप अपनी जीवन शैली बदलें तो ये दर्द में आराम आना चाहिए, नहीं

0: बात आराम आए तो जरूर एक सलाह मशवरा कर लें किसी डॉक्टर से।
1: जी धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, जैसे समस्याओं की बात हो रही है, आपने भी शुरू में बताया कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हो सकती हैं, और डायग्नोस्टिक्स पर भी हमने बात की, लेकिन जब आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं किसी भी पेशेंट का, तो किस तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं? क्या उसमें भी अलग अलग तरह के होते हैं, या सबके साथ उसी उन्हीं मेडिसिन से आप चलते हैं?
0: नहीं नहीं, वो कारण के हिसाब से इलाज होता है। और अगर प्रिंसिपल्स बोलें स्पाइन की बीमारियों के मैनेजमेंट का, तो प्रिंसिपल यही होता है कि आपने दर्द का तो इलाज करना है, पर उतना ही जरूरी कारण को हटाना है। अगर नहीं हटाएंगे तो वो दर्द बार बार आता जाएगा, और यही एक कारण है कि क्यों कमर का दर्द एक महामारी की तरह फैला हुआ है, अगर हम वो कारण पे नहीं काम करें तो। उदाहरण के तौर से जैसे कमर का दर्द है क्योंकि जीवन शैली हमारी आसीन है और पोस्चर ठीक नहीं रखते, दर्द से हमने दर्द को दबा लिया पर कारण नहीं हटाया, तो कुछ दिन बाद वो फिर आएगा। तो इसलिए मैनेज द पेन एंड रिमूव द कॉज, उसी बार बार दिक्कत को हटाने के लिए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स और भी जो हैं उन पे भी काम करना होता है। जैसे कि अगर मोटापा है तो उस पे काम करना है, अगर स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है। अब आप बोलेंगे स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल से कैसे कमर का दर्द का क्या लेना देना, तो अगर दर्द लंबी चलती है तो उससे टेंशन होती है, टेंशन से दर्द बर्दाश्त करने की शक्ति गिरती है, उससे और दर्द बढ़ती है, उससे और टेंशन होती है, एक विशेष साइकिल हो जाता है और माइंड सेंसिटाइज हो जाता है। तो जब भी लंबी दर्द चलती है, खासतौर से 3 महीने से ज्यादा, अगर हम इस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को ना देखें तो आराम अच्छा आने का चांस कम हो जाता है।
1: अच्छा।
0: तो इसलिए कारण को देखना है। जैसे अगर आपको दर्द खाली कमर का है तो उसमें से एक मलम दवाई फिजियोथेरेपी से चल सकती है, बट अगर दर्द पैर में फाल रहा है तो उसके लिए अलग तरह से दवाइयां जैसे प्रीगैबलिन, गाबापेंटिन वगैरह चलती हैं, अलग थेरेपी साथ में शुरू होती हैं। ना आराम आए तो इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है, छोटे से 100 में 3-4 में ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। उसी तरह अगर दिक्कत, अगर जैसे चोट लगी रीढ़ की हड्डी में और उसके कारण अगर नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया, तो उसमें जो स्पाइन में इंस्टेबिलिटी है उसको हमें दूर करना पड़ता है ऑपरेशन से, उसको फिक्स करना पड़ता है, दबाव हटाना पड़ता है, पर उसके साथ साथ हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से पेशेंट को डालना पड़ता है। कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन मतलब ना खाली शारीरिक रिहैबिलिटेशन बट साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन। मतलब आप सोचिए अगर जवान इंसान में रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज हो गया, तो ना खाली उस इंसान पे पर पूरे परिवार पे कितना मानसिक तनाव आता है ना। तो और आम तौर से ये मेन ब्रेड अर्नर्स होते हैं फैमिली के, इन्हीं पे पूरा परिवार चल रहा होता है। तो ना खाली इंसान की साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन करनी होती है पर पूरे परिवार की भी साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन करनी होती है। अगर वो पैरालाइज हो गया बाय चांस तो उसको एक मतलब शारीरिक पुनर्वास से कैसे उसके बावजूद नॉर्मल जिंदगी में आना है, चाहे व्हीलचेयर से। खाली इतना नहीं, इसके साथ साथ उसको कैसे एक व्यवसाय में वापस लाना है, कैसे वो समाज में वापस जा पाए। आम तौर से जैसे बाहर सड़क पे व्हीलचेयर चलाना मुश्किल है, बस में जाना मुश्किल है, तो कैसे पूरा समाज में वो एक तरह से कम्युनिटी इंक्लूजन हो जाए और नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आ जाए, ये सारा स्पाइनल इंजरी मैनेजमेंट का बहुत एक अहम पार्ट होता है।
1: जी।
0: और ऐसे रीढ़ की हड्डी की कई तरह की बीमारियां होती हैं, ट्यूमर भी हो सकता है, उसका इलाज उस हिसाब से कई बार ट्यूमर निकालना पड़ता है, कई बार उसमें स्पेसिफिक इंजेक्शन से आराम आ जाता है। उसी तरह अगर कोई बचपन से बीमारी है ना, या जैसे डिफॉर्मिटी है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो रही है और टेढ़ी बढ़ती जा रही है, ना खाली देखने में बुरा लगता है बट अगर बचपन से हो तो इससे सांस लेने की क्षमता पे भी असर हो सकता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी और रिब्स ही तो वो चेस्ट कैविटी को बना रहे हैं।
1: कई लोग बहुत झुक के चलते हैं।
0: हाँ बिल्कुल। तो वो मतलब बहुत तरह की रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स हैं, सबका इलाज अलग है पर संभव है। यहां मैं बोलना चाहूंगा कि दो चीजें तो खास तौर से बताना चाहूंगा कि एक तो ज्यादातर बीमारियों का इलाज बिना सर्जरी के कंजर्वेटिव तरीके से किया जा सकता है।

आप कह लीजिए 95% या 97% पेशेंट्स में, पर अगर वो 3-5% में हो जिनमें ऑपरेशन की जरूरत हो तो उससे डरना नहीं चाहिए। वो जमाने गए जब रीढ़ की हड्डी की स्पाइन की सर्जरीज सेफ नहीं होती थी, आज एडवांस टेक्नोलॉजी से ये बिल्कुल सेफ हैं और

0: मॉनिटरिंग कहते हैं इसको, ताकि कभी भी कोई दिक्कत आ रही हो उसी समय उसका उपचार कर सकें। अगर मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी से रीढ़ की हड्डी में लोग क्यों डरते हैं कि कहीं स्पाइनल कॉर्ड पे या नस पे उसका असर ना आ जाए, तो एक तो ये न्यूरो मॉनिटरिंग है, बट प्रिसीजन भी आ गया। आप कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से आगे अब नेविगेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें टेबल पे सीटी स्कैन करके नेविगेशन टेक्नोलॉजी से आप रियल टाइम देख पा रहे हैं कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, आपका स्क्रू अगर जा रहा है तो कहां जा रहा है। और रोबोटिक नेविगेशन टेक्नोलॉजी से वो रोबो के थ्रू स्क्रू जाता है, जिससे और भी सुरक्षित हो जाता है। तो इसी तरह एनेस्थेटिक टेक्निक्स बढ़ गई हैं, बेहतर हो गई हैं। और उसके बाद पूरा जो पुनर्वास जो ऑपरेशन के बाद बहुत जरूरी होता है वो भी इतना एडवांस्ड हो गया, उसमें भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, एडवांस्ड फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, कई ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे रीढ़ की हड्डी की अगर प्रॉब्लम हो तो इंसान को साधारण जिंदगी में वापस लाया जा सकता है। हाँ, पर यह भी बोलना बहुत जरूरी है कि इसके बारे ज्यादा जागरूकता नहीं है, और आपके माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। लास्ट चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि बीमारी बचाना ज्यादा अनिवार्य है ना कि उसका इलाज करना, तो ये रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम्स में बिल्कुल खरा उतरता है। क्योंकि हमने बात की ना, अगर रीढ़ की हड्डी में चोट से स्पाइनल कॉर्ड पे असर हो जाए तो वो जिंदगी भर के लिए पैरालाइज भी हो सकते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स दोबारा से जीवित नहीं होते जैसे कि शरीर के बाकी भाग। अच्छा। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स जीवित नहीं होते, तो इसलिए इन बीमारियों से बचना एक, और ये बहुत आसान है, एक अच्छी जीवन शैली से और कुछ नियमों का पालन, सेफ्टी रूल्स का पालन करने से। जैसे हम में से कितने लोग कार में पीछे बैठ के सीट बेल्ट का उपयोग करते हैं, ऊंचाई में लोग काम करते हैं सेफ्टी हार्नेस का उपयोग नहीं करते, स्पोर्ट्स खेलते हैं स्पोर्ट्स के नियमों का पालन नहीं करते जिससे चोट लग सकती है,
1: ड्राइव करते हैं हेलमेट नहीं पहनते,
0: बिल्कुल ड्राइव किया पता नहीं पानी कितना गहरा है, नीचे सर लगता है और उसके कारण जिंदगी भर से गर्दन से नीचे पैरालाइज हो सकते हैं। तो डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं, आप म्यूजिक सुन रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, बिलबोर्ड पे आपका ध्यान है। सरकार ने अगर ये नियम बनाए हैं तो किसी कारण से बनाए हैं। हमें सीट बेल्ट का उपयोग इसलिए नहीं करना कि ट्रैफिक पुलिसमैन आ गया हमारा चलान हो जाएगा, हमें अपने बचाव के लिए इस सीट बेल्ट का वो समझना बहुत जरूरी है।
1: आप फॉल की भी बात कर रहे थे, कई बार लोग बच्चे खासतौर पर ऊपर से गिर जाते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो
0: मतलब और गिरते हैं तो मतलब भारतवर्ष में तो कई ऐसे अनोखे कारण हैं गिरने के जो बाहर देखने को ही नहीं मिलते, जैसे पेड़ों पे चल के मतलब लोग फल तोड़ने के लिए चढ़े, कोकोनट टॉडी टॉपिंग, कोकोनट ट्रीज पे ऊपर चढ़ना,
1: हाइट बहुत है,
0: बिल्कुल, आप उस रात को अपने किसी रिश्तेदार के घर गांव में गए, ऊपर छत पे रात को थोड़ा सेवन किया, सो गए, आधी नींद में उठे और साइड में पैरापेट नहीं थी, उसके ऊपर से गिर के नीचे गिर गए, पतंग के पीछे भाग रहे हैं उससे गिर गए, है ना, बंदर आ गया उससे बचने के लिए बैल्कनी से झुक के सामान ऊपर खींच रहे हैं उनसे गिर गए, कूलर को रिपेयर कर रहे हैं उससे गिर, इन चीजों में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, ताकि आप एक बार कभी एक स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड को देखेंगे तो आप समझ लेंगे इन चीजों की कितनी अहमियत है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया है बहुत एक इफेक्टिव वे है, और मुझे लगता है बहुत सारे श्रोता ये सुनकर उन पे भी प्रभाव पड़ा होगा, जैसे मुझे पड़ रहा है कि मैं आपकी बात को बहुत ध्यान से इसलिए सुन रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं पता और आप उन चीजों से डील करते हैं, और मैसेजेस और कॉल्स बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन जो आपने अभी बात बताई काफी चीज तो उसमें कवर हो जाती है जो लोग पूछना चाह रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस बाकी रह रहे हैं, जैसे ये बलजिंदर जी लिख रहे हैं दिलशाद गार्डन से, और साथ ही साथ एक और मिलता जुलता मैसेज है रोहिणी से सतीश कुमार जी का, इन दोनों ने ही जानना चाहे कि खान पान का क्या रोल होता है, एक तो ये इन्होंने जानना चाहे, और किस तरह से हम, इन्होंने लिखा है कि खाने में हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं जिससे हमारी बैक सही रहे, ये जानना चाहिए।
0: ये बहुत ही अहम सवाल है, जैसे कि अच्छी जीवन शैली हमने बताया बहुत जरूरी है। उसी अच्छी जीवन शैली में अच्छा पौष्टिक आहार एक अहम रोल प्ले करता है
1: जी।
0: तो इसलिए खास तौर से जिंदगी में कुछ पीरियड्स

0: होते हैं, जैसे कि बच्चा जब हाइट एकदम अपना बढ़ाता है तो उसको प्रोटीन्स और कैल्शियम की जरूरत है, तो वो आहार में प्रोटीन्स और कैल्शियम रिच डाइट उसको लेना बहुत जरूरी हो जाता है। उसी तरह जैसे महिलाएं जब उनका मीनोपॉज होता है, पीरियड्स रुकते हैं, तो उसके बाद उनमें बोन हेल्थ पे असर होने लगता है अगर वो ठीक जीवन शैली ना रखें और अगर खान पान ठीक ना रखें। और ये बताया गया कि नेचुरल वे से अगर हम कैल्शियम और प्रोटीन का आहार ठीक रखें तो उससे ऑस्टियोपोरोसिस से बचा जा सकता है। तो अच्छा पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है बोन हेल्थ के लिए और रीढ़ की हड्डी के हेल्थ के लिए। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया बचाया जा सकता है। और एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्कोपीनिया। कहते हैं कि ना खाली बोन्स वीक होती हैं उम्र के साथ, मांसपेशी इतने कमजोर हो जाते हैं, और इसके लिए भी एक्सरसाइज और अच्छा आहार बहुत जरूरी बताया जाता है।
1: जी। और बहुत सारे मैसेज हैं लेकिन मैं चुन चुनकर और शॉर्ट में ले पा रही हूँ। कुछ लोगों ने बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस भेजे हैं। प्रोमिला या बेदी ने लिखा है हमें, नमस्कार भेजा है, और साथ ही बोला है कि कई बार मालिश बहुत करवाते हैं लोग, खासतौर पर पीठ की और कमर की, तो मैंने इसलिए ये प्रश्न लिया है। और कई बार रोड साइड वालों से करवा लेते हैं या किसी को भी बुला लेते हैं कि मुझे थोड़ा कमर दर्द है, जरा मसाज कर दो। कहाँ तक सही है, क्या इसमें नुकसान होता है? और इसमें लिखा है कि कई लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं, तो इस तरह के केसेस आते हैं डॉक्टर साहब?
0: हाँ जी आते हैं। देखिए ऐसा है कि मालिश करवाना शायद गलत नहीं होगा, मसल स्पाज़म को कम करता है, जो जकड़न होती है उसको कम करता है। बट कब करवा रहे हैं, अगर आप में बहुत तेज दर्द है और मालिश किया और अगर जोर से झटका दे, कई लोग पैर पकड़ के खींच देते हैं, तो उससे दिक्कत बढ़ सकती है। तो ये अगर आप करवाएं तो किसी ट्रेंड इंसान से ही करवाएं, एक्सपर्ट से करवाएं। बाहर एक प्रोफेशन होता है काइरोप्रैक्टर्स का, भारतवर्ष में ऐसा कोई ट्रेंड प्रोग्राम नहीं है, तो इसलिए या तो ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट से करवाएं या मालिश जो ठीक करता है, बट उनको जरूर बोले कि जोर से झटका नहीं देना हमारे रीढ़ की हड्डी को या शरीर को, जिससे हमें दिक्कत आ सके।
1: जी, तो ये खुद देखना पड़ेगा,
0: बिल्कुल बताना पड़ेगा और जानना पड़ेगा, और किससे करवाते हैं वो चुनना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं हम काइरोप्रैक्टर हैं, बट बाहर से कोई डिग्री करके आए हो ऐसे तो बहुत कम लोग हैं, तो आपने देखना है कि उनका उनका बैकग्राउंड कैसा है और फिर करवाएं।
1: जी बिल्कुल। और हमारे श्रोता हैं सतीश जी, इन्होंने कुछ और भी पूछा है साथ में। एक तो इन्होंने ये बोला है कि डॉक्टर साहब 2 साल से इनको प्रॉब्लम है, कमर दर्द है, मेडिसिन्स ले रहे हैं पर इनको रिलीफ मिला नहीं है, और आज जो आप बता रहे हैं उससे बहुत कुछ जानकारी हमें मिल रही है, ये आपसे मिलना चाहते हैं, तो आपकी जानकारी चाह रहे हैं कि आप कहाँ बैठते हैं, कब मिल सकते हैं। तो बिल्कुल कार्यक्रम खत्म होने वाला है, मैं अभी बताऊंगी कि डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं। वैसे बता देती हूँ, डॉक्टर HS छाबड़ा डॉक्टर साहब का नाम है, आप श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में बैठते हैं और डायरेक्टर हैं स्पाइन एंड रिहैबिलिटेशन के, तो आप उनसे मिल सकते हैं वहां पर जाकर। सतीश जी इनकी एज है 65 इयर्स, रोहिणी में रहते हैं। और मैसेज में हमें गीता जी ने भी लिखा है एक मैसेज, और लिख रही हैं कि मुझे बहुत दर्द होता है और इलाज कराने में भी नीचे कमर के नीचे कभी कभी बहुत तेज दर्द होता है, तो चलिए आप ही डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। डॉक्टर अनिल कालरा हमको लिख रहे हैं गुरुग्राम से, वेरी गुड प्रोग्राम, थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। मैसेजेस बहुत हैं, मैं माफी मांगना चाहूंगी कि हम नहीं ले पा रहे हैं सारे प्रश्नों को, पर जो डॉक्टर साहब जैसे आपने टिप्स बताए थे यंगस्टर्स के, तो एक पोस्चर की बात भी आपने बात की थी जो बहुत मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल पोस्चर बहुत बिगड़ रहा है लोगों का, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे लेटना है, वो चीजें बड़ी बिगड़ रही हैं, और खासतौर पर कंप्यूटर को दोष देते हैं, फोन को दोष देते हैं, तो उस तरह के कितने केस आते हैं आपके पास, गर्दन से रिलेटेड आते होंगे?
0: देखिए कहते हैं कि जब कोविड का पैंडेमिक आया ना,
1: जी,
0: तो कमर के दर्द का भी एक पैंडेमिक पूरे विश्व में आ गया। पहले तो एपिडेमिक होता था, वो पैंडेमिक, और वो कारण क्या था, एक तो घर के बीच सीमित हो गए, तो जी। वो एक्सरसाइजेस खत्म हो गई, जीवन शैली आसहीन हो गई, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, पर पोस्चर पे बहुत असर हुआ। वर्क फ्रॉम होम है, बिस्तर में बैठ के लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, दफ्तर में तो अर्गोनॉमिक्स होते हैं काम करने के, पर घर में कोई होते नहीं है, तो पोस्चर ठीक रखना बहुत जरूरी है। अगर आप रीढ़ की हड्डी को सामने से देखें तो सीधी दिखेगी, साइड से देखें तो गर्दन में आगे की तरफ पीठ में पीछे की तरफ, कमर में आगे की तरफ कर्व्स होते हैं, इनको लॉर्डोसिस या काइफोसिस कहते हैं। अच्छे पोस्चर

0: में इसको आप मेंटेन करके रखते हैं। अगर आप पोस्चर खराब रखते हैं, जैसे कुर्सी में झुक के बैठे, जैसे कि बिस्तर में झुक के लेट के टीवी देखने, पढ़ने, लैपटॉप का इस्तेमाल करने का आपने किया, या इजी अच्छी कुर्सी का इस्तेमाल नहीं किया, तो उससे वो जो कर्व है वो रिवर्स हो जाता है। और जैसे उसी तरह जैसे अगर उंगली को खींच के रखें तो जोड़ में दर्द होगा, तो कमर के दर्द में वैसे ही दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये बचपन से ही बच्चों में, स्कूलों में और घरों में उनको बताना कि पोस्चर ठीक क्यों रखना है और कैसे रखना है वो बहुत जरूरी है। एक अच्छी कुर्सी का इस्तेमाल करें, उसमें सीट और बैकरेस्ट का एंगल फिक्स्ड हो 100 से 110 डिग्री, उसमें पूरा पीछे तक बटक्स को पूरा पीछे तक सटा के लेके बैठें, झुक के नहीं बैठें। लंबा बैठना है तो हर 40-50 मिनट में पोस्चर बदल लें। उसी तरह बिस्तर में काम करने की आदत ना रखें। बहुत शौक है तो आजकल डोमेस्टिक बेड्स हो जाते हैं जो हॉस्पिटल के बेड्स की तरह ऊपर हो सकते हैं ताकि पीठ सीधी रहे, या बैक रेस्ट लगा सकते हैं, है ना। तो उसी तरह बहुत सारे लोग कहते हैं मैट्रेस का क्या रोल है, मतलब किसी को सख्त मैट्रेस सूट करेगा, किसी को नरम, पर वो धसा नहीं होना चाहिए बीच में। फिर कई लोग पूछते हैं तकिया लगाने से दर्द बढ़ता है क्या? नहीं, देखो ऐसा है, आप कैसे लेटते हैं उस पर निर्भर करता है। अगर आप साइड पे लेटते हैं और तकिया नहीं लेंगे तो गर्दन खींचेगी आपकी, और 8 घंटे अगर गर्दन खींचती रहे तो दर्द तो होगा ही आपको। अगर सीधा लेटते हैं तो पतला तकिया लें, साइड में लेटते हैं तो इतना लें जितना बिस्तर और सिर के डिस्टेंस को पूरा करे ताकि आपकी गर्दन सीधी रहे रात को। अगर दोनों सोते हैं तो अपना तकिया बना लें या सर्वाइकल पिलो यूज करें, बीच में पतला और साइड से मोटा हो, ताकि करवट लें तो आप मोटे वाले हिस्से में आ जाएं। अच्छा। तो इसलिए अच्छा पोस्चर और जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस ये बहुत जरूरी है स्पाइन हेल्थ के लिए।
1: जी जी, समय हमारे पास ज्यादा नहीं बचा है, पर एक बात जो आपने बोली थी कि हमें रिहैबिलिटेट अगर करना है तो बहुत कुछ उन्हें साइको सोशल सपोर्ट देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर मेरे दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि हमारे बहुत सारे श्रोता आपको सुन रहे हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं जब कोई एक ऐसा पेशेंट होता है जिसको रिहैबिलिटेट आप करते हैं पूरी मेहनत करके, उसको समाज का क्या रोल है उसके प्रति, वो थोड़ा सा बताइए, आप क्या करते हैं लिसनर्स से।
0: देखिए ऐसा है कि बहुत बार हम कभी किसी को व्हीलचेयर पे देखते हैं तो हम उस पे, हमारा होता है रवैया जैसे उस पे तरस खाने का।
1: हाँ।
0: इससे उस इंसान पे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है। हमें उन पे तरस नहीं खाना, हमें उन्हें एम्पावर करना है कि वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल पे वापस आ सके। हमें उन्हें सक्षम बनाना है कि वो हमारी तरह एक साधारण जीवन शैली में वापस आ सके। तभी एक मिनिस्ट्री भी जो पहले जिसका नाम अलग था उसको सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री बना दी गई, क्योंकि ये पर्संस विद डिसेबिलिटीज को हमें एम्पावर करना है। तो आप लोगों को एनकरेज करिए कि वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आ सकें, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको तरस मत खाइए, और जैसे कहते हैं कि पहले अपने पे वो सब करें तो आप अपने पे रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम से बचाव के सारे नियम फॉलो कीजिए, और फिर दूसरों को भी एम्बेसडर्स बनिए इन प्रॉब्लम्स, आम प्रॉब्लम से बचने के लिए। ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा सारे श्रोता।
1: थैंक यू सो मच इतना पॉजिटिव मैसेज के लिए, और थोड़ा सेंसिटिव आप रहिए और दूसरे की परेशानी को समझिए और वैसा ही बिहेव उनके साथ करिए। अब हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि डॉक्टर साहब को धन्यवाद दे सके। आज हमारे साथ रहे डॉक्टर HS छाबरा, डायरेक्टर है स्पाइन एंड रिहेबिलिटी में श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में, प्रेसिडेंट हैं स्पाइनल कॉर्ड सोसाइटी में और चेयरमैन हैं स्पाइन वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन में। बात की आज हमने एडवांस स्पाइन केयर एंड रिहैबिलिटेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार डॉक्टर साहब, यहाँ आप आए हैं, इतना समय आपने दिया।
0: बहुत धन्यवाद शालिनी मित्तल जी, आपका आपने मौका दिया।
1: तो धन्यवाद हमें मैसेज करने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर, स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल, गया है बदल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर 9:00 बजे।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीथ प्रमाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एमए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने चेन्नई में आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपे जाली समर्थन पत्र पर कार्रवाई की मांग की है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई शुभ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है। श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात पांचवें स्थान पर है। ऐसे में दोनों टीमें शीर्ष चार में अपनी पकड़ मजबूत करने के इरादे से उतरेंगी। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हाय दोस्तों, आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम और मैं हूं आपका आरजे चेतन। एंग्जायटी इंसान के लिए घातक है। ये मस्तिष्क को चोट पहुंचा दे सकती है, शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है। इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में लोगों की जिंदगी जैसी हो गई है, उसमें एंग्जायटी का होना बहुत आम बात है। रिश्ते में विश्वास की कमी, एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़, असुरक्षित महसूस करना, लड़ाई झगड़े, गलत व्यवहार, अनियमितता, समाज से दूर रहना, अपनी ही जिंदगी में लीन रहना, ये सब बेचैनी के कारण है। एंग्जायटी तो हर किसी को होती है, परंतु इसे बीमारी के तौर पर पहचानना मुश्किल है। अगर कोई विशेष नकारात्मक विचार या परेशानी बहुत लंबे वक्त तक बनी रहे और उससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ने लगे तो ये वाकई खतरनाक है। एंग्जायटी अवसाद, निराशा व दुख से जन्म लेती है। जब हम अपनी भावनाओं को अनदेखा करते हैं तो वह हमारे दुख का कारण बनती है। ठीक इसी प्रकार नजरअंदाज किए जाने पर अवसाद एंग्जायटी का रूप ले सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति को हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है कि कुछ गलत होने वाला है। यह घबराहट के दौर पैनिक अटैक होते हैं। एंग्जायटी के दौर में व्यक्ति को हर समय चिंता, डर व घबराहट महसूस होती है। इसके अलावा उल्टी या जी मचलने की समस्या भी महसूस होती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और सांस फूलने लगती है। अगर ऐसा बार बार होता है तो आप साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। जब भी कोई विचार अपने निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है तो उसे एंग्जायटी कहते हैं। विचार हमेशा एक निश्चित स्तर तक ही किया जाना चाहिए। सीमा से अधिक विचार कभी भी नहीं करना चाहिए। जब तक कोई भी विचार आपको परेशान न करे तब तक बस सामान्य है, परंतु जब कोई विचार या सोच निश्चित स्तर से ऊपर जाकर आपको हैरान या परेशान करने लगे तब यह चिंता का विषय है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। एंग्जायटी के सामान्य लक्षण ये है दोस्तों: बेवजह की चिंता करना, हृदय गति में बढ़ोतरी होना, छाती में खिंचाव महसूस होना, सांस फूलना, लोगों के सामने जाने से डरना, लोगों से बातचीत करने से डरना, लिफ्ट वगैरह में जाने का डर कि वापस नहीं निकल पाएंगे, जुनून की हद तक सफाई करना, बार बार चीजों को सही करते रहना, जीवन से निराश हो जाना, ये सोचने कि आप मरने वाले हैं या कोई आपको मार देगा, पुरानी बातों को याद करके बेचैन होना, मांसपेशियों में तनाव बढ़ जाना, फालतू विचारों में बढ़ोतरी होना, बिना कारण के बेचैनी महसूस करना, गैर जरूरी चीजों के प्रति बहुत लगाव होना, जल्दी निराश हो जाना, किसी चीज के लिए अनावश्यक आग्रह करना आदि। दोस्तों, इस एंग्जायटी के कई प्रकार हैं, जैसे सामान्य एंग्जायटी, अनियंत्रित जुनूनी प्रकार, सामाजिक चिंता प्रकार, डर या फोबिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, घबराहट। डियर फ्रेंड्स, नाउ आई विल टॉक अबाउट द रीजंस फॉर एंग्जायटी। ज्यादा चिंता करने लगना, छोटी से छोटी बात को ज्यादा सोचना, और ऐसा आपकी जिंदगी में बार बार होना एंग्जायटी का ही लक्षण है। इसके चलते आप खुद को महत्वपूर्ण कामों को अच्छे से नहीं कर पाते। तनावपूर्ण घटनाएं, कार्य का बोझ, तनाव, अपने किसी प्रिय व्यक्ति का निधन अथवा प्रेमिका से ब्रेकअप जैसी अविश्वसनीय घटनाएं आदि। जिन व्यक्ति के परिवार में मानसिक विकारों से जुड़ी समस्याएं होती रहती है उन्हें चिंता विकार की समस्या जल्दी हो सकती है, जैसे ओसीडी विकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है, थायराइड की बीमारी, दमा, डायबिटीज या हृदय रोग आदि। अवसाद से पीड़ित लोग भी एंग्जायटी की चपेट में आ सकते हैं। जो व्यक्ति लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रहा हो उसकी कार्यक्षमता में गिरावट आने लगती है। इससे कामकाज से जुड़ा तनाव बढ़ने लगता है और फिर एंग्जायटी का जन्म होता है। पीड़ा, गम, मायूसी, उदासी व तकलीफों को भूलने के लिए बहुत से लोग शराब, नशीली दवाएं और दूसरे नशे का सहारा लेने लगते हैं। यकीन मानो, कभी भी ये चीजें एंग्जायटी का इलाज नहीं हो सकता है। नशे का इस्तेमाल समस्याओं को और बढ़ा सकता है।
कुछ लोगों को

पूर्णतः के साथ काम करने की आदत होती है, लेकिन जब यह पूर्णतः की जिद सनक बन जाए तो यह एंग्जाइटी के अधीन आ जाते हैं। यही जिद उन लोगों को बिना वजह की घबराहट और चिंता को जन्म देती है। जब कोई बहुत ज्यादा परेशान होता है तो उसका सहानुभूति तांत्रिक तंत्र बहुत तेज काम करने लगता है, जिसके कारण दिल की धड़कन बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, पसीना आने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और मुंह सूखना शुरू हो जाता है। घबराहट हो जाना, ज्यादा कुछ सोचने पर असहजता और घबराहट होने लगती है, जो कि एंग्जाइटी का ही एक लक्षण है। यह बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे पहले कि ये बड़े डॉक्टर से मिलना जरूरी है। जब हमें ज्यादा थकान महसूस होने लगे तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यह सामान्य फीलिंग है या किसी चिंता की वजह से हो रहा है। यदि इस थकान के कारण सिरदर्द या घबराहट हो तो यह एंग्जाइटी का एक लक्षण है। ज्यादा चिंता करने से नींद नहीं आती और तनाव बढ़ने लगता है। शोध से पता चला है कि जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं उन्हें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयां होती हैं और चिंता से याददाश्त पर भी असर पड़ता है। एंग्जाइटी से पीड़ित लोग बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं। वो बात बात पर गुस्सा और चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, जिससे उनके सोशल लाइफ पर असर पड़ता है। मांसपेशियों में तनाव रहने लगता है, व्यक्ति को चिंता के दौर पड़ने लगते हैं, वो खुद को हर जगह असुरक्षित पाता है। एंग्जाइटी का एक लक्षण यह है कि व्यक्ति सही से सो नहीं पाता, नींद पूरी तरीके से नहीं ले पाता है। नींद में सोते हुए गिर जाना या आधी रात में जाग जाना, ये सब भी एंग्जाइटी के लक्षण है। एंग्जाइटी से पीड़ित लोगों को घबराहट का दौरा पड़ने लगता है, जिसके कारण दिल की धड़कन बढ़ने लगती है और पसीना आने लगता है। जिन लोगों को ज्यादा बेचैनी होती है वो सामाजिक स्थितियों से डरते रहते हैं। उन्हें समाज में उठना बैठना अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोगों को लगता है कि समाज उन्हें और उनकी बातों को अहमियत नहीं देती है। एंग्जाइटी से पीड़ित इंसान कभी भी संतुष्ट का अनुभव नहीं कर पाता है। उसे सदा दुख का एहसास होता रहता है और वो संतुष्ट जीवन का आनंद लेने में असक्षम होता है। व्यक्ति को चिंता किसी भी चीज से किसी भी समय हो सकती है, लेकिन अगर सही समय पर उसका इलाज न किया जाए तो यह अवसाद का रूप ले सकती है और पीड़ित व्यक्ति को घबराहट और चिंता के दौरे पड़ने लगते हैं। हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, परंतु इस समस्या की गंभीरता को कम नहीं समझना चाहिए। अगर एंग्जाइटी के एक भी लक्षण से आप, आपके परिवार का कोई व्यक्ति या जान पहचान का कोई इंसान पीड़ित है, तो सबसे अच्छा यही है कि इलाज के लिए आप किसी अच्छे चिकित्सक, मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक की मदद लें। एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट मेडिकेशन और काउंसलिंग से किया जा सकता है। एंग्जाइटी की समस्या होने पर उसका हल ये नहीं है कि आप उसे अंतिम स्तर मानकर बैठ जाए। हिम्मत करके समस्या का सामना करें। एक ना एक दिन ये एंग्जाइटी आपसे जरूर दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का लम्हे कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

वेल, श्रुति पाठक की आवाज में ये जो ट्रैक है ना, ये फ्रीडम, एडवेंचर और सेल्फ डिस्कवरी की फीलिंग को ब्यूटीफुली कैप्चर करता है। हेलो एंड नमस्ते इंडिया। स्क्रॉल, स्वाइप, क्लिक, अल्फा जनरेशन, टेक सेवी डायनेमिक और आज की दुनिया के यंगस्ट कंज्यूमर्स, उनकी जिंदगी कहीं ना कहीं बंधु इन तीन वर्ड्स, स्क्रॉल, स्वाइप, क्लिक के आसपास ही घूमती नजर आती है। इन्फॉर्मेशन उनके फिंगर टिप्स पर है, दुनिया उनकी स्क्रीन पर है, लेकिन इस डिजिटल स्पीड के बीच कभी कभी जरूरत पड़ जाती है एक छोटे से पॉज की, एक डिटॉक्स की। आकाशवाणी ग्रीन पेपर प्रोग्राम अल्फा जन के आज के एडिशन लेट्स डिटॉक्स में हम बात करेंगे डिटॉक्स फ्रॉम द पास्ट के बारे में, क्योंकि जो हो गया वो सिर्फ एक कहानी थी, जिंदगी नहीं। और कहानी को साथ लेकर चलना जरूरी नहीं होता। बाबू शाह, मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। गुड इवनिंग।

सीरियसली गाइस, ये एक ऐसा रोमांटिक ट्रैक है जिसमें मेलेडी, नज़ाकत और सोलफुल इमोशंस बहुत ही ग्रेसफुली महसूस होते हैं ना। गाना धीरे धीरे दिल में उतरता है और अपनी सॉफ्ट रोमांटिक वाइब से एक टाइमलेस फील क्रिएट करता है। और सबसे खास बात, जगजीत सिंह साहब और आशा ताई का ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल डुएट है। सीरियसली, ये गाना मेरे दिल को छू गया, मैं उसी जोन में खो गई। इनफैक्ट मैं ये भी सोच रही थी कि जगजीत सिंह साहब की जो आवाज़ में जो सुकून और जो गहराई है वो गाने को और सोलफुल बना देती है। और वहीं आशा ताई की सॉफ्ट और ग्रेसफुल वोकल्स भी इस मेलोडी में एक रिफ्रेशिंग स्वीटनेस घोल देती है ना। आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है लेट्स डिटॉक्स, और मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। ऐ जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो जरा ठहरो, मुझे खुद से मिलना है। इस भागते हुए जिंदगी में अपनी धड़कनों को भी सुनना है। बस कुछ लम्हे चुरा कर वक्त से खुद के नाम

करना है। तो आइए दोस्तों, आज कुछ देर के लिए इस फास्ट पेस दुनिया से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर ठहर कर खुद से मिलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कभी कभी खुद के साथ बैठना ही सबसे बड़ी इमोशनल हीलिंग होती है। सो लेट्स डिटॉक्स के आज के एडिशन में हम बात करेंगे कैसे और क्यों कभी कभी हमारी एनर्जी आज काम करने का मन नहीं करता। जी हाँ, हम सोचते हैं ना कि हमारा काम करने का मन नहीं है तो हम क्या करें यही सोचते रहते हैं। और खैर, इसका जो रीज़न होता है वो होता है कि कल की बातों से हम ड्रेन हो जाते हैं, वो पुरानी यादें, अधूरे सवाल और क्यों हुआ के सिलसिले हमारे दिमाग में चुपचाप चलते हैं और बिना वजह थकान महसूस होती है, मन किसी काम में लगता ही नहीं और रेस्ट के बाद भी वो फ्रेशनेस वापस नहीं आती है। तो आज बंधुओं, आप और मैं सेल्फ चेक इन करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा वो गहरा होगा। हम आपसे पूछेंगे क्या आप अब भी उन बातों को पकड़ के बैठे हैं या बैठी हैं जो आपकी लाइफ का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी नहीं है। जी हाँ, क्योंकि आज मैं जो हूँ वो मैं कल के बोझ से क्यों अपने आज को क्यों कल के बोझ से दबा रहा हूँ या दबा रही हूँ, ये आप सोचते तो ज़रूर होंगे। और सबसे ज़रूरी, क्या मैंने खुद को आगे बढ़ने की परमिशन दे रखी है? तो आइए कुछ देर के लिए दोस्तों रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि उन यादों को धीरे से देखते हैं और फिर उन्हें प्यार से रिहा कर देते हैं, क्योंकि जो हो गया वो एक चैप्टर था, पूरी किताब नहीं। और हर चैप्टर को साथ लेकर चलना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कभी कभी छोड़ देना ही अपनी एनर्जी को वापस पा लेने का पहला कदम होता है। फिलहाल ये जो ट्रैक है इसको सुनते हैं, ये बहुत ही अच्छा ट्रैक है, सोलफुल ट्रैक है, तोशी राणा की आवाज है, चलिए सुनते हैं।

ये ट्रैक जो है टाइम के साथ और खूबसूरत लगने लगता है ना, इसका मैजिक है तोची रैना की रॉ सोलफुल वॉइस आपको एक क्वाइट इमोशनल स्पेस में ले जाती है जहां आप खुद से कनेक्ट करते हैं। आकाशवाणी रेडियो पर मैं हूं प्रियंका वर्मा आपके साथ, तो चलिए प्रोग्राम लेट्स डिटॉक्स को आगे बढ़ाते हैं। जो अटका हुआ था दिल में उसे आज रिहा कर दो, हर अधूरी कहानी को खामोशी से अलविदा कर दो, जहाँ रुकी थी जिंदगी वहां से फिर से चलना शुरू करो, तनाव को छोड़कर सब्र और सुकून को अपना घर बना लो। कभी कभी दिल इतना थक जाता है दोस्तों कि समझ ही नहीं आता कि थकान का रीजन क्या है। सब कुछ नॉर्मल होता है, लोग, रूटीन, जिंदगी, फिर भी अंदर एक बोझ सा महसूस होता है, जैसे कुछ तो हुआ है या कुछ छूटा नहीं है जो दिल के किसी कोने में अटका हुआ है। और सच ये है कि वो कुछ अगर पास्ट होता है अक्सर, किसी की बात जो दिल में चुभ गई हो, किसी अपने का दूर हो जाना या अपनी ही कोई गलती जिसका गिल्ट आज तक चलता आ रहा है साथ, हम इन सब चीज़ों को इतना पकड़ कर रहते हैं जिसे अगर छोड़ दिया तो शायद सब कुछ खो देंगे। पर धीरे धीरे ये चीज़ें हमसे हमारा सुकून छीन लेती हैं। छोड़ देने में ही कभी कभी सबसे ज़्यादा सुकून होता है बंधु। ये बात तब समझ में आती है जब आप थक चुके होते हो, सब कुछ संभालते संभालते, सब कुछ फील करते करते। हम सोचते हैं कि छोड़ देना मतलब हार मान लेना है, बट ऐसा नहीं होता है। छोड़ देना एक साइलेंट स्ट्रेंथ है, ये एक्सेप्ट करना कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। लेटिंग गो इज नॉट वीकनेस गाइस, इट्स क्लैरिटी, इट्स अबाउट चूजिंग योर सेल्फ। हम अक्सर पास को इसलिए नहीं पकड़ के रखते क्योंकि वो परफेक्ट था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इनकम्प्लीट था। अनआंसर्ड क्वेश्चंस, अनसेड वर्ड्स, अधूरी इमोशंस हमें उस जगह बांध के रखते हैं। हम सोचते हैं कि शायद एक वो चांस मिल जाए, शायद कुछ वक्त बदल जाए, पर सच ये है कि हर कहानी का क्लोजर मिलना ज़रूरी नहीं होता। कई बार हम कहते हैं कि ये अटका हुआ है, कि काश मुझे क्लोजर मिल जाता, कि ऐसा क्यों हुआ। कई बार नहीं होता दोस्तों वो क्लोजर। हर कहानी का परफेक्ट एंड नहीं होता और हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, और वहीं से शुरू होता है इनर कन्फ्लिक्ट। आप आगे बढ़ना चाहते हो पर दिल पीछे खींचता है, और लॉजिकली समझते हो कि ये ठीक है ना, पर इमोशनली छोड़ नहीं पाते। ये गैप ही आपको थका देता है। डिटॉक्स फ्रॉम द पास्ट का मतलब है इस गैप को धीरे धीरे ब्रिज करना। एक्सेप्टेंस के थ्रू ये मान लेना कि वो हाँ वो हुआ और शायद वैसे ही होना था। फॉरगिवनेस के थ्रू अपने दिल को हल्का करते हो, चाहे दूसरों के लिए या खुद के लिए। और लेटिंग गो के थ्रू आप अपनी एनर्जी को वापस लाते हो, क्योंकि सच ये है कि जहाँ आपकी एनर्जी अटकी होती है वहीं जिंदगी रुक जाती है। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि छोड़ देना मतलब इग्नोर करना नहीं होता, ना ही हार मानना होता है। छोड़ देना मतलब ये समझना होता है कि अब इस बात का आपकी लाइफ में कोई कंस्ट्रक्टिव रोल नहीं है। उसने जो सिखाना था वो सिखा दिया, अब उसे पकड़कर रखना सिर्फ आपको नीचे खींच रहा है। और जब आप छोड़ देते हो तो एक अजीब सी क्लैरिटी आती है। आप देख पाते हो कि आप कितना वेट लेकर चल रहे थे। आपको महसूस होता है कि अंदर स्पेस बन रहा है, और स्पेस में धीरे धीरे सुकून आता है। वो सुकून जो आप बाहर ढूंढते हैं वो एक्चुअली अंदर ही था, बस पास के शोर में उसने दबा दिया था। जिंदगी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये कि हम सोचते हैं पकड़ के रखना हमें स्ट्रांग बनाता है, जबकि कभी कभी छोड़ देना ही हमें आज़ाद करता है। तो शायद आज वक्त है अपनी कुछ पुरानी कहानियों को रिस्पेक्ट के साथ अलविदा कहने का, उन यादों तक सिमट देने का, और अपने आज को फिर से महसूस करने का, क्योंकि छोड़ देने में ही कभी कभी सबसे ज़्यादा सुकून होता है, और वही सुकून आपको वापस आप तक ले आता है। आप तक, जी हाँ, और आप तक आना बेहद ज़रूरी है।

0: जाते जाते एक गल सुन दी जा, लाके कदे आस किसी खास ते ना बैठी, जड़ा लंघ गया वेला इतिहास ते ना बैठी, मुक जाना मैं सुख जाना मैं, फुल जया लैके मेरी लाश ते ना बैठी।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

और पता है इस गाने में रियल मैजिक क्या है, वोकल्स हैं, जहां जैस्मिन और सतिंदर अपनी अलग अलग टेक्सचर्स के साथ एक साथ खूबसूरत इमोशनल कैनवास क्रिएट करते हैं। आपने जब ये गाना सुना होगा तो आपने ज़रूर उन दोनों के वोकल ट्रांजिशन जो इतने मैजिकली हैं, जहाँ एक गाना एक एहसास से दूसरे एहसास में स्मूथली ग्लाइंड करता है ना। आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ, वेलकम बैक गाइस। जो कहानी थी उसे यादों तक ही रहने दो, जो कहानी थी उसे यादों तक ही रहने दो, हर काश की दीवार को धीरे से गिरने दो, दिल के बोझ को आज खुद से रिहा कर दो, आज को जी लो यूं कि हर पल में सुकून भर दो। दोस्तों जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो ख़त्म तो हो जाते हैं पर उनकी आवाज़ हमारे अंदर तक गूंजती रहती है। कभी किसी की बात दिल को चुभ जाती है, कभी अपनी ही कोई गलती सालों तक याद रहती है, और धीरे धीरे ये सब मिलकर इनविजिबल वेट बन जाता है जो हम रोज़ उठाते हैं बिना रियलाइज़ किए। जो हो गया वो कहानी थी, ट्रस्ट मी, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, एक नज़रिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसका रोल पूरा हो चुका है। हर कहानी का एक पर्पस होता है, कुछ सिखाने का, कुछ दिखाने का, या हमें थोड़ा और मैच्योर बनाने का। लेकिन जब हम उस कहानी को पकड़ कर बैठे होते हैं तो वो सीख भी कई बार बोझ बन जाती है। वैसे इस लाइन को अगर साइंटिफिक नज़रिए से देखें तो उसका मतलब है कि मेमोरी एग्जिस्ट पर उसकी इमोशनल इंटेंसिटी को रेगुलेट किया जा सकता है। बंधुओं प्रॉब्लम ये नहीं कि पास एग्जिस्ट करता है, प्रॉब्लम ये है कि हम उसे प्रेजेंट में कैरी करते हैं। पास को रिस्पेक्ट दो और उसमें रहना बंद करो, क्योंकि प्रॉब्लम पास का होना नहीं है, प्रॉब्लम उसका प्रेजेंट में घुल जाना है। जब हम बार बार पुरानी यादों को सोचते हैं, काश के लूप में अटके जाते हैं, तब हम अपने आज को इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों ये काश है ना, ये धीरे धीरे दिल के आसपास एक दीवार बना देता है। आप जीते तो आज में हो पर महसूस कल को करते हो। जब हम पास को लेकर अपसेट होते हैं तो अक्सर हमारे लव्ड वंस हमें कहते हैं मूव ऑन कर जाओ, पास को छोड़ दो। लेकिन सच ये है कि ब्रेन के लिए छोड़ देना एक सिंपल इमोशनल डिसीजन नहीं होता, ये एक बायोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है। साइंस भी यही कहते हैं कि हम बार बार किसी पेनफुल मेमोरी को रिविजिट करते हैं तो ब्रेन उसे और स्ट्रांग बना देता है, न्यूरल पाथवेज और सॉलिड हो जाते हैं और वो फीलिंग बार बार ट्रिगर होती है। इसलिए डिटॉक्स एक इमोशनल नहीं, एक न्यूरोसाइंटिफिक प्रोसेस भी है, जहां आप कॉन्शियसली अपने दिमाग को नए पैटर्न सिखाते हो, जैसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना, सेल्फ कंपैशन और प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। डिटॉक्स का पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस, ये मान लेना कि हाँ वो हुआ और उस वक्त शायद ये बेस्ट डिसीजन नहीं ले पाया मैं, पर कोई बात नहीं, पर मैं इंसान हूँ, परफेक्ट नहीं हूँ। दूसरा स्टेप है फॉरगिवनेस, चाहे दूसरों को या खुद को। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप गलती को जस्टिफाई कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप खुद को उस बर्डन से फ्री कर रहे हो। और जब आप धीरे धीरे पास का वेट छोड़ते हो तो आपको फील होता है कि अंदर स्पेस बन रहा है, वो स्पेस जहाँ पहले रिग्रेट था वहाँ क्लैरिटी, सुकून आ जाता है। आप नोटिस करते हो कि आप ज़्यादा प्रेजेंट में हो, छोटी छोटी चीज़ें में आपको खुशी मिलने लगती है। ज़िंदगी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती बंधु कि आप कभी गलती ना करो या कभी हर्ट ना हो, ज़िंदगी बस ये चाहती है कि आप हर एक्सपीरियंस को एक कहानी की तरह देखो, आइडेंटिटी की तरह नहीं, क्योंकि जो हो गया वो कहानी थी, उसका रोल आपको कुछ सिखाना था, डिफाइन करना नहीं। तो शायद आज वक्त है अपनी पुरानी कहानियों को रिस्पेक्ट के साथ शेल्फ में रख दो, उन्हें यादों तक सिमटने देना है अब आपको, उन्हें अपने बोझ अपने आप पर बोझ ना पड़ने दे, क्योंकि असली जिंदगी अभी चल रही है। इस पल जो आप इस पल है ना, बस इसी में जिंदगी चल रही है, और ये पल तभी खूबसूरत बनेंगे जब आप उस पुरानी कहानियों के साये के बिना जी पाएंगे। आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ।

मातरम, देशभक्ति के एसेंस को रिफ्लेक्ट करता है ये ट्रैक आपने सुना आकाशवाणी रेनबो पर, जहाँ मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। तो चलिए दोस्तों, प्रोग्राम लेट्स डिटॉक्स को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात कर रहे हैं डिटॉक्स फ्रॉम द पास्ट। जो बीत गया उसे यादों तक सिमटने दो, जो बीत गया उसे यादों तक सिमटने दो, हर काश को धीरे से हवा में बिखरने दो, दिल पे जो बोझ है उसे हल्का सा मुस्कुरा कर छोड़ दो, जिंदगी को आज सही रिदम में धड़कने दो। कभी कभी दिल इतना भरा होता है दोस्तों कि वजह भी याद नहीं रहती, कि बस एक हैवीनेस साथ चल रही है। आप मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं, पर अंदर कहीं तो कुछ चटका हुआ ऐसा लगता है, जैसे जिंदगी आगे बढ़ रही है पर दिल अभी भी कहीं पीछे ही रह गया, ऐसा लगता है ना दोस्तों कभी कभी। दोस्तों ये जो पास्ट है ना, ये सिर्फ यादें नहीं होता, ये एहसास होता है किसी की बात जो दिल में चुप गई, कोई डिसीजन जिसका रिग्रेट आज तक साथ चल रहा है, या कोई रिश्ता जो टूट गया पर उसकी आवाज़ आज भी अंदर गूंजती है, और धीरे धीरे ये सब मिलकर एक बोझ बन जाते हैं जो हम रोज़ बिना सोचे इस बोझ को उठाए रहते हैं। कितना अजीब पैराडॉक्स है ना जिंदगी का, कि हम आज में जीते हैं लेकिन महसूस कल को करते हैं। डिटॉक्स फ्रॉम द पास्ट का मतलब भूल जाना नहीं होता, बल्कि उस ग्रिप को धीरे धीरे ढीला करना होता है जो बीते हुए लम्हों ने हम पर भरा दिया है, क्योंकि सच ये है जो हो गया वो एक चैप्टर था, पूरी किताब नहीं। लेकिन हम उसी चैप्टर को बार बार पढ़ते रहते हैं और आगे पढ़ने खोलने की ज़रूरत भी नहीं समझते, इन पर आगे का पढ़ना खोलना ही भूल जाते हैं। पुरानी बातों का वेट सिर्फ इमोशनल नहीं होता बंधु, वो फिजिकल भी होता है। बिना वजह थकान, रेस्ट के बाद भी हैवीनेस और कुछ भी करने का मन नहीं करता वाली फीलिंग, यानी क्रॉनिक स्ट्रेस के कारण बॉडी में फिटीक, लो एनर्जी और मोटिवेशन ड्रॉप होना नॉर्मल है। ये सब साइंस होते हैं कि हम सिर्फ बॉडी से नहीं अंदर से थक चुके हैं, और ये थकान का रीज़न काम नहीं बल्कि वो बातें हैं जिन्हें हम छोड़ ही नहीं पा रहे। हम अक्सर सोचते हैं काश मैं उस वक्त कुछ और कर लेता या कर लेती, काश वो बात अलग होती, लेकिन ये काश ही सबसे बड़ा बोझ बन जाता है, क्योंकि ये हमें एक ऐसे वक्त में बांध कर रखता है जो अब एग्जिस्ट नहीं करता। हम खुद से, आप अभी इस समय आप खुद से पूछिए, क्या ये पुरानी बात मेरे आज को बेटर बना रही है? अगर नहीं तो फिर मैंने इसे क्यों पकड़ के बैठा है, क्यों पकड़ के रखा है? डिटॉक्स फ्रॉम द पास्ट का मतलब है छोड़ देना, फॉरगिव करना, चाहे दूसरों को या खुद को। मतलब ये समझना कि हर कहानी का एंड जरूरी नहीं होता, कुछ कहानियां बस सीख देने के लिए होती है। दोस्तों जैसे ही आप पास्ट का वेट हल्का करते हैं, आप नोटिस करेंगे आपके अंदर स्पेस बनने लगता है, और उस स्पेस में धीरे धीरे सुकून और आने लगता है। वो सुकून जो कभी आप बाहर ढूंढ रहे थे, अब वो आपको अंदर मिलने लगता है। वैसे एक बात है कि डिटॉक्स फ्रॉम द पास्ट एक इमोशनल डिसीजन तो नहीं है, एक न्यूरो साइंटिफिक प्रोसेस भी है। क्या जिंदगी आपसे परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करती दोस्तों, बस ये चाहती है कि आप प्रेजेंट में सच में जिए। तो शायद आज वक्त है पुरानी बातों को यादें तक रहने देने का, उन्हें बोझ ना बनने दे, क्योंकि जो हो गया वो कहानी थी, जिंदगी नहीं। और असली जिंदगी सिर्फ इसी पल है जो चल रही है जब आप हमें सुन रहे हैं। आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ।

सो जाते जाते आपसे इतना कहती हूँ कि डिटॉक्स फ्रॉम द पास्ट, ज़िंदगी को उलझाने नहीं उसे पुरानी बातों के बोझ से आज़ाद करने का एक ज़रूरी कदम है। थोड़ा सा छोड़ देना, थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेना और फिर देखिए दिल खुद ही हल्का महसूस होने लगता है, क्योंकि जो हो गया वो सिर्फ एक कहानी थी, ज़िंदगी नहीं। टेक केयर, स्टे माइंडफुल, स्टे अलर्ट और आज के रिदम में खुद को ट्यून करके देखिए। बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया। कांग्रेस के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तियानिया, खुदीराम टुड्डू और निशित प्रमाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया है।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था

0: नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोईचीशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष महासचिव M.A. बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने चेन्नई में आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 करोड़ रुपए के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धनशोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धनशोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को 147 के बजाय 144 अंकों से हराया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

A very warm good evening आप सभी को, आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी FM Rainbow के साथ। प्रोग्राम वही जिसका हर शाम 5 बजे आप करते हैं इंतजार, क्योंकि हम यहाँ बताते हैं कि अपनी सिटी में जी हाँ क्या हलचल है, क्या कुछ नया है। तो जुड़े रहिए आकाशवाणी FM Rainbow के साथ प्रोग्राम सिटी लाइट्स पे। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आपकी होस्ट दीपांशी।

और भाई इतना वार्म वेलकम आपका क्यों किया है मैंने और क्यों कहा कि वार्म गुड इवनिंग, बिल्कुल बताऊंगी, यही बताऊंगी। बस हमारे साथ अपना साथ बनाए रखिए।

बिल्कुल, इस हवा भाई के साथ आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ, प्रोग्राम सिटी लाइट्स चल रहा है। और भाई आपको इतनी वार्म वेलकम मैंने इसलिए की क्योंकि दिल्ली में कितनी गर्मी है। जी हाँ, ये वो गर्मी वाली ही वार्म वेलकम थी। क्यों है? सबसे पहले बात करते हैं आज के तापमान की। तापमान की बात की जाए तो 35 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो है आज दिल्ली में। और ये जो हमारा आसमां है ना, ये पूरी शिद्दत से हम सभी पर गर्मी बसा रहा है। वेल, अब इस गर्मी से जूझते जूझते हमने भी बहुत तरीके निकाल लिए हैं कि भाई किस तरह से अपने आप को इस गर्मी में बचाया जाए। और अगर एक यूआई की बात करें तो हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आज रुका है 104 पर, और 104 इज इन वेरी पुअर कैटेगरी। तो अपने आप को बचाते हुए अपना दिन इंजॉय कीजिए, वीकेंड इंजॉय कीजिए, खूब मस्ती कीजिए, लेकिन अपने साथ उस मस्ती के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। अब गर्मी कम करने में तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आपको बहुत ही ठंडा ठंडा गाना सुनाती हूँ, सुनिए, क्योंकि ये हमारे साथ साथ हमारी रूह को भी सुकून देगा।

आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ प्रोग्राम सिटी लाइट में। मैं हूं आपके साथ दीपांशी। और अब जब हमने तापमान जान लिया है और ये भी समझ लिया कि भाई बाहर बहुत गर्मी है, 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, लेकिन हम क्यों घर पे बैठेंगे जब वीकेंड है। और ये जो वीकेंड है, पूरे हफ्ते की जद्दोजहद, ढेर सारे काम के बाद ये जो आराम का समय आता है, तो हमें जो ये कुछ पल मिले हैं, इन्हें एंजॉय करना भी ज़रूरी है ना। तो जब एंजॉय करना ज़रूरी है और आप चाहते हैं कि बाहर जाया जाए, घूमा फिरा जाए, वो सुकून के पल, वो प्यार भरे पल अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ बिताया जाए, तो चलिए आपको दो ऑप्शन देते हैं। देखिएगा, अगर इसमें इंटरेस्ट है तो आप यहाँ घूमने जा सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप डांस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप रुक कीजिए इंडिया हैबिटेट सेंटर का, जहाँ पर द ब्लू गॉड इन वेरिड मैनिफेस्टेशन से इसका आयोजन किया जा रहा है। समय रहेगा 7 बजे, और उसके बाद आप जा सकते हैं इंडिया हैबिटेट सेंटर, जहाँ पर एक रंगमंच की प्रस्तुति होगी माधवी। 7:30 से इसका आयोजन किया जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो बिल्कुल जाइए और घूम कर आइए।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

नमस्कार श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। तो श्रोताओं, आज बात होगी पहली आधिकारिक रेडियो पत्रिका द इंडियन लिसनर की। 22 दिसंबर 1935 को पहली आधिकारिक रेडियो पत्रिका द इंडियन लिसनर की शुरुआत के साथ रेडियो ने एक नया कदम उठाया। इस पत्रिका को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस द्वारा प्रकाशित किया गया, जो उस समय भारत में प्रसारण का संचालन कर रही थी। ये केवल एक पत्रिका नहीं थी, बल्कि रेडियो और उसके श्रोताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। इसमें प्रसारण के कार्यक्रमों की जानकारी, कलाकारों से जुड़ी बातें और प्रशासनिक सूचनाएं शामिल होती थीं, जिससे श्रोता रेडियो से और अधिक जुड़ सकें। आगे चलकर यही पत्रिका आकाशवाणी मैगजीन के नाम से जानी जाने लगी, जो ऑल इंडिया रेडियो की आधिकारिक पत्रिका बनी। इसके साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों तक रेडियो की मजबूत पहुंच के लिए हिंदी में सारंग, उर्दू में आवाज, तमिल में वानोली, तेलुगु में वाणी और असमिया में आकाशी जैसी विभिन्न भाषाओं में भी पत्रिकाएं शुरू की गईं। तो ये थी बात द इंडियन लिसनर यानी जो पहली आधिकारिक रेडियो पत्रिका थी उसके बारे में। अगले अंक में हम जानेंगे राजधानी दिल्ली में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कैसे हुई। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एट 90 में। तो फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

जी हाँ, वेलकम बैक. आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ. प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट. सिटी लाइट्स वही प्रोग्राम जिस पर हम आपको देते हैं कि हमारी सिटी में क्या कुछ नया चल रहा है, क्या हलचल चल रही है. तो इसीलिए बस हमारे साथ हमारे रेडियो प्रोग्राम में बने रहिए. मैं हूँ आपके साथ दीपांशी.

आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ, प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स। और अब दिल्ली के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर, वो ये कि अब आप सभी को अपने छोटे छोटे काम कराने के लिए, छोटे छोटे करेक्शंस कराने के लिए एनडीएमसी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एनडीएमसी यानी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद नागरिकों को, सारे ही नागरिकों को एक बड़ी राहत देते हुए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में जो भी सुधार होते हैं या जो भी करेक्शन की उसमें आवश्यकता होती है, उसके लिए जल्द ही एक नई ऑनलाइन फैसिलिटी की शुरुआत करने जा रही है। और ये जो ऑनलाइन फैसिलिटी है, इसकी शुरुआत जो है बहुत जल्दी हो जाएगी एनडीएमसी के ऑफिशियल पोर्टल पर। और इस सुविधा के तहत आप सभी अपने मोबाइल और आधार नंबर का प्रयोग करके घर बैठे ही आराम से प्रमाण पत्र में नाम, जन्म तिथि और जो भी अन्य विवरण हैं उसे अपडेट कर पाएंगे। और देखिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप अपने आधार को और अपने नंबर को यूज़ करते हुए, उसका प्रयोग करते हुए, जो भी आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स या डेथ सर्टिफिकेट्स में अगर कोई भी करेक्शन की आवश्यकता है तो आप इस फैसिलिटी का लाभ उठाते हुए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए इस काम को झटपट कर पाएंगे। और देखिए, इतनी गर्मी में कहीं निकलने की भी जरूरत नहीं है। आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ, प्रोग्राम सिटी लाइट्स में मैं हूं आपके साथ दीपांशी।

0: आप सब जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ, प्रोग्राम चल रहा है रे सिटी लाइट्स। मैं हूं आपके साथ दीपांशी। और आपने बहुत बार ये सुना होगा, रक्तदान कीजिए, मानवता के हित में काम कीजिए, क्योंकि ये माना गया है कि यदि हम अपनी मानवता दिखाना चाहते हैं, यदि हम लोगों के प्रति कंपैशनेट होते हैं और हम कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिससे किसी की सेवा हो सके, जिससे किसी का जीवन संवर सके या किसी का जीवन बचाया जा सके, तो उसमें जो रक्तदान है, ब्लड डोनेशन है, उसे सबसे सर्वोपरि माना गया है, सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वेल, इसी के चलते एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत ही अलग एक कैंपेन की शुरुआत की है, या कहें एक ड्राइव की शुरुआत की है। हम बात कर रहे हैं टीम गिविंग इज लिविंग फाउंडेशन की, और इस फाउंडेशन की एक नई पहल है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो उस पहल के बारे में बताने के लिए हम जुड़े हैं आज मिस्टर जी एस कपूर के साथ, जो कि डायरेक्टर हैं गिविंग इज लिविंग फाउंडेशन के। सर, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद
0: जी। जैसे कि अभी कार्यक्रम में मैंने कहा कि यदि आपको किसी की सेवा करने का एक अवसर आपके जीवन में मिलता है, यदि किसी का जीवन बचाने का एक अवसर आपके जीवन में मिलता है, तो शायद उससे बड़ा मानवता को कोई कार्य नहीं हो सकता। तो सर, हमें इस पहल के बारे में बताएं, क्या खास कल आप आयोजित करने जा रहे हैं, क्या है ये इनिशिएटिव, क्या है ये ड्राइव?
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गिविंग इज लिविंग करता क्या है।
0: जी,
1: हमारी जो फाउंडेशन है वो ब्लड डोनेट करती है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी।
0: जी,
1: आज वो समय आ गया है कि जब हमें भूख लगती है हम खाना मंगाते हैं, जब हमें जरूरत होती है हम चीजों को पोर्टल करते हैं।
0: जी,
1: ठीक वैसे ही ब्लड की भी जब जरूरत होती है तो ब्लड मिलता नहीं है।
0: जी,
1: तो हमारी संस्था ने आज से 17 साल पहले ये सोचा कि क्यों ना ब्लड जब चाहिए हो तब मिल जाए। तो उस पहल को ध्यान में रखते हुए इस संस्था का निर्माण किया गया, और हमारा मकसद था वक्त पर रक्त, ब्लड ऑन डिमांड।
0: राइट,
1: और हम जब भी जहां जरूरत होती है पूरे भारत में हम वहां

0: डोनर के थ्रू, वॉलंटियर डोनर के थ्रू जो हम ब्लड डोनेट करते हैं।
1: जी
0: पर पिछले कुछ सालों में हो रही परेशानियों को देखते हुए, कमियों को देखते हुए, कहीं ना कहीं मन में आया कि 140 करोड़ लोग होने के बाद भी शायद हम उतने उत्तेजित नहीं है, उतने प्रोत्साहित नहीं है ब्लड डोनेशन को लेकर। तो हम कल जो मदर्स डे आ रहा है उस पे एक मिसाल कायम करना चाहते हैं नारी शक्ति द्वारा, माताओं द्वारा, कि अगर हम डोनेट कर सकते हैं तो भारत के 140 करोड़ लोग क्यों नहीं कर सकते।
1: जी, अपने श्रोताओं को ये बताऊं कि ये जो कल जिस ड्राइव के आयोजन के बारे में सर हमें बता रहे हैं, ये ऑल विमेन्स ब्लड डोनेशन कैंप है और जिसका नाम भी बहुत खास है, इसका नाम रखा गया है रक्तांजलि। रक्तांजलि के बारे में जी जिस प्रकार से आप बता रहे थे, बताइए इस ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में।
0: देखिए, रक्तांजलि जब हम कोई आहुति देते हैं, जब हम परमात्मा को फूल चढ़ाते हैं, तो सबसे बड़ी चीज जो आहुति दे सकते हैं, सबसे बड़ा जो योगदान दे सकते हैं किसी की जिंदगी में, वो है जीवन का योगदान। क्योंकि जीवन से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। खाना देंगे खा लेगा, कपड़े देंगे पहन लेगा फट जाएंगे, खाना और फिर चाहिए, पर जीवन देने के
1: जी।
0: तो रक्तांजलि के थ्रू जो है कल हम ये मैसेज दे रहे हैं कि सिर्फ कल आपने कैंप देखे होंगे जहाँ पे मेल फीमेल दोनों डोनेट करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: पर कल पहली बार ऐसा होगा कि सिर्फ वुमेन डोनेट करेंगी। छोटी 18 साल से लेकर 50 55 साल की जो लेडीज हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो आकर डोनेट करने वाली हैं कल।
1: तो सर, ये ऑल विमेन्स डोनेशन कैंप रखने के पीछे कोई खास मकसद, क्यों केवल महिलाओं को चुना गया? जैसे कि हम सभी जानते हैं कल मदर्स डे है, तो इस खास मौके पर क्यों चुना गया केवल महिलाओं को, कि महिलाएं जो है आगे आएं और इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग लें?
0: देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपना परचम नहीं लगाया।
1: बिल्कुल।
0: तो अब जब सब जगह महिलाएं हैं तो फिर रक्तदान में क्यों नहीं? और अगर रक्तदान में महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो वो एक मिसाल बनेगा हमारे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, कि हम आगे आ सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं आ सकते। हम सब लोग अगर मिलकर प्रयास करेंगे तो भारत में खून की कमी से कोई भी नहीं मरेगा, किसी की भी जान नहीं जाएगी।
1: जी।
0: और कल जो प्रयास है वो मदर डे है, माँ जीवन देती है, जीवन देने के साथ साथ जीवन बचा भी सकती है।
1: बिल्कुल,
0: ये मैसेज हम देना चाहते हैं।
1: जी, तो जीवन देने के साथ साथ जो हम महिलाएं हैं वो किसी के जीवन की रक्षा भी कर सकते हैं और एक ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं जहां जब जरूरत पड़े तो उस व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सके।
0: जी बिल्कुल।
1: इस कार्यक्रम के बारे में जितनी महिलाएं, जितने श्रोता हमें सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स दीजिए। कहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है, किस तरह से भाग लिया जा सकता है, क्या समय रहेगा, कहाँ उन्हें पहुंचना है?
0: सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक है जी।
1: जी,
0: नॉर्थ दिल्ली में पीतमपुरा एक जगह है, वहाँ वेस्ट एंक्लेव में माँ जगदम्बा टेंट।
1: जी,
0: अगर आप गूगल पे डालेंगे माँ जगदम्बा टेंट तो वहाँ आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय है जी। इसमें वुमेन्स ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ मेडिकल चेकअप भी है
1: जी।
0: बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जो दिनचर्या में वुमेन्स जो है वो करवाती नहीं है, चाहे वो मैमोग्राफी हो, कैंसर हो, आई हो, डेंटल हो, और बहुत सारे चेकअप्स हैं। तो वो चेकअप जो हम लोग यदा कदा करवाते हैं या कभी उसे भूल जाते हैं, तो वो टेस्ट भी कल फ्री है, तो आप सब लोग वो टेस्ट भी जो है वो आ सकते हैं, उन टेस्ट को भी करवा सकते हैं।
1: तो ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ उनकी सेहत की सुरक्षा को इंश्योर करते हुए मेडिकल हेल्थ चेकअप का भी वहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है। तो अगर आप इससे थोड़ा सा भी प्रेरित हुई हैं सुनकर कि इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, वहाँ जाइए और ब्लड डोनेट कीजिए। यदि आपको लगता है कि रक्तदान किसी भी कारण की वजह से आप नहीं कर पाएंगी और किसी तरह की कोई दिक्कत है, किसी तरह की कोई डिजीज़ है, एलिमेंट है, तो आप जाइए। एटलीस्ट अपना जो हेल्थ चेकअप है, जिसे शायद हम बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं और कामों के चलते, जीवन के जद्दोजहद के चलते शायद उसी को सबसे पीछे छोड़ देते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो यहाँ जाइए और अपना हेल्थ चेकअप कराइए। और कुछ इस कार्यक्रम के बारे में बताना चाहेंगे? हेल्थ चेकअप
0: इसके, इसके अलावा जैसे जो लोग यहाँ आएंगे उनके लिए मेहंदी, टैटू और पैरो कार्ड, एस्ट्रो, ये सब फ्री सर्विसेज भी वहाँ अवेलेबल है कि जितना समय वहाँ रहेंगे तो इन चीजों में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
1: क्या बात है। तो आपने मदर्स डे को बहुत खास ऑलरेडी बनाने के लिए ये ड्राइव का आयोजन किया है।
0: बिल्कुल, ये मेला है जी, ये मेला माओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए है। और साथ ही साथ आपको वहाँ कुछ ऐसी सुपर लेडीज भी मिलेंगी जिन्होंने सोशली या इकोनॉमिकली अपने बिजनेस में, अपने स्टार्टअप में कुछ अचीव किया है पिछले कुछ सालों में
1: जी।
0: तो जिनको अभी तक समाज ने अनदेखा कर रखा था, हम उनको वहां पर अवार्ड भी देने वाले हैं, सुपर लेडी अवार्ड्स।
1: तो सुपर लेडीज जो शायद अनसंग हीरो रही हैं और आज आपके सामने आएंगी और

0: अपनी उस सशक्तिकरण की, उस एम्पावरमेंट की जो कहानी है वो आप सबके सामने रखेंगी। तो इस कार्यक्रम का हिस्सा ज़रूर बनिएगा, ज़रूर जाइए। केवल इसलिए नहीं कि शायद आपको सिर्फ ब्लड डोनेशन के लिए जाना है, पर कल का दिन आप सभी के लिए बहुत खास है। सभी महिलाएं, बच्चे जो सुन रहे हैं, उन सभी के लिए कार्यक्रम बहुत खास है, कल का दिन बहुत खास है। जाइए, इस दिन को एक यादगार दिन बनाइए। सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेरों शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के लिए।
1: धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अपने भाइयों को भी कहूंगा कि अपनी अपनी वाइफ को, अपनी माताओं को लेकर आए, बहनों को लेकर आए, ताकि ये काम जो है हम जो कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो सके। माँ जगदम्बा टेंट, गिविंग लिम फाउंडेशन, आप आइए, हमारे साथ जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। एंड विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट इस कार्यक्रम के लिए। हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं कि कार्यक्रम जितनी सफलता आप सोच रहे हैं उतना ही ये सफल हो, और हम कहीं ना कहीं किसी के जीवन का संरक्षण करने में, कहीं ना कहीं किसी के जीवन को बचाने में हम ये योगदान दे पाए। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू। थैंक यू।

आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ, प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स। अभी अप्रैल में हमने देखा कि कुछ बेमौसम बारिश हुई और इस बारिश ने मौसम को ज़रूर ठंडा कर दिया, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं जो इस बारिश की वजह से हो सकती हैं वो है मॉस्किटोज़ ब्रीडिंग और उसकी वजह से होने वाली कुछ बीमारियां। जी हाँ, मैं जिन बीमारियों के बारे में बात कर रही हूँ वो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं, जिसे हम मच्छर जनित बीमारियाँ भी कहते हैं, और जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। अब दिल्ली नगर निगम ने MCD ने इसकी व्यवस्था करने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए हैं और इसकी व्यवस्था को थोड़ा सा और सुदृढ़ कर दिया है। अब अगर नगर निगम के इस निर्देश की बात की जाए तो अब दिल्ली में कुछ क्षेत्रों में, विशेष रूप से वो क्षेत्र जो भीड़भाड़ वाले हैं, जैसे कि हमारे मार्केट्स हैं जहां पर लोगों की बहुत भारी भीड़ रहती है, बाज़ार हैं, कुछ धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर लोग बहुत अधिक संख्या में जाते हैं, इन इलाकों में अब जो फॉगिंग है उसको प्रति दिन हर 15 दिन के बाद नियमित तौर से किया जाएगा। जी हाँ, अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसे बढ़ा दिया गया है, हर 15 दिन में नियमित फॉगिंग की जाएगी ताकि इस तरह की बीमारियों को फिर से बढ़ने से रोका जाए। जो अप्रैल 2026 में बेमौसम बारिश हुई है उसके कारण जो मच्छरों की ब्रीडिंग है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है, और जिसे रोकने के लिए निगम के 4100 से अधिक जो कर्मचारी हैं, MTS कर्मचारी हैं, वो हर घर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। तो अब इन साइट्स पर, कुछ साइट्स पर, इन इलाकों में, बाजारों में, रिलीजियस साइट्स पर फॉगिंग जो है उसे बढ़ा दिया गया, उसकी फ्रीक्वेंसी को, तो हर 15 दिन में आप देखेंगे वहाँ पर फॉगिंग होते हुए, ताकि इन बीमारियों को की रोकथाम की जा सके, उन्हें बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन उसके साथ साथ हम सिटीजन्स की, हम नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना जो योगदान है उसे भी अच्छे से दें। कैसे दे सकते हैं? आप सभी को देखना होगा कि कहीं पर भी पानी जो है वो रुके नहीं। आपके घर में कूलर है, गमले हैं या पानी की जो टंकियाँ हैं, उन्हें सप्ताह में, जी हाँ वीक में कम से कम एक बार ज़रूर साफ कीजिए, और उसमें जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं जो पर्याप्त मात्रा में स्टॉक की गई हैं, उपलब्ध हैं, प्लीज़ उन दवाइयों का प्रयोग कीजिए, और ये इंश्योर कीजिए कि कहीं पर भी ये जो पानी है ये रुके नहीं।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ। प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स, और सिटी लाइट्स में आज की आखिरी बट इम्पॉर्टेंट खबर। भारत सरकार ने 2026 में 4 नए लेबर कोड्स को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है, जिसमें से अब जो पर वीक का वर्किंग आवर्स है, साप्ताहिक काम है, उसके घंटे भी तय कर दिए गए हैं। तो इसकी जो मैक्सिमम कैपिंग है वो 48 आवर्स यानी 48 घंटे तय की गई है। और इन नियमों का, ये जो लेबर कोड्स बनाए गए हैं या जो लेबर लॉज बनाए गए हैं, इसमें जो भी संशोधन किया गया है, चेंजेस किए गए हैं, इसका मकसद जो है वो है कि जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी कार्यरत व्यक्ति हैं, उनके कार्य जीवन सुरक्षा यानी वर्क लाइफ बैलेंस का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, और उनकी जो हेल्थ है या उनकी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, उसमें सुधार किया जाए। अब यदि कोई भी कर्मचारी अब 48 घंटे से ऊपर काम करता है, अधिक काम करता है, तो उसके लिए उन्हें जो भुगतान है वो भी किया जाएगा। कोई भी कर्मचारी अब बिना ओवर टाइम के एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकता। यदि 48 घंटे से अधिक काम किया जाता है तो कर्मचारी को उसके सामान्य घंटे के वेतन का दुगना भुगतान किया जाएगा। तो ये बताना आपको ज़रूरी था कि इस तरह का नया जो बदलाव है वो आ गया है लेबर कोड में। इस तरह का जो लेबर कोड आए हैं नए, उसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया है।

और अब समय आपसे विदा लेने का जाना इसलिए है क्योंकि अगली बार फिर से आपसे मिलने के लिए आना है, लेकिन इस खूबसूरत गाने के साथ साथ एक और खूबसूरत शख्सियत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। मोक्षी आ चुकी हैं लेकर प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स, और अपने मैसेजेस को मोक्षी के साथ कीजिएगा इंजॉय, और अपना रखेंगे बहुत अच्छे से ध्यान। आज वीकेंड है, आज इंजॉय कीजिए, कल इंजॉय कीजिए, और उसके बाद हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट वीक अहेड। टेक केयर, गुड बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रामाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविन्द्र नाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर

पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एमी बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान पीएमजीवाई के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवी ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी
1: आ गए हैं रेनबो पे आपका प्रोग्राम लेके MMM मैसेज मसाला मिक्स और मैसेज मसाला मिक्स लेकर के आइए एक और M यानी मोक्षी आपके दोस्त। और भाई आज प्रोग्राम में क्या होगा खास, प्रोग्राम में खास ये होगा कि मैं आपसे मैसेजेस इनवाइट कराऊंगी कि आप मेरे साथ अपने मैसेज साझा करें जिसमें अल्फाज होंगे आपके और आवाज मेरी। तो आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है कि भाई हमारे घर में जितने भी हमारे छोटे भाई बहन, घर में बच्चे हमसे छोटे, जिनके बचपन को हम साझा करते हैं, जिनके बचपन को हम देखते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसकी कोई ना कोई मेमोरी होती है, याद होती है जो हमारे चेहरे में कभी भी मुस्कान ला सकती है, या कभी उससे रिलेटेड कोई डिस्कशन होता है ना तो वहाँ एकदम से वो याद आ जाता है कि हाँ ये मेरे छोटे भाई ने भी किया था, या ये मेरी छोटी बहन ने भी किया था, या मेरे भतीजे ने किया था, या मेरी बेटी ने किया था, या मेरे बेटे ने किया था। तो ये जो प्यारी सी मेमोरीज हैं बचपन की हमारे घर में, हमारे से छोटे जो बच्चे हैं जो पल रहे हैं, जिनकी हम बचपन को अपनी नज़र से बहुत करीब से देख रहे हैं, वो वाली मेमोरीज हमारे साथ साझा करिए। और साझा करने के लिए नंबर है 9868107070।

रुपए। मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, 9868107070 पे आप फटाफट मुझे मैसेज भेज दें, क्योंकि मैं रेडी हूँ आपके मैसेजेस पढ़ने के लिए। आगाज करते हैं एक खूबसूरत गाने के साथ।

इससे खूबसूरत और कौन सा गाना हो सकता है इतने खूबसूरत से प्रोग्राम का आगाज करने का, है ना। इतना सुंदर गाना है ये। तो चल के अपने प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि ऐसी कौन सी मेमोरी है आपके दिमाग में, आपके घर में आपसे छोटे जो बच्चे हैं जिनका बचपन आप देख रहे हैं या आपने देखा है, उनसे जुड़ी कोई मेमोरी, शरारती मेमोरी, प्यारी सी मेमोरी जो बातचीत में कभी भी सामने आ जाती है और जिसके बारे में बात करके आपके चेहरे पर भी एक बहुत खूबसूरत सी मुस्कान आ जाती है। तो अपनी प्यारी प्यारी यादें

अपनी प्यारी प्यारी बातें हमारे साथ शेयर करिए 9868107070 पे। और मैं हूँ आपकी दोस्त मोक्षी। हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि एक गाना और सुन लेते हैं, उसके बाद मैसेजेस लेते हैं ढेर सारे।

प्रोग्राम चल रहा है MMM और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मोक्षी और पूछ रही हूँ आज आपसे कि हमारे साथ साझा करिए अपने घर में अपने आसपास उन छोटे छोटे बच्चों की मेमोरीज जो उनकी बचपन की हरकतें आपने देखी हैं, वो बातें वो यादें जो आपके चेहरे पे ले आती हैं एक छोटी सी स्माइल। मैसेजेस हमारे पास बहुत आ गए हैं और मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक हो गया है, लेकिन मैसेजेस तो आ ही रहे हैं। पहला मैसेज मैं लेती हूँ ये गाज़ियाबाद से, रवि बताते हैं, राहुल अपने छोटे भाई के बारे में वो बता रहे हैं कि राहुल जब स्कूल में अगर छुट्टी हो गई, रेनी डे हो गया, तो वो उनके छोटे भाई की हैबिट थी कि वो घर वापस आने के बाद सबसे पहले रोते रोते लंच बॉक्स फिनिश करता था ये कह के कि छुट्टी क्यों हो गई, एज इफ वो स्कूल सिर्फ खाना खाने जा रहा है छोटा बच्चा। इतनी क्यूट बात है ना ये। अरे लॉट्स ऑफ लव टू राहुल, थैंक यू रवि जी ये मैसेज शेयर करने के लिए। अगला मैसेज हम लेते हैं, ये मैसेज है अनिल शर्मा जी का सरिता विहार से लिख रहे हैं कि मेरे छोटे नाती रुद्र हंसकर और शैतानी से कई बार तुतलाते हुए नाना नानी बोलता है, और वो नाना नानी तुतला के इसलिए बोलता है क्योंकि अभी वो सिर्फ 19 माह का है और वीडियो कॉल भी अलग अलग तरह की शक्ल बना करके बोलता है, और उसकी यही प्यारी बातें हमारी ज़िंदगी की खुशी और जड़ी बूटी हैं। क्यों नहीं होगा। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग दिस मैसेज। और अगला मैसेज दानिश जी लिखते हैं कि गाने अच्छे हैं, प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, तो भाई हमें मैसेज भी भेज दिया आप ज़रूर इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो दानिश जी जो खटौली से हैं, मैं उनका मैसेज ज़रूर लूँगी। और नेक्स्ट मैसेज है कि अगला मैसेज लिख रहे हैं कि ये छोटे छोटे बच्चों के खूब मैसेजेस आ रहे हैं, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। इनकी नातिन 2 साल की हो गई है, ये मैसेज है स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से, ये लिख रहे हैं कि इनकी नातिन 2 साल की हो गई है और वो डांस बहुत करती है और उछल उछल कर और बहुत सारी शक्लें बनाती है, और उसकी ये डांस करना और उससे वीडियो कॉल पर बात करना यही इनकी ज़िंदगी की लाइफ लाइन है। क्यों ना हो बिल्कुल। और बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, इसलिए जब तक बच्चे छोटे हैं ना तब तक उनकी शरारतें खूब सारी देख लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, रख लीजिए अपनी मेमोरी में, पता नहीं कहाँ आपको किस स्ट्रेस में वो आपके चेहरे पे स्माइल लेकर के आ जाए।

प्रोग्राम चल रहा है MMM और आप सुन रहे हैं मोक्षी को. और मोक्षी क्या बोल रही है? वो सिर्फ बोल रही है जो आप उसे बुलवा रहे हैं, यानी आपके मैसेजेस वो पढ़ रही है. तो चलिए अगला मैसेज लेते हैं. यस, अगला मैसेज आया है जो लिखते हैं अमरावती महाराष्ट्र से. वो लिखते हैं कि मेरे परिवार में, मैं अपने परिवार में सबसे छोटा बेटा हूँ और मैंने अपने गाँव में मेरे रिश्तेदारों के जो बच्चे हैं वो काफ़ी करीब से देखे हैं और उन बच्चों को मैंने कंधे पे बिठा के खिलाया है और बहुत उनके साथ इंजॉय करा है. और ये भी ये आगे लिखते हैं कि अब वो सारे बच्चे ना बड़े हो गए हैं, अब वो साथ के लगते हैं. यही तो खुशी है ना बड़े होने की. बचपन ऐसे ही झट से गुजर जाता है और जब वो गुजरता है तो दे जाता है प्यारी प्यारी यादें. ये हैं पंकज अमरावती महाराष्ट्र से. और अगला मैसेज है मेरी नन्ही सी बेटी सानिया नाज. ये है सरफराज आलम जोकीहाट दर्शन बाज़ार अररिया बिहार से. ये लिखते हैं कि मेरी बेटी शरारत करती है और बहुत प्यारी सी मुस्कान है, और अगर मैं कभी भी उदास बैठा रहता हूँ तो चुपके से आकर के मेरे गालों पे हाथ रख के कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना. इतनी प्यारी सी बात है. और ये आगे लिखते हैं, जैसे मुझे हंसी आ गई और खुशी मिल गई इस बात को सुन के. वैसे सोचिए उनके पिता को कैसा लगता होगा. फिर वो लिखते हैं उसकी मासूमियत देख करके मेरी सारी थकान उतर जाती है. दैट्स सो सो सो स्वीट एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग this. और रंजीत कुमार मंडल सिकटी अररिया बिहार से लिखते हैं कि मेरे दोनों भतीजे, ध्यान से सुनिएगा, ये मैसेज है कुछ खास. वो लिखते हैं मेरे दोनों भतीजे जो कि अपनी मम्मी, जब उनकी मम्मी उनको मारती है पीटती है तो वो गली गली भागते हैं, और उनको देख करके मुझे अपना बचपन याद आ जाता है जब मैं अपनी मम्मी से पिटा करता था. वाह क्या बात है. यही तो बात है ना, जब आप बच्चों को आसपास आप देखते हैं, उनको आप अच्छे से जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता चलता है उनमें कितनी शरारत भरी. और पता है इतनी सारी शरारत

बातें, शरारती बातें सुनकर के मुझे भी एक लड़की जो कि दिमाग से एकदम बच्ची ही है, उसका नाम है आवृति, जो मेरे ही आसपास रहती है और बहुत शरारती है भाई। मैं उसके मैसेज तो नहीं बोल सकती क्योंकि मैं तो प्रेजेंटर हूँ, लेकिन ये सारे मैसेजेस देख करके मुझे उसी शैतान बच्ची की याद आ रही है, आवृति की याद आ रही है। आप लोग जल्दी से मैसेज करिए मुझे 9868107070 पे। आप सुन रहे हैं MMM।

वाओ, व्हाट अ सॉन्ग। और इस गाने के साथ ही साथ हम चलते हैं आगे, और आज का टॉपिक है कि आप मुझे बता रहे हैं, अपनी यादें साझा कर रहे हैं अपने परिवार के उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की मेमोरी की, जो आपने अपनी आंखों से देखी है, उनकी बचपन के वो प्यारे प्यारे पल जो आपके लिए खुशनुमा यादें बन चुके हैं और जो आपके चेहरे पर कभी भी ले आते हैं मुस्कान। आप कर रहे हैं मुझे मैसेज, नंबर है 9868107070। तो फटाफट करिए मुझे मैसेज, और अब मैं मैसेजेस लेना शुरू करती हूँ। बेहतरीन प्यारे मैसेजेस आए, एक आध मैसेजेस मैंने पढ़ने की कोशिश भी करी तो

बहुत हंसी आ रही थी तो फिर मैंने सोचा सबके साथ ही पढ़ा जाए, अकेले क्यों हंसे। अगला मैसेज है प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से। वो लिखते हैं कि मेरी दीदी की छोटी बेटी, उसको स्कूल लेने जाता हूँ और अगर बारिश होती है तो वो खूब कीचड़ में खूब कूदती है, अपने कपड़े ख़राब करती है, मेरे कपड़े ख़राब करती है और वो उससे झूले से एकदम चिपक जाती है और घर आने से एकदम मना करती है और उसकी आदत ये प्यारी प्यारी ज़िद मुझे बहुत बहुत बहुत याद आती है। वेरी क्यूट। बारिश में तो मुझे लगता है बच्चे तो मतलब उन कीचड़ में कूदना, व्हाट अ शॉक, ये तो मुझे लगता है सब बच्चों का होता ही होता होगा। और चलिए अगला मैसेज है ये मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैंप कीर्तिनगर न्यू दिल्ली से बोल रहे हैं कि पहला गाना बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, आपको सारे गाने अच्छे लगने चाहिए थे, मैंने बहुत चुन के गाने लगाए हैं आपके लिए, सुनिए आप पसंद करिए, बहुत सुंदर गाने। तो एक बता रहे हैं कि ये बचपन की मेमोरी है कि एक बार ये लुका छुपी खेल रहे थे तो एक बच्चा छुप गया और शायद उस बच्चे को वहाँ पर नींद आ गई और ये सब के सब ढूंढते रहे परेशान हो गए और वो उस बच्चे की नींद जब खुली है 2-3 घंटे के बाद, तब वो आँखें मलता हुआ बाहर आया तो सब खुश भी हो गए कि कहाँ खो गया मिल गया, लेकिन गेम को कैसे ट्रेजेडी में बदल दिया छोटे से इंसिडेंट्स ने। थैंक यू इम्तियाज जी, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। नवलू वरक महाराष्ट्र से बोल रही हैं, ये लिख रही हैं कि मैं गोवा से हूँ और रेनबो प्रोग्राम अच्छा लगता है और आपने हमें बताया कि गोवा बड़ी खूबसूरत जगह है, वो तो है बिल्कुल है, लेकिन आप हमें टॉपिक से रिलेटेड मैसेज पढ़िए, मुझे बहुत मज़ा आएगा आपका मैसेज पढ़ने में। और अगला मैसेज है बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, ये नीमराना से शैलजा जी लिखती है नीमराना से कि मेरी बेटी जब 2 साल की थी तो फ्रिज का दरवाज़ा पकड़ के लटकती थी, फिर छोटी बेटी हुई वो भी यही हरकत करती थी और अब उनकी ये बातें सोच करके बहुत हंसी आती है क्योंकि बड़ी वाली बेटी की शादी हो चुकी है और छोटी वाली बेटी भी अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है, इतनी प्यारी बात है। अगला मैसेज है गोवा शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता जी, वो लिखती हैं कि 3 साल की भतीजी है, वो केवल रात में मेरे भाई के घर जाती है सोने के लिए, बाकी समय वो यहीं रहती है, मुझसे ही सारी फरमाइशें करती है, भाई क्यों ना करें आप प्यारी बुआ जो है ना। और लिखती है कि अगर कुछ हो जाता है, शिकायत करती है तो मुझे झूठ मूठ के सबको डांट भी पड़ती है, सबको डांटना भी पड़ता है मुझे, दैट्स सो क्यूट, तभी तो आप कहलाएंगी क्यूटी क्यूटी बुआ, प्यारी प्यारी बुआ। तो दोस्तों आप मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं 9868107070 पे और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मोक्षी।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पताका चाय, गजब का स्वाद।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मोक्षी। और हम लोग आज मैसेजेस ले रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो हमारे घर में हैं उनकी बचपन की प्यारी मेमोरीज या उनकी शरारतों पे। और हम मैसेज लेते हैं। अगला मैसेज है, यस अगला मैसेज, गुड इवनिंग मैम, ये गंज द्वारा से समशुल कमर राही लिख रहे हैं कि एक बार एक शादी में गए हुए थे और उनका भतीजा तबीश खान भी साथ में थे और वो हॉल में पहुंचे और वहाँ ढेर सारी खाने की चीज़ें लगी हुई थी, तो उनको उन्होंने एक अपने भतीजों को उन्होंने एक गुलाब जामुन या रसगुल्ला दिया, वो उसने खा लिया। तो फिर उसने ये भी पूछा आगे कि ये जितनी चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं बूफे में वो ख़रीदी जाएंगी या वो फ्री में है। तो फिर उनसे बताया गया कि ये तो फ्री में है, तो फिर वो भागे सब कुछ खाने के लिए तुरंत। प्यारी सी मेमोरी है, नाइस मेमोरी। थैंक यू शमशुल जी, थैंक्स अलॉट। गुड इवनिंग रजनी शर्मा जी मैसेज लिख रही हैं, छह महीने का भतीजा है, उसने अभी अभी मोमेंट करना सीखा है। अच्छा, और हाँ अगले दो दिन, हाँ वो बता रही हैं आगे कि कुछ बीमार है अभी बच्चा और हम सब की दुआएं हैं भाई, ज़रूर ज़रूर ज़रूर जल्दी से वो ठीक हो जाए। ओके, अगला है हरियाणा से पुलिस सिपाही के पद पर घर से 150 किलोमीटर दूर तैनात हूँ। इनका नाम मैं पहले पढ़ना चाहूँगी, इनका नाम है गाँव ढाणी कुतुबपुर तहसील व जिला झांसी से रामधारी अवाना। रामधारी अवाना जी लिखते हैं कि मैं

बहुत मैं दूर रहता हूँ अपनी फैमिली से, और इनकी दो बेटियाँ हैं, और जो तुतली तुतली आवाज़ में मम्मी पापा कहती हैं और बाल कविताएँ सुनाती हैं, तो ये बताते हैं कि वो कविताएँ सुनना या उनका वीडियो देखना, उनसे वीडियो कॉल पे कभी कभी बात करना, यही इनको बहुत सुकून दे देता है और आगे बढ़े जाने के लिए बहुत हिम्मत देता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रामधारी जी, अपना ये खूबसूरत सा मैसेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और

सारा प्यार हमारी तरफ से भी। और अगला मैसेज है, मैसेजेस तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैसेज अगर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो आप समझ रहे हैं ना, हमारा जो बात करने का तरीका है वो भटक जाएगा, इधर से उधर चला जाएगा, इसलिए आप टॉपिक पे रह करके हमें मैसेज करिए। मैसेज करना है आपको 9868107070 पे।

मैसेजेस आ रहे हैं ढेर सारे, और क्यों ना आए भाई प्रोग्राम जो आपका चल रहा है एमएमएम। और अगला मैसेज मैं लेती हूँ भवनेश फ्रॉम अशोक विहार दिल्ली से लिखते हैं। टॉपिक आज का बहुत अच्छा है और वो लिखते हैं कि आई हैव सम मेमोरीज रिलेटेड टू माय सिस्टर व्हेन शी वाज अ स्मॉल। वो छोटी सी बच्ची थी तो वो स्टूडेंट और टीचर वाला गेम खेलती थी और इनको अपना हेल्पर बनाती थी कि भाई टीचिंग में हेल्प करो हमारे साथ। तो बता रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने उनकी रिकॉर्डिंग परफॉर्मेंस देखी और फिर वो बचपन की मेमोरी में वापस लौट गए, उस बच्चे की बचपन की मेमोरीज में, और जिसने उनको दी ढेर सारी खुशियाँ। है ना, अच्छा लड़कियों का ये कोई शौक होता है ना बचपन में।

0: एकदम टीचर सब बन जाते हैं, सारी छोटी बच्चियों को मैंने देखा है, खूब टीचर बनते हैं, खूब टीचर बनते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ये खूबसूरत सा मैसेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम रिकी है। जब छोटा था टीवी देख रहा था तो, अच्छा ये मैं पहले बता दूं कि ये जो मैसेज ये लिख रहे हैं ये उस वक्त का मैसेज है जिस समय ब्लैक एंड वाइट टीवी या कवर वाला टीवी चलता था जिसमें ऊपर एंटीना भी होता था। तो ये बता रहे हैं कि एक दिन अचानक से पिक्चर कुछ हेजी हो गई टीवी में और वो हिलने लगी पिक्चर। तो इनको एकदम से, इन्होंने बोला क्योंकि ये छोटे से बच्चे थे, इन्होंने एकदम से बोला कि देखो देखो टीवी को ठंड लग रही है, इसको कपड़े उड़ा दो। कितनी क्यूट मेमोरी। और ये मेमोरी मुझे पक्का पता है इनको बहुत बार याद दिलाई गई होगी। इनका नाम है मीरा सिंह सिलचर आसाम से और ये इस वक्त 7 साल की थी। और कितना है ना, कितना आपको याद दिलाया होगा, कितना छेड़ा गया होगा आपको इस मेमोरी के लिए। सो स्वीट, सो स्वीट, थैंक यू। अगला मैसेज। भाई आप रेडियो एकदम, आप टॉपिक से रिलेटेड हमको मैसेज करिए, हम मैसेजेस बिल्कुल पढ़ेंगे अगर वो टॉपिक से रिलेटेड है। और टॉपिक क्या है? टॉपिक है अपने घर परिवार, अपने आसपास, अपने छोटे भाई बहन या फिर आपके बेटा या बेटी, किसी की भी बचपन की कोई मेमोरी, मस्त सी शरारत भरी जो हो वो हमें लिख के भेज दीजिए 9868107070 पे।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक। हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आकाशवाणी रेनबो पे प्रोग्राम चल रहा है MMM, और भाई मैंने एक मैसेज बड़ा खूबसूरत सा पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ साझा तुरंत करना चाहिए। ये है प्रेमचंद जी, प्रेमी धामपुर से, और ये लिखते हैं कि नमस्कार, आपको भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार। और आगे लिखते हैं कि तकरीबन 30 साल पुरानी बात याद आ गई है, और जब भी मैं दुकान से घर जाता था तो मेरी बेटी आरती, उस वक्त 5 साल की थी, मुझे देख करके तुरंत लिपट जाती थी और लेकिन अगले ही पल चुटकी बजाकर उंगली दिखाते हुए कहती थी कि पापा निकलो, मेरे लिए चिज्जी नहीं लाए। और ये हंसते हुए, कुछ डरते हुए उसकी फरमाइशें पूरी करते थे, उसको चिज्जी देते थे। और अब 30 साल के बाद इनकी पोती लावण्य शर्मा, जो कि आज 5 साल की हैं, वो भी बिल्कुल वैसे ही चुटकी बजाती हैं जैसे उनकी मम्मा कभी किया करती थी। इतनी खूबसूरत सी बात और इतनी खूबसूरत याद को हमारे साथ साझा करने के लिए प्रेमचंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।

आप सुन रहे हैं MMM और हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव की तरफ और अगला मैसेज मैं मैसेज भेजने वालों का नाम ज़रा जल्दी जल्दी पढ़ूं। अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू नायक, केवल हरियाणा से मधु नायक ये मैसेज लिख रहे हैं। और भी मैं आगे मैसेजेस लूं क्योंकि अब ख़त्म कार्यक्रम अपने समाप्ति की तरफ है और हमको जल्दी जल्दी वाइंड अप करना है और उनका अपने जो हमारे सुनने वाले लिसनर्स हैं उनका नाम लेना तो बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है। एक मैसेज भेजा है अनिल कुमार गुन्नौर से, उन्होंने लिखा है कि उनका उनका बेटा जब 2 साल का था तब उन्होंने किसी ने उनको कोई खाने की चीज़ दी तो उसने तुरंत उस चीज़ को नीचे फेंक दिया ये कहते हुए कि मैं जूठा नहीं खाता। अरे वाह क्या बात है, इतनी खूबसूरत सी बात है। और इसी बात से अरे वाह दूसरा मैसेज भी इसी से रिलेटेड है, वो लिख रहे हैं कि एक बार उनके घर में एक छोटा सा बच्चा, ये इनका नाम है रोहन, रोहन लिख रहे हैं लखनऊ से, वो लिख रहे हैं कि इनके घर में एक दिन एक छोटा सा बच्चा मयंक आया, उसको उन्होंने कहा आप बिस्किट खाएंगे, उसने कहा हाँ, तो उसने उसको बिस्किट दिया, बिस्किट था टूटा हुआ हाफ, तो उसने कह दिया मैं समूचा बिस्किट खाता हूँ आधा नहीं। वाओ व्हाट अ एटीट्यूड। तो दोस्तों इतनी खूबसूरत मैसेजेस मेरे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, मोक्षी को दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले एक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इस जयंती के अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलक वेत्री कड़गम टीवीके ने दावा किया है कि उनकी पार्टी को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए 120 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी टीवीके को नई सरकार बनाने के लिए तमिलनाडु विधानसभा के 234 सदस्यों में से बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा जबकि पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेल अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन भी शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड रीएंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात पांचवें स्थान पर है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: What a song. What a song. Always Bon Jovi out there for you, ladies and gentlemen, boys and girls. You're tuning to the show that's called Saturday Sister with your very own Saint Dance with Sean for you. Time is 2 o'clock. Happens to be 38 and a half minutes to 7 p.m. Well, moving on. Well, rather than moving on, I want to take a short and sweet break, so do not. And I repeat that. Do not touch that dial. I'll be right back after these messages. And after the messages, we've got some more action-packed songs for you. Well, that's going to happen only after the break. So, break time.
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। एनईसीसी द्वारा जनहित में जारी।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: आय हाय,
3: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
7: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
6: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
8: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
9: ठीक है,
8: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
7: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
6: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
10: उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
6: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
7: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
6: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
7: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
6: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
7: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
6: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
7: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों,

साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है, सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है।

आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

Get a

0: आम फट महेश भट।
1: दिला दे घर, दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर।
2: ओह माय गॉड, दिस इज ओरिजिनल।

आप सब लोग कहीं भी हैं, कार में, घर में, दोस्तों के साथ, जहां भी है, थोड़ा सा म्यूजिक बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए और सुनिए एक के बाद एक।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात

0: कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बबई। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आकाशवाणी दिल्ली में स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आपकी याद आती रही में। दोस्तों, आकाशवाणी रेनबो पर बहुत बहुत बहुत प्यारा प्रोग्राम जब हम सुनते हैं इसके बारे में, एक ना एक शख्स याद ज़रूर आ जाता है। कोई ना कोई याद ऐसी ज़रूर होती है जो दिल को छू जाती है। कभी ना कभी ऐसा ज़रूर आता है कि मन से एक छोटी सी आवाज़, प्यारी सी आवाज़ निकल कर कहती है,

0: आती रही।
1: जी हाँ दोस्तों, आपकी याद आती रही। दिन अब थक कर सो गया है और रात धीरे धीरे दिल से बातें करने लगी है। रात की खामोशी में अक्सर वो नाम उभर आता है जिसे तमाम कोशिशों के साथ दिन में भुलाने की जद्दोजहद की थी, है ना। मैं हूं विनीता बेदी और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही।

आपकी याद आती रही। आकाशवाणी रेनबो पर विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, शाम ढलते ही यादें अपने आप चली आती हैं, दिन ढलते ही रात जाने क्यों यादें और गहरी हो जाती हैं। शायद अंधेरे को कुछ उजाले याद आ जाते हैं, और या फिर ये दिल है कि उतारू हो जाता है कुछ गुस्ताखियां करने के लिए।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

जी हाँ दोस्तों, आपकी याद आती रही। आप हैं आकाशवाणी रेनबो पर विनीता बेदी के साथ और आज याद कर रहे हैं अपने कुछ अपनों को। हमारे साथ हमारे एक मित्र जुड़े हुए हैं, मोहम्मद सरफराज आलम साहब, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत शेर भेजा है। लिखा है, रात की तन्हाई में जब खामोशी मुस्कुराती है, चांद की हर हल्की किरण तेरी याद दिलाती है। सारी दुनिया नींद की आगोश में खो जाती है, पर तेरी एक याद है जो हमें सारी रात जगाती है। क्या बात है मोहम्मद सरफराज जी, इतनी खूबसूरत बात आपने कह दी। और ऐसे में

कहीं ना कहीं एक पुकार मन में जरूर उठती है कि वाकई जो कुछ पाया वो सही था और जो खो दिया वो सच में कभी वापस आएगा।

की याद आती रही। कुछ शामें जिंदगी से कभी जाती ही नहीं, एक शाम थी जो बस गुजर गई और एक याद है जो आज तक इस दिल में ठहरी हुई है।

जी हाँ दोस्तों, आपकी याद आती रही, दिल को भरमाती रही। न जाने क्या है उस याद के दामन में कि बार बार कांटों में आंचल उतराती रही। आप हैं विनीता बेदी के साथ, प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही, चैनल आकाशवाणी रेनबो। दोस्तों, कभी दिल चाहता है कि एक पल में पूरी उम्र जी ली जाए। काश सिर्फ एक बार वो लम्हा जो बीत गया था कहीं, वो फिर लौट आए। ऐसा भी समा हो जहां कोई जुदाई ना हो, सिर्फ और सिर्फ उनके पास होने का एहसास हो। कई बार दिल चाहता है कि ऐसा लम्हा, ऐसा एहसास फिर से जिंदगी में समा जाए।

की याद आती रही विनीता बेदी के साथ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश भल्ला जी मेरठ से। कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बस यादों का ही सहारा रह जाता है। वाकई सही कहा आपने दोस्त। ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जिंदगी से दूर हो जाते हैं मगर यादों से नहीं। कमी तो उनकी हर रोज महसूस होती है लेकिन होता क्या है कि बस आदत सी हो गई है उसे मुस्कुराकर छिपाने की, और यही आदत दिन रात कभी खाती है तो कभी उनके कदमों की आहट सुनती है। लगता है जैसे अभी तो साथ में से निकल कर गए हैं, अभी उठ कर गए हैं, वो लौट कर आ जाएंगे, बस एक और कदम की आहट सुनाई दे जाए।

जी हाँ दोस्तों, आपकी याद आती रही रात भर। विनीता बेदी है आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में और हम हैं आकाशवाणी रेनबो पर। दोस्तों, अगर इस वक्त आप भी किसी को याद कर रहे हैं और पूरे दिल से याद कर रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा कि याद करना कभी भी हमारी कमजोरी नहीं होती, बल्कि याद करना तो इस बात का सबूत है कि आपने वो रिश्ता पूरे दिल से निभाया था।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

जी हाँ दोस्तों, आपकी याद आती रही। मैं हूँ आपके साथ विनीता बेदी। और एक बात और कहूँ आपसे कि नाम भले ही वक्त की भीड़ में खो जाए, कुछ रिश्तों को ना नाम की ज़रूरत नहीं होती। वो तो बस एहसास बनकर हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। ज़रूरत उन एहसासों को अपना बना लेने की।

जी हाँ दोस्तों, आपकी याद आती रही। हमारे साथ कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान साहब जुड़े हुए हैं। उन्होंने लिखा कि प्रोग्राम आपकी याद आती रही को सुने और किसी की याद ना आए, भला ये कैसे हो सकता है। प्रोग्राम सुनते ही बेशुमार यादें हमें हमारे आगोश में समेट लेती हैं। तेरी यादों से निकलूं तो कैसे निकलूं, वो जो गुजरे लम्हे याद आते हैं। बहुत ही प्यारी बात कही आपने। वाकई जितना ज़्यादा यादों के आगोश में सिमटते चले जाते हैं ना, उतना ही हम उनके करीब हो जाते हैं जो कभी साथ थे और आज याद हैं, है ना। एक और खूबसूरत संदेश आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ। प्रेमचंद प्रेमी जी का बिजनौर से संदेश आया है। वो ये लिखते हैं कि दस्तूर अपना अपना निभा कर चले गए, बेइंतहा सितम ढा कर चले गए, फिर भी ना बुझ सका तुम्हारी याद का जलता हुआ दिया, ये तूफान भी हजार बार आकर चले गए, आकर चले गए। क्या कहने, वाकई कितना कुछ है जो इन तूफानों में सिमटा हुआ है। न जाने कब तूफान आया और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया।

जी हाँ दोस्तों, आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। हर मुस्कान खुशी की नहीं होती, कुछ मुस्कुराहटें दर्द को छुपाने के लिए भी होती हैं और कुछ होती हैं किसी की याद में बिना सोचे बह जाने के लिए।

दोस्तों, रात अब और गहरी हो चली है और शायद हमारी यादें भी। कुछ लोग आज पास नहीं हैं, मगर हर रात सबसे पहले याद आते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपकी याद आती रही प्रोग्राम आपके दिल की गहराइयों तक भी ज़रूर पहुंचा होगा और किसी की आस को थोड़ी सी और खूबसूरत मोशी के साथ शुभ रात्रि। और हाँ, आपकी याद

आती रही, पर कहीं जाइएगा मत, अभी सुशांत आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, और उसके बाद 11 बजे रंग महफिल की महफिल में फिर होगा हमारा साथ। तो मुस्कुराइए, क्योंकि जो है समा हमारा है, इसे प्यार से जी लें, क्योंकि कल हो ना हो मगर फिर भी आपकी याद तो आती ही रही।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। उधर तमिलनाडु में तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले एक सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे के वेलिविडूर में महबूबा नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मिश्रा पार्क का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। खेलों में चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है।

साहिल ने कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Well, this one happens to be Britney Spears, Baby One More Time. Time by the studio clock happens to be 36 minutes past 10 p.m. Time for a short and sweet break. I'll be right back after these messages. Do not, and I repeat that, do not touch the dial. I'll be right back after these messages. Break time.
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम TV के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि VCK और IUML दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे TVK की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि TVK पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, VCK और IUML से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में PM मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपकी वाणी आकाशवाणी। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम रंगे महफिल में। दोस्तों, दिन भर की भागदौड़ के बाद जब शहर धीरे धीरे खामोश हो जाता है, तब जागती है रात, और रात में जागते हैं ढेर सारे एहसास। नमस्कार, अल्फाज एहसास और खामोशी की इस महफिल में आप सभी का स्वागत है, मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ। और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल, रात जो सवाल नहीं करती लेकिन सच सामने रख देती है।

0: आज की इस बज्म को कामयाब बनाने में जनाब हर्षन मांडले साहब और अशोक भाई का काफी ताउन है।
1: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आकाशवाणी रेनबो पर आप हैं प्रोग्राम रंग महफिल में अपनी दोस्त विनीता बेली के साथ। दोस्तों, बहुत अकेला कर देती है जाने कैसी ये रात होती है। बहुत अकेला कर देती है जाने कैसी ये रात होती है। दिन में तो हम हंस लेते हैं, रात में फिर खुद से ही मिल लेते हैं। सच्चाई ये है कि तन्हाई भी सिर्फ उन्हीं को मिलती है। गौर फरमाइएगा, तन्हाई भी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके अंदर बहुत भीड़ होती है।

मक्ता पेश कर रहा हूँ। ये एक ऐसे शायर हैं जो वैसे अरब हैं, कुवैती हैं, लेकिन उनकी तालीम अलीगढ़ में हुई है। उर्दू शायरी का काफ़ी शौक है उन्हें। खालिद उनका तखल्लुस है। खालिद

रंग महफिल में आप हैं मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ। और जब भी घिरती है ये महफिल, मन में कई सारे सवाल आते हैं। कभी ये कि रात की तन्हाई कुछ ऐसा अंदाज लेकर आती है, रात वो वक्त जब यादें आवाज देती हैं, यादें जो नींद को न जाने कहाँ उड़ा देती हैं, जिसे कभी किसी की बाहों में सुकून मिला था वही दर्द अब शोर नहीं करता, बस चुपचाप अंदर बैठ जाता।

दोस्तों पता है आपको, एक बात जो रह रह कर सालती भी है और सुकून भी देती है कि रात में आंसू आवाज नहीं करते हैं।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।

0: और उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।

0: दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

रेनबो पर आप हैं विनीता बेदी के साथ प्रोग्राम रंगे महफिल में। हम टूटे नहीं हैं दोस्तों, हम टूटे नहीं हैं, बस अब आवाज नहीं करते। हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह तय होती है। अगर आज की रात आपको भारी लग रही है तो यकीन मानिए, आप अंदर ही अंदर बहुत ही मजबूत हो रहे हैं।

जो कहा नहीं गया वो रात समझ गई। इसी सुकून के साथ आज के रंगे महफिल को यहीं विराम देते हैं। आप सब खुद का ख्याल रखिए और याद रखिए, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। वो हर शख्स है आपके साथ जिसे आपकी परवाह है। फिर मिलेंगे रंगे महफिल में ही। अभी फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का। नमस्कार, शब खैर। विनीता को इजाज़त दीजिए जल्दी ही दोबारा मिलने के लिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह

में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नबन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धने खाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री रवि रविशंकर के 70वें जन्म समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला परसद बिसेसर के साथ त्रिनिदाद और टोबैगो के नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप का वो स्थान जहां गिरमिटिया भारतीय मजदूर सबसे पहले त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। डॉ. जयशंकर ने नेल्सन द्वीप पर त्वरित प्रभाव परियोजना के लिए डॉ. कमला परसद बिसेसर के साथ भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि भारतीय सहायता से समर्थित ये परियोजना एक अमर यात्रा की साझा विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स 152 पर ही सिमट गई। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से रविंद्र जडेजा ने सर्वाधिक 38 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 229 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिम राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम जीरो आर शो। लीजिए प्रस्तुत है पहला गीत, कुणाल गांजावाला की आवाज में। फिल्म है हॉलिडे।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी

0: एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही दो दिन के दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने

मंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नवन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोक भवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती है। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। IPL क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम का सामना आज चीन से होगा, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिम राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रॉयलसीमा, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका आज बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुहानी रात।

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, है एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं, वो किसी और को चाहती है।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले

0: ले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
0: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
1: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर,
0: म्यूजिक मस्ती।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: I love you.
2: Yeah!

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट

में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नवन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला परसद बिसेसर के साथ ट्रिनिडाड और टोबैगो के नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप का वो स्थान है जहां गिरमिटिया भारतीय मजदूर सबसे पहले ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। डॉ जयशंकर ने नेल्सन द्वीप पर त्वरित प्रभाव परियोजना के लिए डॉ कमला परसद बिसेसर के साथ भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय सहायता से समर्थित ये परियोजना एक अमर यात्रा की साझा विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास

मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने की और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नबन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक

पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रामास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में तली लग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला परसद बिसेसर के साथ त्रिनिदाद और टोबैगो के नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप का वो स्थान है जहां गिरमिटिया भारतीय मजदूर सबसे पहले त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। डॉ. जयशंकर ने नेल्सन द्वीप पर त्वरित प्रभाव परियोजना के लिए डॉ. कमला परसद बिसेसर के साथ भाग लिया। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर समय हुआ है 3:06 और अब शुरू होता है मिडनाइट मेलोडीज, जिसमें आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक। शुरुआत करते हैं KK और पलक मुछाल की आवाज में एक था टाइगर मूवी के इस गाने के साथ।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर समय हुआ है आधी रात के 3:23 और आप सुन रहे हैं मिडनाइट मेलोडीज। ऐसे ही नॉनस्टॉप हिट म्यूजिक गाने सुनते रहिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे और वे कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल नबन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज चेन्नई पहुंचेंगे। विजय आज चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल

रंगास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए खरीद संबंधी अनुपालन दिशा निर्देशों की नियमावली लागू करके केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत बाहरी स्रोत और संविदा कर्मचारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य वेतन का समय पर भुगतान, सामाजिक सुरक्षा अंशदान का अनिवार्य भुगतान, ठेकेदारों और प्रमुख नियुक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन तंत्र सुनिश्चित करना है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर इस टाइम सुबह के 4:06 हो रहे हैं और जैसे कि आप सुन ही रहे हैं नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक और अब शुरू होता है सारेगामा जिसमें आप सुनेंगे गाने वो भी बिना रुके। तो बस इसी तरह गानों का मजा लेते रहिए और शुरुआत करते हैं सोनू निगम की आवाज में फिल्म जाने मन से इस गाने के साथ। ऐसे ही नॉनस्टॉप गाने सुनते रहिए।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर समय हुआ है सुबह के 4:58 और सारेगामा शो सुन रहे हैं आप, जिसमें नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक का आप मजा ले रहे थे। सुबह 5 बजे हिंदी में समाचार होंगे और बस थोड़ा सा समय है इस शो को पूरा होने का। तो अभी पेपॉन की आवाज में ये गाना।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे दिन के 11 बजे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद जाएंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपये की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुड्डेबेलूर से महबूबनगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा के तहत महत्वपूर्ण सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। ये अस्पताल हैदराबाद में अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दौरान श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे और कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया है। तमिलनाडु में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारे संवाददाता ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज चेन्नई पहुंचेंगे। कई वरिष्ठ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल के नेता, फिल्मी हस्तियां और पार्टी कार्यकर्ताओं के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि केरलम के नए मुख्यमंत्री का निर्णय पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का होगा और जल्द ही नाम की घोषणा कर दी जाएगी। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगासामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगासामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया।

रंगासामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए खरीद संबंधी अनुपालन दिशा निर्देशों की नियमावली लागू करके केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत बाहरी स्रोत और संविदा कर्मचारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य वेतन का समय पर भुगतान करना, सामाजिक सुरक्षा अंशदान का अनिवार्य भुगतान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन तंत्र सुनिश्चित करना है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा और ये मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल सुन रहे हैं आप और समय हुआ है सुबह के 5:06। अभी तक आप सुन रहे थे नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक, लेकिन अब शुरू होता है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे भजन, वो भी बिना रुके। तो आप इन भजनों का आनंद लीजिए और अपने सुबह की शुरुआत भक्ति में बनाइए। शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह की आवाज में इस भजन के साथ।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS

कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाश।